ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण साफ बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमा कर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम, लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वनगमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और वाणी जयराम और साथी। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में इस भजन से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में ये भजन। और भाई सुनते हैं अगली रचना ओम व्यास के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ओम व्यास के स्वर में ये भक्तिमय रचना। और अब आइए सुनते हैं अगली रचना अनूप जलोटा के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। और अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले सकेंगे सुभाषिश मित्रा के स्वर में संगीत रचनाओं का। सवेरे 7 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। सवेरे 8 बजे समाचार प्रभात का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे सवेरे 8:15 पर। उसके बाद आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा सवेरे 8:30 पर। हमारे केंद्र से लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक होगा सवेरे 8:40 पर। इस कार्यक्रम में आज आपका मनोरंजन करवाएंगे खोरठा लोकगीत से रीता कुमारी और साथियों के स्वरों में। सवेरे 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। सवेरे 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा दिन के 10 बजे। श्रोताओं, दिन के 10:30 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। यहीं से दोपहर 1:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। दोपहर 1:20 पर सुनिएगा आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम। दिन के 2:55 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। दिन के 3 बजे आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। शाम 4 बजे मुख्य समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। यहीं से अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण होगा शाम 4:02 पर और मुख्य समाचार होंगे शाम 5 बजे। श्रोताओं, हमारे केंद्र से शाम 5:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, शाम 5:05 पर आज के गुलदस्ता कार्यक्रम के अंतर्गत आनंद लीजिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। शाम 6 बजे सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम 6:02 पर हमारे केंद्र से सुनिएगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। शाम 6:30 पर सुनिएगा संथाली कार्यक्रम, इसमें आनंद लीजिएगा लगड़े लोकगीत का कानूराम सोरेन और साथियों के स्वरों में। आज की भेंट वार्ता का विषय होगा वर्षांत की बीमारियां एवं उसका निदान। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर महेंद्र हांसदा। श्रोताओं, शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। यहीं से जिले में आजकल का प्रसारण होगा शाम 7:10 पर। उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा हमारे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद शाम 7:15 पर। शाम 7:30 पर सुनिएगा हमारे किसान भाइयों और किसान बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आज की चर्चा का विषय होगा पत्तेदार सब्जियों की खेती। मनोरंजन कीजिएगा संथाली लोकगीत से राम टुडू और साथियों के स्वरों में। श्रोताओं, आज की भेंटवार्ता का विषय होगा महिला समूह एवं कृषि कार्य। भेंटवार्ताकार होंगी लक्ष्मी मुर्मू, उनसे बातें कर रहे होंगे ठाकुर चंद्र मुर्मू। साथ ही आपका मनोरंजन करवाएंगे संथाली लोकगीत से शंकर चंद्र मुर्मू और साथियों के स्वरों में। श्रोताओं, शाम 8 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच 2026 के अंतर्गत भारत और हांगकांग के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण। शाम 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। रात्रि 10 बजे से पुनः सुनिएगा महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच 2026 के अंतर्गत भारत और हांगकांग के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण। श्रोताओं, रात्रि 10 बजे हमारे केंद्र से सुनिएगा गज़लों का प्रोग्राम महफिल। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर और रात्रि 11:10 पर। श्रोताओं, आप सुनेंगे भारत और हांगकांग के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। रात्रि 11:45 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं सुभाषिश मित्रा के स्वर में संगीत रचनाओं का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे सुभाषिष मित्रा के स्वर में संगीत रचनाओं का। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चाईबासा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सबको मेरा जोहार और नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त उदय पान। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। येसुदास की आवाज़ में फिल्म का नाम है अयाश।

श्रोताओं, जोहर चाय बासा कार्यक्रम का ये पहला गीत अभी आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज़ में। फिल्म का नाम था अयाश। और अब श्रोताओं, इस गीत के बाद आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाय भाषा केंद्र FM के 101.7 MHz पर और अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाय भाषा। और अब श्रोताओं, सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: श्रोताओं, ये था चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के, जी हाँ श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म धरती का ये गीत।

और श्रोताओं आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में ये वादा रहा फिल्म का ये गीत है।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाय भाषा केंद्र FM के 101.7 MHz पर, और अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाय भाषा। और अब आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर, जिसे गाया है मुकेश ने। फिल्म का नाम है मन चली।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मंचली का गीत मुकेश की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है इजाज़त।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म इजाज़त का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: श्रोताओं, इस जरूरी संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जोहार चाईबासा में। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अंधा कानून।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अंधा कानून का ये गीत। आइए अगला गीत सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तीसरी मंजिल फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। और अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म नसीब का ये गीत।

0: प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक।
1: श्रोताओं, प्रदीप और साथियों की आवाज़ों में फिल्म जागृति के इसी गीत के साथ ही हमारा आज का जोहार चाईबासा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो गया है समाचारों का। समाचारों के लिए हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेबर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेबर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेबर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi. और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
6: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाए रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
7: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल CBI को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
8: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली ICC विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
9: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
10: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बालियापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
11: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
12: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज की ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी। गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिड़िया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा 6ठी और 9वीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाद डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global best practices. Prime Minister Modi to hold talks with his Belgian counterpart, Bart De Wever, in New Delhi today. ISRO to launch Earth Observation Satellite EOS-5 from Sriharikota tomorrow. India's sovereign credit rating upgraded to A- with stable outlook by Japan Credit Rating Agency. Bombay High Court orders CBI probe into death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput. And in women's cricket, India to take on Hong Kong in the second Group A match of 2020 Asia Cup in Dubai this evening. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water, organized by the Minister of Jal Shakti yesterday. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. We have more from a correspondent.
14: Prime Minister Narendra Modi emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Appreciating the intensive two-day deliberations, Mr. Modi suggested that the summit should not remain a one-time exercise and call for a continuous process of review and follow-up. Emphasizing Jan Bhagidari, Mr. Modi suggested promoting Jal Utsav to create greater awareness among people. Prime Minister called for making desilting a regular program and developing clear criteria and SOPs for desilting. On dam safety, Mr. Modi stress rigorous preparedness before every monsoon, adherence to prescribed precautions, and creating awareness among school students, including to suitable incorporation in educational curricula. Prime Minister further called for strengthening knowledge and capacity on water management and governance in universities and higher educational institutions. He suggested structured interstate study visits involving public representatives, officials and farmers to facilitate practical learning and replication of successful interventions. Mr. Modi also called for robust water data governance, with water sector data brought together, systematically managed, analyzed and effectively utilized. He recommended the use of AI for data collection and analysis through a uniform format. He also stressed anticipatory and integrated planning to address water scarcity through suitable utilization of treated water for agriculture and industrial purposes. With Subarna Saikia, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
13: Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations, as well as regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived in the national capital last night on a three-day visit to India. Prime Minister De Wever has been accompanied by Belgian Minister of Defence, Theo Franken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will also deliver a keynote address at a Confederation of Indian Industry business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. Our correspondent reports that the visit will provide an opportunity to further strengthen the India-Belgium partnership and advance cooperation in areas of mutual interest, including trade and investment, defense and security, and renewable energy.
15: India and Belgium share historical ties spanning over three centuries. Belgium was among the first European countries to establish diplomatic relations with independent India in September 1947. Belgium is an important economic partner for India in Europe. Bilateral trade reached over $13 billion in 2025-26. Diamond trade, with Antwerp as a major global diamond hub, remains a significant component of bilateral commerce. Belgium is also an important source of investment in India. FDI inflows from Belgium amounted to approximately $4.2 billion between April 2000 and December 2025. Science, technology and innovation cooperation is an important pillar of the partnership, and India and Belgium have developed cooperation in renewable energy, clean technologies and sustainability. Defense cooperation is also emerging as an important new dimension of the partnership, reflecting the diversification of bilateral ties into strategic and security related areas. Belgium's appointment of a defense attaché in New Delhi reflects this intent of deepening cooperation in defense. The Indian diaspora is an important bridge between the two countries, with around 35,000 people of Indian origin in Belgium, contributing substantially to economic, social and cultural life in that country. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
13: ISRO Chairman V. Narayanan has said that the EOS-05 Earth Observation Satellite will be launched tomorrow. The satellite is scheduled to lift off at 2:55 a.m. aboard the GSLV-F-17 rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Mr. Narayanan said EOS-05 is a state-of-the-art Earth observation spacecraft and India's first imaging satellite to be placed in a geosynchronous orbit.
16: We in ISRO is proud to inform that we are going to have a launch of Earth Observation Satellite 05 using our GSLV vehicle, GSLV F-17, on 4th September, early morning, 2:55 a.m. This is the first satellite, Earth Observation Satellite, which is going to be placed in the GEO platform for advanced Earth observation purpose.
13: Japan credit rating agency JCR has upgraded India's long-term foreign currency and local currency issuer ratings by one notch from BBB plus to A minus while maintaining the stable outlook. JCR has also raised India's country ceiling by one notch to A. Finance Ministry said that the upgrade reflects India's solid economic growth, the effectiveness of economic policies in strengthening the foundations for growth and the improved soundness of the financial system. We have a report.
17: The ministry said that the upgrade comes against the backdrop of a challenging global environment and underscores the continued strengthening of India's economic fundamentals, supported by sustained growth, effective economic policies, improved fiscal quality and stronger financial system. In a statement, JCR noted that the Indian economy has maintained a high growth rate supported by robust private consumption and public investment. The agency also highlighted the Indian government's continued implementation of policies, including the development of digital public infrastructure and implementation of goods and services tax, which has strengthened India's economic foundations. The agency also recognized the improvement in quality of fiscal expenditure, with greater emphasis on capital expenditure, particularly infrastructure investment. JCR noted that the central government's fiscal deficit declined from 4.7% in financial year 25 to 4.4% in financial year 26, while capital expenditure remained high. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
13: This is Akashwani giving you the news.
4: Stay in the know wherever you are. Follow us on X and Threads at AIR News Alerts.
13: The Bombay High Court has ordered a CBI probe into the death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput. Disha Salian died on June 8, 2020 after falling from the 14th floor of a residential building in the Mumbai suburbs. We have more from a correspondent.
7: In the Disha Salian death case, a division bench of Justices Sarangvi Kotwal and Ranjit Sinha R. Bhosle yesterday directed the CBI to register an FIR based on the complaint filed by her father, Satish Salian. The court has further clarified that the direction to register the FIR does not imply any finding of guilt against anyone. The bench said nobody shall be treated as an accused unless, in the opinion of the investigating officer, there are sufficient grounds to raise objectionable suspicion against him, depending on the material collected during the investigation. Prarthana, Akashwani News, Mumbai.
13: The death toll from the devastating Nepal-Tibet flash floods has surged to 1,000.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या वृद्धि और पानी की जरूरतों के बारे में जागरूक करने का किया आह्वान। झारखंड ने सिंचाई योजनाओं के लिए केंद्र से 3,000 करोड़ रुपए का सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, रांची सहित राज्य के अन्य शहरों का होगा सुनियोजित विकास, बंद होंगे अनावश्यक रोड कट, हर वार्ड में बनेगा वेंडर मार्केट। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने की समीक्षा बैठक, सभी जिलों में जांच व्यवस्था के निर्देश। रांची नगर निगम ने बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज की। लालपुर में 5 संस्थानों को किया सील। और राज्य में निम्न दबाव का क्षेत्र हुआ कमजोर, आज कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान, कल से छटेंगे बादल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: नई दिल्ली में जल जीवन मिशन समिट 2026 के समापन सत्र में झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन और योगेंद्र प्रसाद ने जल संरक्षण, सिंचाई क्षमता बढ़ाने और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन का राज्य का रोड मैप प्रस्तुत किया। इस मौके पर हफीजुल हसन ने बताया कि राज्य में 80% वर्षा जल बह जाता है और 24.25 लाख हेक्टेयर में से अब तक केवल 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता ही विकसित हुई है। इसलिए अब मौजूदा संरचनाओं के उपयोग और रिसाव रोकने पर जोर है। राज्य सरकार ने पटमदा बोडाम और नीमडी कुकड़ू मेगा लिफ्ट परियोजनाओं और पलामू के अमानत बराज के लिए केंद्र से करीब 3,000 करोड़ रुपए का सहयोग मांगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में नगर विकास और पथ निर्माण विभाग की ओर से संचालित कार्यों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शहर की सड़कों के बीच बने अनावश्यक कटों को चिन्हित कर उन्हें बंद करने और वाहनों के लिए निर्धारित चौक चौराहों से ही सुरक्षित टर्निंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी वेंडर्स को चिन्हित करते हुए उनके लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राज्य में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग एवं NHM की समीक्षा बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में स्वाइन फ्लू की स्थिति, जांच व्यवस्था पर चर्चा हुई। इस अवसर पर अजय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड के सभी जिलों में जल्द से जल्द स्वाइन फ्लू की जाँच शुरू की जाए। इधर अब रांची सदर अस्पताल में भी स्वाइन फ्लू के लिए जांच की सुविधा शुरू की जाएगी। रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बमलेश कुमार ने इसकी जानकारी दी।
2: पूरे झारखंड में एक ही जगह रिम्स में H1N1 की जांच की व्यवस्था थी। अब हमारे सदर अस्पताल रांची में इसकी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। कीट वगैरह आता है उसको जाँच करने के लिए, ये सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है।
0: झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने सरकार से 108 एम्बुलेंस सेवा की मौजूदा टेंडर प्रक्रिया रद्द कर इसे जिला स्तर पर सिविल सर्जन की निगरानी में संचालित करने और निजी एजेंसी द्वारा हटाए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि 8 सितंबर तक कार्रवाई नहीं होने पर राज्य भर में लोकतांत्रिक आंदोलन की चेतावनी दी है। रांची के खेलगांव स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में आज से 15 सितंबर तक सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में बड़ी संख्या में झारखंड के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और रांची पुलिस ने सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारी की है। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से मूल दस्तावेज सुरक्षित रखने, किसी को पैसे नहीं देने और ठगी से बचने की अपील की है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची नगर निगम ने बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए लालपुर में 5 संस्थानों को सील कर दिया। निगम के अनुसार पहले नोटिस दिए जाने के बावजूद नियमों का पालन न करने पर एनफोर्समेंट टीम ने दस्तावेजों की जांच के बाद सीलिंग की कार्रवाई की। पूर्वी सिंहभूम जिले में चांडल थाना क्षेत्र में 24 अगस्त को हुई कारोबारी निखार सबलोक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। SSP एहतेशाम वकारब और सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। मामले में मास्टरमाइंड सहित 6 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
3: फैमिली रेस्टोरेंट में 10th माइल में अपराधियों ने एक निखार सबलोक नाम के व्यक्ति को हत्या कर दी फायरिंग करके, और जिसको TMH लाया गया, जहां उनको मृत घोषित किया। 6 लोग गिरफ्तार किया है, इनमें से कुछ लोगों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। कारण मुख्य रूप से अब तक जो आया है जमीन विवाद को लेकर।
0: हजारीबाग पुलिस ने जिले में लगातार छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले कुख्यात कोढ़ा गिरोह के 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 4 बाइक और सोने के आभूषण बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरोह कई जिलों में सक्रिय था।
4: सबसे पहले 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनके निशानदेही पर जो है चौपारण से 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये लोग लगातार इनका सहयोग करते थे, छीना हुआ कुछ सामान इन लोगों को भी देते थे। कुल बरामद सामान में अभी सोने का आभूषण 27 ग्राम, चोरी का मोटरसाइकिल 4, खुजली होने वाला पदार्थ कुछ पुड़िया 23 पुड़िया बरामद किया गया है, कीपैड मोबाइल 6 और फर्जी नंबर प्लेट जो ये लोग लगा के आते थे वो 6 बरामद किया गया है।
0: जमशेदपुर में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण स्वर्णरेखा और खरकई नदियां उफान पर हैं, जिसमें खरकई खतरे के निशान से 4.50 मीटर और स्वर्णरेखा 1.24 मीटर ऊपर बह रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के चलते चांडल डैम, गालुडीह बैराज और ओडिशा के डैम बैराज के 45 से अधिक फाटक खोले गए हैं। बावजूद इसके बागबेड़ा, मानगो, जुगसलाई समेत 6 इलाकों के 1000 से अधिक घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने तटीय और निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है, जबकि NDRF और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट पर है। मौसम विभाग के अनुसार आज से झारखंड को बारिश से राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दबाव का क्षेत्र अब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ गया है, लेकिन नमी का प्रभाव जारी है, जिसके कारण झारखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश अभी भी संभव है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने CM की समीक्षा बैठक को अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, हटेगा अतिक्रमण, हर वार्ड में होगा वंडर मार्केट, शहरों का बनेगा मास्टर प्लान। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ख्यांगते की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला 5 सितंबर को। दैनिक जागरण लिखता है, पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO। हिंदुस्तान के शब्द हैं, DGP नियुक्ति मामले की सुनवाई अब 7 को होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या वृद्धि और पानी की जरूरतों के बारे में जागरूक करने का किया आह्वान। झारखंड ने सिंचाई योजनाओं के लिए केंद्र से 3,000 करोड़ रुपए का सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, रांची सहित राज्य के अन्य शहरों का होगा सुनियोजित विकास, बंद होंगे अनावश्यक रोड कट, हर वार्ड में बनेगा वेंडर मार्केट। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने की समीक्षा बैठक, सभी जिलों में जांच व्यवस्था के निर्देश। रांची नगर निगम ने बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज की। लालपुर में 5 संस्थानों को किया सील। और राज्य में निम्न दबाव का क्षेत्र हुआ कमजोर, आज कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान, कल से छटेंगे बादल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 8:43 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आइए आनंद लेते हैं खोरठार लोकगीतों का। कलाकार हैं रीता कुमारी और साथी।

श्रोताओं, माटी की महक कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे हैं खोरठा लोकगीतों का, रीता कुमारी और साथियों के स्वरों में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे। खोरठा लोकगीतों का कलाकार थे रीता कुमारी और साथी। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

0: विविधा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी उदयपान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और हमारे कार्यक्रम भी आप लगातार सुन रहे होंगे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए बात करते हैं अत्यधिक वर्षा के कारण होने वाली आपदा के बारे में, जिसमें प्रमुख है बाढ़। श्रोताओं, भारत में घटित होने वाली सभी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक घटनाएँ बाढ़ की हैं। यद्यपि इसका मुख्य कारण भारतीय मानसून की अनिश्चितता तथा वर्षा ऋतु के चार महीनों में भारी जल प्रवाह है, परंतु भारत की असममित भू आकृतिक विशेषताएं विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की प्रकृति तथा तीव्रता के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती हैं। बाढ़ के कारण समाज का सबसे गरीब तबका प्रभावित होता है। बाढ़ जान माल की क्षति के साथ साथ प्रकृति को भी हानि पहुंचाती है। अतः सतत विकास के नज़रिए से अगर देखा जाए तो बाढ़ के आकलन की ज़रूरत होती है। श्रोताओं, नदी का जल उफान के समय जलवाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की ज़मीन पर पहुंच जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने हैं। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती, साथ ही ये और कुछ विशेष क्षेत्रों और वर्षा ऋतु में ही आती है। श्रोताओं, ये तब आती है जब नदी की जो जलवाहिकाएँ हैं उनमें इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है। श्रोताओं, कई बार झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में आने वाला तूफान, लंबे समय तक होने वाली तेज़ बारिश, बर्फ़ का पिघलना, ज़मीन की जल अवशोषण क्षमता में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। श्रोताओं, दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव गतिविधियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। मानवीय क्रियाकलापों, अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, प्राकृतिक अपवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना तथा नदी तल और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मानव की बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिमाण और विध्वंसता बढ़ जाती है। श्रोताओं, भारत में विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ के कारण पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। श्रोताओं, इसका कारण मानसूनी वर्षा की तीव्रता तथा मानव क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच लौटते मानसून से होने वाली तीव्र वर्षा द्वारा आती है। श्रोताओं, सामान्यतः भारी बारिश के बाद जब प्राकृतिक जल संग्रहण स्रोत या मार्ग की जल धारण करने की क्षमता का संपूर्ण दोहन हो जाता है तो पानी उन स्रोतों से निकलकर आसपास की सूखी भूमि को डुबो देता है। लेकिन बाढ़ हमेशा भारी बारिश के कारण नहीं आती है, बल्कि ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही कारणों का परिणाम है, जिन्हें हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। श्रोताओं, पहला है मौसम संबंधी तत्व। दरअसल 3 से 4 माह की अवधि में ही देश में भारी बारिश के परिणाम स्वरूप नदियों में जल का प्रवाह बढ़ जाता है, जो विनाशकारी बाढ़ का कारण बनता है। एक दिन में लगभग 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है तो नदियों का जलस्तर खतरनाक ढंग से बढ़ना शुरू हो जाता है। अगला है बादल फटना। श्रोताओं, भारी वर्षा और पहाड़ियों या नदियों के आसपास बादलों के फटने से भी नदियां जल से भर जाती हैं। गाद का संचय। श्रोताओं, हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में गाद और रेत लाती हैं। वर्षों से इनकी सफाई न होने के कारण नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी फैल जाता है। श्रोताओं, तटबंधों, नहरों और रेलवे से संबंधित निर्माण के कारण नदियों के जल प्रवाह की क्षमता में कमी आती है, फलस्वरूप बाढ़ की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। कुछ सालों पहले उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ को मानव निर्मित कारकों का परिणाम माना जाता है। श्रोताओं, अगला है वनों की कटाई। श्रोताओं, पेड़ पहाड़ों पर मिट्टी के कटाव को रोकने और बारिश के पानी के लिए प्राकृतिक अवरोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए पहाड़ी ढलानों पर वनों की कटाई के कारण नदियों के जल स्तर में वृद्धि होती है। श्रोताओं, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात, हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की अर्थव्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न केवल फसलों को बर्बाद करती है, बल्कि आधारभूत ढांचे जैसे सड़कें, रेल मार्गों, पुल और मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां जैसे हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस एवं अन्य दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं। दूसरी ओर बाढ़ के कुछ लाभ भी हैं। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी जमा करती है, जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। श्रोताओं, कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। बाढ़ प्रबंधन एवं कटाव रोधी योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता के अनुसार अपने संसाधनों द्वारा नियोजित, अन्वेषित एवं कार्यान्वित की जाती हैं। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। श्रोताओं, अब आइए बात करते हैं राष्ट्रीय जल नीति 2012 के बारे में, जो बाढ़ एवं सूखे के प्रबंधन से संबंधित है। श्रोताओं, जहां संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपायों के माध्यम से बाढ़ एवं सूखे जैसी जल संबंधी आपदाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, वहीं बाढ़ या सूखे से निपटने के लिए तंत्र सहित पूर्व तैयारी जैसे विकल्पों पर जोर दिया जाना चाहिए। साथ ही प्राकृतिक जल निकास प्रणाली के पुनर्स्थापन पर भी अत्यधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता है। श्रोताओं, सूखे से निपटने के लिए विभिन्न कृषि कार्य नीतियों को विकसित करने तथा मृदा एवं जल उत्पादकता में सुधार के लिए स्थानीय अनुसंधान एवं वैज्ञानिक संस्थानों से प्राप्त वैज्ञानिक जानकारी सहित भूमि, मृदा, ऊर्जा एवं जल प्रबंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए। आजीविका सहायता और गरीबी उपशमन के लिए समेकित खेती प्रणालियों और गैर कृषि विकास पर भी विचार किया जा सकता है। श्रोताओं, नदी द्वारा किए गए भूमि कटाव जैसे स्थायी नुकसान को रोकने के लिए तटबंधों इत्यादि के निर्माण हेतु योजना, निष्पादन, निगरानी, भू आकृति विज्ञानीय अध्ययनों के आधार पर किया जाना चाहिए। चूँकि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक तीव्र वर्षा होने तथा मृदा कटाव की संभावना बढ़ने से ये और भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। श्रोताओं, बाढ़ का सामना करने के लिए तैयार रहने हेतु बाढ़ पूर्वानुमान अति महत्वपूर्ण है तथा इसका देश भर में सघन विस्तार किया जाना चाहिए और वास्तविक समय आंकड़ा संग्रहण प्रणाली का उपयोग करते हुए आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। साथ ही इसे पूर्वानुमान मॉडल से जोड़ा जाना चाहिए। पूर्वानुमान समय को बढ़ाने के लिए विभिन्न बेसिन भागों हेतु भौतिक मॉडल विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। श्रोताओं, जलाशयों से संचालन की प्रक्रिया को विकसित करने तथा इसका कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि बारिश के मौसम के दौरान बाढ़ को सहन करने की संबंधी जो क्षमता है वो प्राप्त हो सके और अवसादन के असर को कम किया जा सके। ये प्रक्रियाएं ठोस निर्णय सहयोग प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए। श्रोताओं, कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि भारत की अवस्थिति भौगोलिक रूप से अधिक विविधता वाली है। इसमें एक ओर हिमालय जैसे पर्वत शिखर हैं तो दूसरी ओर बड़े बड़े समुद्री तट हैं। इसके अतिरिक्त सदाबहार से लेकर मौसमी नदियों तक भारत में नदियों का विस्तृत संजाल मौजूद है। साथ ही भारत के विभिन्न जो कि मुख्य भागों में वर्षा की अवधि का वर्ष में निश्चित समय है, इससे वर्षा ऋतु के दौरान बड़ी मात्रा में जल भराव एवं बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। श्रोताओं, इन भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त मानवीय कारक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ से बड़ी मात्रा में जनधन की हानि होती है। साथ ही इससे सर्वाधिक नकारात्मक रूप से समाज का सबसे गरीब वर्ग प्रभावित होता है। इसके आलोक में बाढ़ जैसी आपदा की रोकथाम तथा बाढ़ आने के पश्चात होने वाली हानि को कम करने के लिए ज़रूरी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। श्रोताओं, विभिन्न सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों द्वारा बाढ़ के प्रभावों को कम करने के प्रयास लगातार जारी हैं, किंतु ये प्रयास तब तक ऐसी आपदाओं को रोकने में कारगर नहीं हो सकेंगे जब तक मानव निर्मित कारकों जैसे जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, अवैज्ञानिक विकास आदि कार्यों को नहीं रोका जाता। तो श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे थे बाढ़ यानी कि जो कि एक आपदा है उसके बारे में, और अब आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

श्रोताओं, इस ज़रूरी संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा में। और श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आइए जानते हैं प्यारे लाल जी के बारे में, जो कि हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी में से एक हैं। श्रोता, उनका आज जन्मदिन है। श्रोताओं, प्यारे लाल जी का बचपन बेहद संघर्ष भरा रहा। उनकी आपको बता दें कि उनका पूरा नाम है प्यारे लाल राम प्रसाद शर्मा। उनकी माँ का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था। उनके पिता पंडित राम प्रसाद जी ट्रम्पेट बजाते थे और चाहते थे कि प्यारे लाल वायलिन सीखें। पिताजी के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। वे घर घर जाते थे जब भी कहीं उन्हें बजाने का मौका मिलता था, और साथ में वे अपने साथ प्यारे लाल जी को भी ले जाते थे। उनका मासूम चेहरा सबको आकर्षित करता था। एक बार ऐसा बताया जाता है कि एक बार जब पंडित जी उन्हें लता मंगेशकर जी के घर ले गए, लता जी प्यारे जी यानी कि प्यारे लाल जी के वायलिन वादन से इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने उन्हें 500 रुपये इनाम में दिए थे, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। श्रोताओं, वो घंटों वायलिन का रियाज करते। अपनी मेहनत के दम पर उन्हें मुंबई के रंजीत स्टूडियो के ऑर्केस्ट्रा में नौकरी मिल गई, जहां उन्हें 85 रुपये मासिक वेतन मिलता था और उनके परिवार का पालन इन्हीं पैसों से होने लगा। उन्होंने एक रात्रि स्कूल में 7वें ग्रेड की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, पर 3 रुपये की मासिक फीस उठा पाने की असमर्थता के चलते उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। मुश्किल हालातों ने भी उनके हौसले कम नहीं किए। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। अपने संगीत के दम पर अपने लिए नाम कमाना और देश विदेश की यात्रा करना उनका सपना था। श्रोताओं, ऐसा बताया जाता है कि उन दिनों लक्ष्मीकांत पंडित हुसनलाल भगतराम के साथ काम करते थे। उन्होंने लिखा है कि वो मुझसे 3 साल बड़े थे। उम्र में धीरे धीरे हम एक दूसरे के घर आने जाने लगे, साथ बजाते और कभी कभी क्रिकेट खेलते और संगीत पर लंबी चर्चाएं करते। हमारे शौक और सपने एक जैसे होने के कारण हम बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। ये उन्होंने एक जगह लिखा है। श्रोताओं, उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान जो है सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 2024 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2024 में उन्हें लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के द्वारा संगीतबद्ध किया गया फिल्म नाम का गीत, जिसे गाया है पंकज उदास और साथियों ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध किया गया फिल्म नाम का ये गीत। और अब श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आइए जानते हैं पंडित किशन महाराज जी के बारे में। इनका भी आज जन्मदिन है। श्रोताओं, किशन महाराज जी का जन्म काशी के कबीर चौरा मोहल्ले में आज ही के दिन यानी 3 सितंबर को सन 1923 को एक संगीतज्ञ के परिवार में हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी पर आधी रात को जन्म होने के कारण उनका नाम किशन पड़ा। उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में पिता पंडित हरि महाराज से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। पिता के देहांत होने के बाद उनके चाचा एवं पंडित बलदेव सहाय के शिष्य पंडित कंठे महाराज जी ने उनकी शिक्षा का कार्यभार संभाला। श्रोताओं, किशन महाराज जी ने तबले की थाप की यात्रा शुरू करने के कुछ साल के अंदर ही उस्ताद फैयाज खां, पंडित ओमकार ठाकुर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, पंडित भीमसेन जोशी, वसंत राय, पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खां जैसे बड़े नामों के साथ संगत की। कई बार उन्होंने संगीत की महफिल में एकल तबला वादन भी किया। इतना ही नहीं, नृत्य की दुनिया के महान जो है विभूति शंभू महाराज, सितारा देवी, नटराज गोपी कृष्ण और बिरजू महाराज जी के कार्यक्रमों में जो है उन्होंने तबले पर संगत की। उन्होंने एडिनबर्ग और वर्ष 1965 में ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ कला समारोह के साथ ही कई अवसरों पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर प्रतिष्ठा अर्जित की। उनके शिष्यों में वर्तमान समय के जाने माने तबला वादक पंडित कुमार बोस, पंडित बालकृष्ण अय्यर, सुखविंदर सिंह नामधारी सहित अन्य नाम शामिल हैं। श्रोताओं, आदरणीय स्वर्गीय पंडित किशन महाराज प्रभावशाली व्यक्ति के धनी थे। माथे पर एक लाल रंग का टीका हमेशा लगा रहता था। वे जब संगीत सभाओं में जाते, संगीत सभाएं लय ताल से परिपूर्ण हो गंधर्व सभाओं की तरह गीत गति और संगीतमय हो जाती। तबला बजाने के लिए वैसे पद्मासन में बैठने की पद्धति प्रचलित है, किंतु उन्होंने दोनों घुटनों के बल बैठकर वादन किया। ख्याल गायन के साथ उनके तबले की संगीत श्रोताओं पर जादू करती थी। उनके ठेके में एक भराव था और दाएं और बाएं तबले का संवाद श्रोताओं और दर्शकों पर विशिष्ट प्रभाव डालता था। अपनी युवावस्था में पंडित जी ने कई फिल्मों में तबला वादन किया, जिनमें नीचा नगर, आंधियां, बड़ी माँ आदि फिल्में प्रमुख हैं। श्रोताओं, कहते हैं ना, महान कलाकार एक महान इंसान भी होते हैं। ऐसे ही महान आदरणीय स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी भी थे। उन्होंने बनारस में दूरदर्शन केंद्र स्थापित करने के लिए भूख हड़ताल भी की और संगत कलाकारों के प्रति सरकार की जो है ढुलमुल नीतियों का पुरजोर उस समय विरोध भी किया। श्रोताओं, चूंकि अब घड़ी की सुई कह रही है कि हमें हमारे इस कार्यक्रम का भी यहीं पर विराम देना होगा, तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये विविधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको बता दूं कि कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त उदय पान। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है कृष्णा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कृष्णा का गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है और प्यार हो गया।

ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म का नाम था और प्यार हो गया। आइए अब अगला गीत सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है हम आपके दिल में रहते हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। आइए सुनते हैं अगला गीत उदित नारायण की आवाज़।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग,

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम

0: खजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
1: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
0: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
0: श्रीमान जी आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
1: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
0: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही, इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
1: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओ, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
1: श्रोताओ, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
0: जी हाँ श्रोताओ, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
1: जी
0: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
1: श्रोताओ, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
0: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
1: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
0: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूरदराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
1: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया?
0: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
1: श्रोताओ, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
0: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
1: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
0: और फिर ट्रेन आती है।
1: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
0: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
1: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
0: विमलेश जी जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
1: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
1: जी,
0: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओ, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
1: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यूशिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
0: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
1: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
0: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
1: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो, और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो।
0: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
1: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं, उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, जी हाँ श्रोताओ, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
1: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
0: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
0: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
5: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेस से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप्प से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
6: जी मैं रमेश। पिछले 20

साल से ट्रक चला रहा है। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ एक मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
5: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, न पढ़ना न लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
6: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
5: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
6: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
5: ना जाने क्या होगा इसका।
6: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
5: अरे वो सब तो ठीक है, पर
6: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
4: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
7: ऐसे कैसे?
8: जोर से मारना।
7: सैम, है ना? अरे इधर तू आओ।
9: हाँ हाँ आते हैं।
7: सैम, है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
8: हम तो तैयार हैं मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
7: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
9: कैसा प्रयोग?
7: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
8: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
7: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
8: अच्छा
7: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ।
6: अच्छा।
7: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है। उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है। सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
9: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
7: फिर जाओ ना। पहुँच गए?
9: हाँ हाँ।
7: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
9: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
8: अरे वाह, क्या बात है!
9: अरे वाह, मार्कोनी, क्या क्या बात है!
8: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह,
6: क्या बात है!
8: अरे वाह,
7: सिग्नल मिला?
8: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
4: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
3: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
4: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते

0: तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
1: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
0: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
1: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
0: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
1: देखता हूँ।
0: ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
1: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: अरे रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है, वाह!
0: रॉबर्ट, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह!
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि ये जहाज डूब नहीं सकता,
0: ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: अरे अरे, भागो भागो, बाहर निकलो, भागो, डेक की ओर भागो।
6: क्या हो गया?
7: ये क्या हो रहा है? यार पूरी तरह हिल रहा है।
6: शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
8: ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
9: हेडपोर्ट कितनी बड़ी खराब पड़ गई है। अरे बचाओ, अरे तो पानी भर गया।
0: जहाज की स्पीड कम करो, ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो, एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हरे।
8: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो, सेव टाइटैनिक, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेल्प लाइफ सिग्नल भेजो, सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस।
8: जल्दी जल्दी करो,
0: जीवन रक्षक नावों को नीचे उतारो, लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट को नीचे उतारो।
10: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
3: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
4: सेव अस, टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
3: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
4: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
3: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
11: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
12: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
13: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
14: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो विश्वास नहीं होता। विश्वास
12: नहीं होता। Mr. Marconi.
15: जी।
12: अच्छा ये बताइए,
15: ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
12: गुड गुड।
15: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
16: बिल्कुल। वेरी गुड।

0: 20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
2: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण।
6: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक प्रसारण जोहार रांची।

0: कार्यक्रम जोहार रांची के सभी श्रोता साथियों को मीता बोले तो आपकी मीत का प्यार भरा नमस्कार।
1: श्रोता साथियों को मेरा यानी रचना का भी प्यार भरा नमस्कार और मीता जी आपको भी
0: नमस्कार। रचना रचना आज 3 सितंबर है।
1: हाँ हाँ मीता, ये सभी जान रहे हैं कि आज 3 सितंबर है, लेकिन आज 3 सितंबर है मतलब इसमें इतना जोर दे रही, क्या खास है?
0: खास तो मोटे तौर पर अगर कहूँ रचना तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहूँ तो आज की तारीख किसी ना किसी के लिए तो खास होगी ही।
1: आपका मतलब तो मैं अभी समझी नहीं, लेकिन आप जरा विस्तार से समझाइए।
0: अरे मेरा मतलब आज के दिन दुनिया के कितने ही लोगों का जन्मदिन होगा। आज के दिन दुनिया के कई लोग होंगे जो अपना 16वां साल मना रहे होंगे, कोई 30 का, कोई 60 का, सबके जीवन अपने अपने आयु के पड़ाव पर होंगे। यानी हर समय हर दिन कोई अपने जीवन के किसी अहम लगने वाले पायदान पर पहुँच रहा होगा।
1: अहम लगने वाला इसलिए क्योंकि समय को हम केवल बीतते रूप में ही देखते हैं और हिसाब रखते हैं। समय कहीं नहीं जाता। हम कहते हैं तो हैं कि वक्त नहीं मिलता, ये माने कि मौजूदा लम्हों का बेजा इस्तेमाल करेंगे तो समय की कमी की शिकायत तो रहेगी ही। अगर दिन के 3-4 घंटे फोन पर और देर रात तक आप सीरीज देखने का समय है तो समय की कमी कहाँ हुई?
0: बिल्कुल बिल्कुल, समय की कमी किसी के पास नहीं है रचना, लेकिन उसे उपयोगी ढंग से बिताने की नियत अलबत्ता बहुत कम है, और इसलिए हम कहते हैं कि समय की कमी है। मोबाइल, असमय नींद, आराम, टीवी, ये सब खुशी देते हैं रचना, लेकिन समय के आईने में देखेंगे तो ये व्यर्थ गंवाया हुआ समय है, हाथ से छूटते कौशल जैसा लगेगा आपको। आपका समय आप कैसे बिताते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है।
1: ये किसी और का फर्ज नहीं है कि आपके समय की रक्षा करे, उसके प्रगति पर बनाए। हमारा कल आज के बिताए समय के हिसाब से ही आकार लेता है। आज के समय के लिए जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वही कल में छलकेंगी।
0: वो बातें, वो इरादे दिखाना कि हम ये पालेंगे, वो कर लेंगे, बेमानी है। हर पल का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया तो हर दिन अवसर की तरह आएगा। समय के बेहतर इस्तेमाल की नियत और निरंतर प्रगति परक उपयोग वाली ईमानदारी वर्तमान में उजाला और भविष्य को चमक से भर देगी। और फिर हमारे श्रोताओं को ये नहीं कहना पड़ेगा रचना
1: कि समय तो
0: धीरे धीरे

0: हाँ मिता, बहुत ही प्यारा गीत था, लेकिन समय तो अपनी रफ्तार से ही चलेगा, वो हमारे कहे पे तो नहीं चलेगा
1: बिल्कुल, रचना
0: कितना
1: रफ्तार की बात से ख्याल आया कि पहले मानसून की रफ्तार भी काफी धीमी थी
0: हाँ सही कह रहे हो, लोग डरे हुए थे कहीं सूखा ना पड़ जाए, है ना।
1: झारखंड में।
0: हाँ
1: लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर झारखंड पहुंच गया और इस वजह से रांची सहित राज्य भर में लगातार बारिश हो रही है। इससे नदी नाले उफन गए हैं, सड़कों पर पानी भर गया है, डैम ओवरफ्लो होने लगे हैं।
0: नीता, हालात संभालने के लिए मंगलवार को काफी मतलब बारिश भी काफी हुई है, और शायद कुछ लोग जो है कुछ लोग क्या काफी लोग बारिश से परेशान हैं, घरों में पानी भी घुस जा रहा है, सड़कों पे भी पानी इतने ज्यादा है।
1: मंगलवार को जैसा आप बता रही थी कि चांडिल डैम के सभी 13 फाटक खोल दिए गए।
0: हाँ वहीं रांची में भी कांके और गेतलसूद डैम के एक एक फाटक खोल दिए गए हैं, और गेतलसूद से करीब 3 इंच और कांके डैम से 5 इंच पानी बहाया गया है।
1: बिल्कुल। और रचना, बंगाल में जो लगातार लो प्रेशर एरिया बन रहा है उसकी वजह से अच्छी बारिश हो गई और सूखे की स्थिति समाप्त हो गई, और बंगाल की खाड़ी की ही वजह से जो 2 और 3 निम्न दबाव के क्षेत्र बनने की संभावना है, इससे रांची में दूसरे से तीसरे सप्ताह में

0: झमाझम बारिश हो सकती है, मतलब सितंबर के महीने में. अभी जो सिस्टम बना है वो तो अभी थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब
1: से कम होने की भी थोड़ी बताई गई है.
0: लेकिन 4 और 8 सितंबर से थोड़ी कमी आएगी मानसून गतिविधियों में.
1: और इस अवधि में जो है तापमान में बढ़ोतरी भी होगी और लोगों को तेज धूप तथा उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ सकता है.
0: हाँ, लेकिन सितंबर माह के दूसरे और तीसरे सप्ताह में बारिश होगी और तापमान भी बढ़ सकता, मतलब ये संभावना आगे पीछे होती रहेगी. और जैसी संभावना थी सूखे की तो वो
1: नहीं, वो अब तो नहीं है.
0: वो जैसे कि वो सितंबर में जो 1 सितंबर में जितनी बारिश होती थी जैसे 1022 mm के लगभग, वो इस बार 1 सितंबर को 807 mm हो चुकी है. और आगे जो बारिश होने की संभावना है उससे लगता है कि मानसून का कोटा इस साल पूरा हो जाएगा.
1: वैसे भी जैसे हमने कहा था ना कि पहले भी कि मौसम जो है सामान्य से, मतलब बारिश जो है सामान्य से कम हुई है, लेकिन अभी जो बारिश हुई है वो अभी सामान्य से थोड़ी ज्यादा हो चुकी है. यानी कि बारिश जो है सितंबर में 224 mm हुई है और ऐसे में उम्मीद है, मतलब जैसा कि आपने बताया कि बारिश का जो कोटा है,
0: हम कोटे की बात कर रहे हैं और बारिश एकदम झमाझम होकर के हमारे सारे मंसूबों को पूरा कर रही है. और लेकिन कुछ दुखद बातें भी हो रही है, जैसे कि तेज बारिश के बाद डैम और बैराज में पानी भर जा रहे हैं और वहां से लगातार पानी छोड़े जा रहे हैं. जमशेदपुर के तटीय इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. उड़ीसा के ब्यांगबिल और खरकई डैम के 2-2 गेट, गांजिया बराज के 8 गेट और चांदनील डैम के 13 गेट खोल दिए गए, जैसा रचना ने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया. और गालुडी बराज से भी सुवर्णरेखा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है.
1: इससे खरकई और सुवर्णरेखा नदी का प्रवाह तेज हो गया है. खरकई नदी खतरे के निशान से 0.21 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी अभी 1.90 मीटर नीचे है. लगातार पानी छोड़े जाने और बारिश की संभावना को देखते हुए बागबेड़ा नया बस्ती समेत खरकई किनारे की निचली बस्तियों में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है.
0: और तिब्बत में जो विशाल ग्लेशियर झील फटने की आपदा से उत्तर बिहार की नदियों में भी अचानक बाढ़ का गंभीर खतरा हो गया है. बिहार में गंगा, सोन और पुनपुन जैसी प्रमुख नदियों के उफान से बाढ़ का संकट गहरा गया है. राज्य के 13 जिले इस आपदा की चपेट में हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है.
1: और समस्तीपुर के मेदिनीनगर और मोहनपुर प्रखंड की लगभग 2 लाख आबादी पर सीधे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. गंगा नदी मेनुदी नदी में खतरे के निशान से 1.50 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण निचले इलाकों में घरों, खेतों और सड़कों पर पानी भर गया है. भागलपुर में राघोपुर काजीकेरिया तटबंध पर तेज कटाव से रेलवे के टैंगिंग बांध को भी गंभीर खतरा है, जिसे बचाने के लिए दिन रात 200 ट्रैक्टर और 3 स्टीमर बालू की बोरियां गिराने में जुटे हुए हैं.
0: हाँ, यानी कि नदियों की स्थिति भी काफी भयावह हो चुकी है. और ये तो स्वाभाविक है रचना, अगर बारिश अच्छी होगी तो नदियों में जल स्तर तो बढ़ेगा ही, उफान तो आएगा ही और कुछ परेशानियां होंगी ही. और इसके लिए हमें मतलब तैयार रहने की आवश्यकता है. और प्रशासन की तरफ से निर्देश ऐसा दिया गया है कि आप नदी किनारे, झील किनारे, पानी वाली जगहों से थोड़ी दूर रहे, क्योंकि कब अचानक से पानी का बहाव तेज हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा और ऐसे में दुर्घटना हो सकती है. और रचना, ये तो थी बातें मौसम की और परेशानियों की, मौसम से होने वाली परेशानियों की. जाहिर सी बात है कि अगर बारिश में हमारे कृषक खुश हैं और
1: कृषक खुश है तो हम भी खुश हैं.
0: नहीं, कृषक खुश है लेकिन जब जनजीवन अस्त व्यस्त होता है तो आम जानता है वो नाखुश हो जाती है. और जहां बाढ़ आ जाती है वहां भी लोग परेशानी का सामना करते हैं. लेकिन एक प्रेमी हृदय क्या चाहता है, ये आप सुनना चाहेंगी?
1: बिल्कुल, तो चलिए क्यों ना श्रोताओं को सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गीत.

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: रचना, इस बरखा रानी ने प्रेमियों के दिलों में प्यार को जरूर परवान चढ़ाया है, लेकिन बीमारियों का भी घर बनाया है।
3: हाँ, बिल्कुल सही कहा। स्वाइन फ्लू, H1N1, इन्फ्लुएंजा और वायरस के संक्रमण से फैलने वाली एक सांस की बीमारी है।
2: हाँ, जो इन दिनों काफी परेशानी का सबब बनी हुई है। रचना, देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू का मामला तेजी से बढ़ रहा है। केवल दिल्ली में 3,000 से ऊपर मामले आ चुके हैं सामने, और इसे देखते हुए झारखंड में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
3: ये कैसे होता है ये भी हम बता दें कि स्वाइन फ्लू भी इन्फ्लुएंजा वायरस का ही एक प्रकार है, और संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या नजदीकी संपर्क से फैल सकता है। इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं, जैसे कि तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, शरीर में दर्द और कमजोरी इसके सामान्य लक्षण हैं, और कुछ मरीजों में सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है।
2: इससे बचाव कैसे करें, रचना, हम इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और इसके लिए है कि थोड़ी, मतलब जो सामान्य शिष्टाचार है, अगर हम उसका अनुसरण करें तो आसान हो सकता है। ये कि जैसे कि खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढके, हाथ को साबुन से नियमित रूप से साफ करें, बुखार, खांसी या सर्दी होने पर भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाएं।

0: सीजनल इन्फ्लुएंजा के मरीज भी हैं जो सामने आ रहे हैं। रेड फीवर का असर बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। शिशु अस्पताल में करीब 120 मरीजों में रेड फीवर की पुष्टि हुई, मतलब अपनी रांची में, और इनमें बड़ी संख्या में 5 से 10 वर्ष के बच्चे हैं। अब भी दर्जनों बच्चे भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं। मतलब स्वाइन फ्लू में तो जैसा हमने अभी बताया कि 11 मामले आ चुके हैं और अब तक लगभग 2000 मरीज हो चुके हैं। रचना,
1: तो अभी हम रेड फीवर की बात करें तो इसमें भी बता दें कि होता कैसे है, यानी कि गंदे पानी और चूहों के संपर्क से संक्रमण फैलता है और बारिश के मौसम में जल जमाव और गंदगी के कारण जो है लेस्टोपायरोसिस यानी रेड फीवर का खतरा बढ़ जाता है।
0: इसके लक्षण हैं तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, उल्टी, कमजोरी और आंखों में लालिमा। गंभीर स्थिति में संक्रमण किडनी, लीवर और फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए लगातार तेज बुखार रहने पर आप चिकित्सकीय सलाह जरूर लें।
1: और तीसरी बात हम कर रहे थे
0: सीजनल इन्फ्लुएंजा की, जो कि हर साल ही होता है,
1: जब भी मौसम बदलता है।
0: और इससे इसमें सबसे दुखद बात क्या है रचना, ना कि इसे कोई बीमारी की श्रेणी में रखता नहीं जल्दी से, लेकिन तकलीफ ये किसी भी बीमारी से कम नहीं देता। तो बदलते मौसम में जो है विभिन्न अस्पतालों के ओपीडी में भी आने वाले कुल मरीजों की का 30% से ज्यादा सीजनल इन्फ्लुएंजा के हैं।
1: सामान्य इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू के लक्षण काफी हद तक एक जैसे होते हैं। दोनों में बुखार, खांसी, गले में दर्द, नाक बहना, सिर दर्द और शरीर में दर्द हो सकता है।
0: यही कारण है कि सिर्फ लक्षण देखकर आप तय नहीं कर सकते कि मरीज को H1N1 है या सामान्य इन्फ्लुएंजा, इसलिए आप चिकित्सक से सलाह लें, खुद डॉक्टर ना बने। हमारे भारत में लोग खुद डॉक्टर जरूर बनते हैं रचना,
1: बिल्कुल तो हमारे पास बहुत है।
0: अगर आप किसी के यहाँ जाए और अगर आप बता दें कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, तो फिर एक से एक नुस्खे बताना शुरू कर देंगे। या फिर अगर आपकी तबीयत खराब है और अगर आपसे कोई मिलने आया है तो सिम्टम्स इतने गिनाने शुरू करेंगे कि अरे भाई यही मेरे को था, यही मेरे को था, और फिर मुझे डॉक्टर ने ये बता दिया, वो बता दिया, तुम भी ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो। ये नहीं करना है हमारे प्यारे श्रोताओं, क्योंकि आपका जीवन हमारे लिए बहुत अनमोल है, आपके स्वास्थ्य की हम बहुत कदर करते हैं, इसलिए सरकार के साथ साथ हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि आप चिकित्सा करें, अपनी करवाएं, मतलब डॉक्टर से सलाह लेकर, परामर्श लेकर के करें।
1: और इसमें हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस जो ये हमने बताई है ये चीजें जो है वो छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनको ये संक्रमण जल्दी
0: होता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी भी कमजोर होती है, गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी भी कमजोर होती है और बुजुर्गों की भी वही स्थिति होती है, और अक्सर बीमारियां हैं जो वो कमजोर इम्यूनिटी पर ही अटैक करती हैं रचना,
1: वो जल्दी चपेटे में आ जाते हैं।
0: तो हम अगर कुछ करना चाहें तो सबसे अच्छा यही है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं।
1: हाँ, इसके लिए जरूरी है कि इम्यूनिटी को बढ़ाएं, जैसा कि आप कह रही हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हमें अपने खान पान पर ध्यान देना होगा, और जो भी अच्छी चीजें हैं, पौष्टिक चीजें हैं, वो हमें खानी होंगी।
0: और अगर इन सब के अलावा आप चाहते हैं कि आप जल्दी रिकवर करें, आप अच्छा महसूस करें, तो फिर आप अपने करीबी लोगों को अपने आसपास रखिए और देखिए कि फिर कैसे बीमारी छुमंतर होती है।
1: हाँ, और बीमारी में जो है ना, देखिए आपका मूड खराब होता है तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप खूबसूरत सा गीत सुन लेते हैं तो भी आपकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाती है।
0: बिल्कुल, तो फिर बुलाइए किसी अपने को अपने पास।

0: पास बैठो तबीयत बहल
1: जैसा कि आपने पहले कहा था, आप
0: जाएगी।
1: अपने किसी अपने को अपने पास दिलाइए तो तबीयत आपकी ठीक हो जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहीं से भी मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है रचना, कि आपको जब किसी का साथ मिलता है तो फिर आप खुद को बेहतर महसूस करने लगते हैं।
1: सही बात है, एकदम
0: लेकिन
1: एकदम।
0: अब इस तरह की बातें बहुत हो चुकी हैं, अब हम झांकते हैं अतीत की ओर और चलते हैं इतिहास के पन्नों को पलटने, क्योंकि इतिहास के पन्नों में आज की तारीख के कई महत्वपूर्ण घटनाएं, उपलब्धियां और कई व्यक्तियों के, प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म और निधन अंकित हैं, दर्ज हैं। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का जन्मदिन है रचना, जैसे कि विवेक ओबराय का, आपने सुबह अपने प्रोग्राम में बताया ही है, प्यारे लाल जी का, और अभिनेता उत्तम कुमार जी का, और शक्ति कपूर जी जो पहले तो विलेन हुआ करते थे और उसके बाद जिन्होंने कॉमेडी में की तरफ रुख किया।
1: हाँ, उनकी बहुत सारी फिल्में हैं और गोविंदा के
0: हाँ,
1: साथ उनकी जोड़ी भी काफी पसंद की जाती थी, बहुत उनकी
0: अगर हम
1: फिल्में
0: विवेक ओबराय की बात करें तो वो अभिनेता होने के साथ साथ एक व्यवसायी भी हैं, सफल व्यवसायी भी हैं। उनका
1: हैं।
0: जन्म 3 सितंबर 1976 को हुआ।
1: विवेक, इनका पूरा नाम जो है विवेक आनंद ओबराय है और इनके पिता हम तो सभी जानते हैं, वो भी
0: बिल्कुल
1: किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सुरेश ओबराय उनके
0: जी।
1: पिता हैं, जो कि अभिनेता खुद भी बहुत अच्छे अभिनेता हैं।
0: और राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। अच्छे प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू के लिए भी इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए पुरस्कृत किया गया।
1: फिल्म रक्त चरित्र और क्रिश 3 के अभिनय के लिए भी उनके अभिनय की काफी सराहना भी हुई।
0: बिल्कुल। और जीवन अलवा की बेटी प्रियंका अलवा से उनकी शादी 6 फरवरी 2013 को हुई, माफ कीजिएगा, 10 में हुई, और 2013 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके प्रमुख फिल्में हैं जो नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री, उन पर बनी हुई है, पीएम नरेंद्र मोदी, ओमकारा, मस्ती,
1: मस्ती,
0: क्रिश 3।
1: क्रिश 3, काल, साथिया, मस्ती, युवा, ओमकारा, रक्त चरित्र, क्रिश 3, ग्रैंड मस्ती और कड़वा, यानी कि बहुत सारी फिल्में हैं उनकी जिनमें उन्होंने अभिनय किया और काफी अच्छी फिल्में भी रही, और उनमें एक फिल्म है जो साथिया, जो कि काफी हिट हुई थी, तो क्यों ना उन्हीं का गीत सुन लें हम।
0: बिल्कुल।

0: रचना, हम बातें कर रहे थे
1: इतिहास
0: इतिहास की,
1: और इतिहास में हम बातें कर रहे थे कि किन का आज जन्मदिन है। तो एक और शख्स की हम बात कर रहे थे जो है उत्तम कुमार, इनका जन्म भी आज ही के दिन,
0: हाँ,
1: 3 सितंबर 1926 को हुआ था कोलकाता में। इनके पिता सातकटी चट्टोपाध्याय कोलकाता के मेट्रो सिनेमा में प्रोजेक्टनिस्ट थे, इसलिए सिनेमा के प्रति उत्तम कुमार का आकर्षण बचपन से ही था।
0: और एक और अभिनेता हैं शक्ति कपूर, उनका जन्मदिन भी 3 सितंबर को था और 1952 में हुआ था उनका जन्म। उनका पूरा नाम सुनील कपूर है और खलनायक और कॉमेडियन के रूप में उन्होंने 700 से अधिक फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। अंदाज अपना अपना, एनिमल, गुंडा और ये सब फिल्में उनकी काफी प्रसिद्ध है। उनका एक बहुत मशहूर था आहू ये बहुत बच्चे बूढ़े जवान सभी इसको कॉपी जरूर करते थे, मतलब अभी भी करते हैं। और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1970-1980 के दशक में की थी और खलनायक से वो जब देखे कि भीड़ बहुत बढ़ रही है, लोगों का जो सफर है वो, मुंबई की तरफ बहुत लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने बेहतर समझा और ये हर किसी के साथ होना चाहिए, मतलब समय को पहचानते हुए उन्होंने कॉमेडी करने का निश्चय किया और एक कॉमेडियन के रूप में भी वो काफी सफल रहे। और रचना, गगनचुंबी इमारत दिवस भी है आज जो 3 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ये बहुत ऊंची इमारतों और उनकी वास्तुकला को समर्पित है जो किसी की भी शहर की भी पहचान बनती है। और ये प्रसिद्ध वास्तुकार लुईस एच सुलिवन की जयंती के उपलक्ष्य में चुनी गई है, जिन्हें गगनचुंबी इमारतों का जनक कहा जाता है। और मर्चेंट नेवी दिवस भी है आज की तारीख में। यह दिन वैश्विक व्यापार में नाविकों और मर्चेंट नेवी के योगदान के रूप में मनाया जाता है।
1: और आज ही के दिन जो है वो 1783 में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे आधिकारिक तौर पर अमेरिका क्रांतिकारी युद्ध सप्ताह
0: समाप्त हुआ।
1: और ब्रिटेन में अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई।
0: 1752 में ग्रिगोरियन कैलेंडर ब्रिटिश साम्राज्य में अपनाया गया, जिसके तहत 3 सितंबर से 14 सितंबर तक के 11 दिनों को कैलेंडर से हटा दिया गया, यानी 3 सितंबर के बाद सीधा से 14 सितंबर आया। और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी।
1: अमेरिका में 1833 को पहली सफल समाचार पत्र न्यूयॉर्क सन बेंजामिन एच डे के द्वारा भी को जो है आज के दिन शुरू किया गया था।
0: 1971 में कतर के देश के 55 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद स्वतंत्रता मिली थी।
1: और दक्षिण अफ्रीका ने 1984 में आज के दिन संविधान को अंगीकार किया था। और स्विस एयर का न्यूयॉर्क से जेनेवा जा रहा हवाई जहाज नोवा स्कॉटिया के पास जो है वो इसी दिन आज समुद्र में गिर गया था।
0: 3 सितंबर 1976 को नासा का अंतरिक्ष यान वाइकिंग 2 सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर उतरा और वहां से तस्वीरें भेजी। 1995 में मशहूर ऑनलाइन मार्केट प्लेस और नीलामी वेबसाइट ईबे की स्थापना पियरे उम्मीदयार द्वारा की गई। और रचना, जैसा कि हमने पहले ही अपने श्रोताओं को बताया कि मशहूर अभिनेता उत्तम कुमार जी का भी आज जन्मदिन है। उन्होंने हालांकि हिंदी फिल्मों में बहुत कम काम किया, लेकिन उनकी सुपरहिट फिल्म अमानुष का ये गीत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही
1: और
0: खूबसूरत तरीके से सुना दिया।
1: रचना अतीत से बाहर आते हैं और वर्तमान की बातें करते हैं, और वर्तमान में सबसे जरूरी क्या है, आपको क्या लगता है?
0: हाँ, वर्तमान में जरूरी क्या है?
1: हाँ
0: मुझे लगता है शायद रोजगार।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अपने श्रोताओं को भी हम रोजगार संबंधी कुछ जानकारियां दे दें। कुछ पदों पर रिक्तियां हैं और उनके लिए हमारे युवा श्रोता है वो आवेदन कर सकते हैं। तो पहला जो पद AI मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के 389 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के 389 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। चयनित अभ्यर्थियों को पद के अनुसार आकर्षक वेतन मिलेगा। और सबसे पहले हम बता दें कि इसके भरने की लास्ट तारीख जो है वो 7 सितंबर है, यानी कि अभी आपके पास समय है,
0: समय
1: बहुत
0: है।
1: ज्यादा नहीं है मगर समय है। तो पद के अनुसार योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है। उम्मीदवार के पास संबंधित विषय की बी या बीटेक, स्नातक, सीए, एमबीए, LLB या अन्य निर्धारित डिग्री होनी चाहिए। और आयु सीमा अधिकतम 27 से 32 वर्ष है। आरक्षितों को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क जो सामान्य और OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1,000 है। SC ST और दिव्यांग एवं महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। आवेदक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कैरियर सेक्शन में उपलब्ध आवेदन लिंक पर क्लिक करें। पंजीकरण के बाद आवेदन पत्र भरें, आवेदन शुल्क और फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंट सुरक्षित रखें।
0: और एक और जो पद है उसके लिए भी भर्ती निकाली गई है, वो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। रेलवे के अप्रेंटिस के 1,010 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। और इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता है। फ्रेशर पदों के लिए उम्मीदवारों का न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ विशेष ट्रेंडों के लिए 10+2 के तहत विज्ञान और गणित विषय आवश्यक है। वहीं XITI पदों के लिए 10वीं कक्षा के साथ संबंधित ट्रेंड में NCVT SCVT से ITI प्रमाण पत्र जरूरी है। और इसके लिए आयु सीमा जो है फ्रेशर के लिए न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष निर्धारित है, जबकि XITI उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 24 वर्ष है। और इसके आवेदन के लिए आप डायरेक्ट ऑफिशियल लिंक pv.icf.gov.in का उपयोग कर सकते हैं। और इसकी भी जो अंतिम तिथि है वो 7 सितंबर 2026 है।
1: यूपीएससी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के 80 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री आवश्यक है। इसके अलावा कंपनी लॉ, लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी। सामान्य और EWS के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 35 वर्ष उम्र सीमा है। और इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम 38 वर्ष और SC तथा ST के लिए 40 वर्ष। आरक्षित श्रेणी को ऊपर से आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क सामान्य OBC और EWS वर्ग के पुरुष के लिए ₹25 निर्धारित है। वही सभी वर्ग की महिलाओं, SC ST और दिव्यांगों के लिए ये निःशुल्क है। इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सबसे पहले UPSC की ऑफिशियल ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाना होगा। पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद अपने क्रेडेंशियल्स में से लॉगिन करके विशेष विज्ञापन संख्या के तहत दिए गए APFC पद के लिंक का चयन करना होगा। मांगी गई जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके फॉर्म को सफलतापूर्वक सबमिट करना होगा। ऑफिशियल जो ये है लिंक है वो है upsconlinenic.com। और चयन प्रक्रिया जो है वो उम्मीदवारों का चयन दो चरणों के आधार पर किया जाएगा। पहले चरण में पेन एंड पेपर मोड यानी ऑफलाइन में एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा और आयोजित होगा जो, और इस परीक्षा में सफल होने के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। और रचना, ये हमने अपने श्रोताओं को इसलिए भी बताया है क्योंकि रोजगार बहुत जरूरी
0: जरूरी है।
1: है
0: और कई बार
1: जिंदगी।
0: क्या होता है ना कि हमारे बच्चे जो है फ्रेशर हैं उनको पता नहीं चलता कि वो कहाँ जाए या उसके बाद क्या पढ़ाई करे या कहाँ उनको जॉब नौकरी मिल सकती है, तो इसलिए भी ये सूचना उनके लिए जरूरी थी।
1: और अगर अच्छे आप रोजगार में जाएंगे, अच्छी आमदनी होगी आपकी और पैसे अच्छे खासे आएंगे आपके पास, तो हम तो खुश होंगे ही। लेकिन हो सकता है कि आपका जीवन साथी जो हो वो आपसे कुछ ऐसी डिमांड कर दे कि आपको लगे कि अरे यार, समय रहते मेहनत क्यों नहीं किया था, ये वैकेंसी क्यों नहीं भरी थी। तो चलिए, किसी मूड का एक बेहद प्यारा सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें।
0: सुनाते हैं।

0: मुझे 9 लाख मंगा दे रे। रचना, 9 लाख सीता हार, तरह तरह के गहनों की फरमाइश अक्सर शादी ब्याह वाले गीतों में होती रहती है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार है ही काफी मजेदार और साथ ही खूबसूरत भी। रचना, ये सितंबर का महीना तो जैसे पूरा त्योहारों का महीना है।
1: बिल्कुल मीता, और
0: तीज का त्योहार आने वाला, जो महिलाओं का खास त्योहार है। बिल्कुल,
1: और जैसे कि कल जो है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है।
0: हाँ, कल ही के दिन यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में माता देवकी और वासुदेव के यहाँ हुआ था। यानी बुराई का नाश और धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर के अवतरण की खुशी में हम ये त्योहार मनाते हैं।
1: पूरे दिन उपवास में रहने के बाद रात 12 बजे पंचामृत, माखन, मिश्री और 56 प्रकार के व्यंजनों से उनको भोग लगाकर उनका स्वागत किया जाता है। उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें बचपन से ही माखन जो था वो अति प्रिय था।
0: इस अवसर पर अनेक जगह दही हांडी का उत्सव, रासलीला और झांकियां भी होंगी और होती हैं। घरों मंदिरों को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है।
1: घुंघराले केश वाले श्री कृष्ण की आंखें बड़ी बड़ी और मोहक थी। तन पर पीले वस्त्र और सिर पर मोर मुकुट धारण किए, गले में वैजंती माला और हाथों में बांसुरी लिए उनका रूप अति मनोरम नजर आता है।
0: बिल्कुल, और साथियों, श्री कृष्ण का रूप जितना मनभावन है उनका जीवन उतना ही प्रेरणादायक है। उनके द्वारा प्रतिपादित भगवत गीता आज भी हम सभी को जीवन के की सही दिशा देती है। और आज भी पूरा भारत, या हम कहें कि पूरा विश्व, लेकिन खास करके भारत इंतजार कर रहा है अपने उस लल्ला की कि फिर से वो अवतरित हों धरती पर और हमें अनुग्रहित करें, हमारा कल्याण करें।

0: राम और श्याम हमारे आराध्या, बस हमारे जीवन में जल्दी से आइए। और हम घड़ी की सुइयां तो इशारा कर रहे हैं रचना, बातें इतनी सारी हैं बोलने को, लेकिन हम अपने श्रोताओं से अभी यहीं पर अनुमति चाहते हैं। आने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की उनकी वो ढेरों शुभकामनाएं बधाइयां, और उनका जीवन मंगलमय हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मीता और
1: रचना को दीजिए विदा।
0: जोहार, नमस्कार, और श्री कृष्ण भजन का आनंद उठाइए।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रसारण जोहार रांची। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। हमारे श्रोता बेसब्री से इंतजार करते हैं अपने फरमाइशी गानों का, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से हमें पत्र लिखा होता है, तो हम भी उनकी मेहनत की पूरी कदर करते हैं, उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं और उनकी फरमाइशों का पूरा ख्याल करते हैं। चलिए हम एक एक करके उनके पत्रों को लेना शुरू करते हैं और पसंद को उनकी पूरी करते हैं। पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बाजार से भूपेंद्र सिंह की आवाज में। इस गीत को पसंद किया है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, सीता राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेक बीरक, मीका बीरक और ये पत्र आया है लेवई से गुलाबदास राजादास और दतरंगी से भागवत वर्मा का। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म बाजार का ये गीत।

और अब आइए सुनते हैं फिल्म ताल का ये गीत, अनुराधा श्रीराम, सुजाता, सोनू निगम और A.R. रहमान की आवाजों में। शब्द हैं आनंद बख्शी के और संगीत A.R. रहमान का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, ज्योतिका किशनपुर से आलम दिलकश, सवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज़।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के शब्दों को सुरों में पिरोया है राजेश रोशन ने। सुनना चाहा है खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, गौरव नायक, मंजू नायक, जलेशवार के सभी सदस्यों ने। गोलाम बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धा नंदारे, अभय नंदारे, परमानंदारे, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। भाटपारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जाविंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर ने।

0: कार्यक्रम आपकी पसंद इस वक्त जारी है। हम हाजिर होते हैं बस छोटे छोटे से अंतराल से।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और फिर से हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता, पहले हम उनके नाम बता दें। नूर महल महसूल सीतामढ़ी से आप हैं, मुसर्रत जहाना जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजत जहानाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, और कुआत बिहार से नरगिस जफर। बड़ा बामो सुपाई साई से आप हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश तांती, श्यामदेव नायक और ललित प्रधान। चकतरपुर ग्राम बेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती बनमाली बेसरा और सिद्ध कुमारी। ये पत्र आया है मगनपुर से, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं अमजद अली और अब्बास आलम। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म डॉन का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। अनजान के बोलों को शुरू में पिरोया है कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म डॉन के इसी गाने के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद समाप्त होता है यहीं पर। हमारा अगला कार्यक्रम है महिलाओं को जो संबोधित होता है, गृह लक्ष्मी। उसके लिए बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। दिन के 12 बज चुके हैं। ये समय है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। आइए सुनते हैं महिलाओं को संबोधित यह कार्यक्रम, जिसे आज आपके लिए प्रस्तुत कर रही हैं शिल्पी और वंदना राय।

0: बहनों नमस्कार। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम को लेकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सफर में हम दो सखियां हैं, मैं हूं शिल्पी और आज हमारे साथ एक और भी सखी हैं वंदना।
1: सखियों स्वीकार करें मेरा भी नमस्कार। जिस तरह आपको कार्यक्रम का इंतजार रहता है, ठीक वैसे ही हमें भी बेसब्री होती है आपसे मिलने की, मन की बातें ध्वनि तरंगों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की।
0: क्या बात कही, तो चलिए फिर देर किस बात की, हम निकल पड़ते हैं अपनी बातों के संग। और आज वंदना मुझे निदा फाजली की वो पंक्तियां याद आ रही है कि बेसन की सोंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फूकनी जैसी माँ।
1: बांस की खर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, आधी रसोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ।
0: सखियों बचपन की कुछ यादें, रसोई घर की खुशबू, मन चाहा खाना, स्वाद में ममता का स्पर्श, इसकी बराबरी भला कौन कर सकता है।
1: एकदम सही कहा शिल्पी। सखियों कहते हैं ना कि घर की पहचान उसके दरवाजे से नहीं, उसकी रसोई की खुशबू से होती है। हमारी पारंपरिक रसोई में स्वाद के साथ स्थानीय और मौसम साग सब्जियों का भी रंग दिखता था।
0: बिल्कुल। और दादी मामी, जो हमारी दादी होती थी, माँ होती थी या नानी भी कहें, मौसम के अनुसार भोजन बनाती थी। गर्मी आते ही आम का पन्ना शुरू हो जाता, सत्तू के घोल हम पीते थे, छाछ और मौसमी सब्जियाँ।
1: देखो न शिल्पी, अगर बरसात है तो घर घर से मक्के की सोंधी खुशबू, शाम होते ही पकोड़े, गरम गरम कोयले के चूल्हे पर रोटियां माँ सेकती हैं और अपने हाथों से हमें वो देती
0: हैं। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है वंदना कि जब हमारे आसपास पानी बहुत पड़ जाता है, हमारी कॉलोनी से निकलना मुश्किल हो जाता है, तो अपने ही अहाते से साग को तोड़कर, सब्जियां को तोड़कर माँ उसे पकाती थी। और सर्दी आते ही बहुत सावधानी बरतती थी, बाजरा मक्का तिल गुड़ और चूल्हे पर चढ़ जाता था गरम गरम पानी, याद है ना।
1: हाँ एकदम। और सखियों क्या आपको याद है कि वो बातें और वो दिन, वह रसोई घर जहाँ रात को चूल्हा नहीं जलता था बल्कि शाम की गोधली बेला होते ही घर घर के छप्पर से धुआं आने लगती थी, मानो ये इशारा होता कि रात का भोजन बनाने का वक्त हो चला।
0: बिल्कुल
1: है
0: वंदना, तुमने ऐसी बात कही कही मुझे तो अपने बचपन की गलियारे में याद आ गई। और ऐसा एक वक्त था जब सच में हम लोग शाम को खेलते थे बाहर में, तो ये पहचान होती थी कि अब घर चलें क्योंकि सबके छप्पर से धुआं निकलती थी। बहनों आंगन के बीच में एक सिलबट्टा होता था जहां मसाले और चटनी भी पीसे जाते थे। लोहे की कड़ाही में सब्जी छौंकते ही पूरे घर में खुशबू फैल जाती। सखियों पारंपरिक भोजन में स्वाद ही नहीं था बल्कि सच पूछे तो सेहत का खजाना भी छिपा होता था।
1: एकदम सही कही तुमने शिल्पी। अब सिलबट्टे की जगह मिक्सर ने ले ली है। घर में आंगन में जो सुखाकर पीसे जाने वाले मसाले की खुशबू आती थी, वो खुशबू तो अब कहाँ खो गई है, वो हमें पता ही नहीं चल रहा।
0: बहुत सही। और सच कहा जाए तो जल्दी तैयार होने वाले भोजन ने हमें धीरे धीरे ही करके, लेकिन पारंपरिक व्यंजनों को जो हमारी थाली थी उससे हमें दूर कर दिया।
1: अगर हम स्वाद और सेहत को फिर से चाहें तो अपनी रसोई घर में भी ला सकते हैं, बस जरूरत है फिर से हमें शुरुआत करने की।
0: बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। और जब वंदना ये बात हमारे मन में ख्याल आता है तो क्यों नहीं हमारी बात को सखियां भी सुनती होंगी, गौर करती होंगी, तो वो भी अपनाएंगी। तो सखियों पारंपरिक रसोई का मतलब सिर्फ मिट्टी का चूल्हा नहीं है। कई बार हमारे मन में आता है वंदना ये पारंपरिक रसोई मतलब वही सिलबट्टा, वही चूल्हा या पुराने बर्तन, लेकिन ऐसा नहीं है बहनों। इसका सीधा अर्थ है कि अपनी जड़ों को आप मत भूलिए। समय का अभाव तो है क्योंकि आज की जिंदगी बहुत भागम भाग है, पर हम चाहें तो महीने का एक दिन, सिर्फ एक दिन को बनाए अपना पारंपरिक रसोई का दिन।
1: सखियों यह सच है कि हम आधुनिकता की दौड़ में आगे चलना चाहते हैं, लेकिन पुरानी रसोई की स्मृतियों की खुशबू जो होती थी, माँ दादी का मनुहार होता था। बोलो
0: सखियों। मनुहार इसलिए तुमने कहा ना वंदना, तो मुझे बात याद आई कि जब अच्छी खुशबू आती थी और हम खेल में अगर व्यस्त रहते थे तो माँ हमें कई तरह से मनुहार लगाती थी ताकि उस भोजन को हम कर पाए। और बहनों आज जरूरत है हमें पुरानी रसोई को ज्यों का त्यों वापस लाने की कोशिश करें और पर्व त्योहार पर अपने गांव को जाएं, क्योंकि वरना तुमने कही ना कि दादी माँ की जो मनोहार थी तो वो अब शहरों में नहीं है। अगर हम गांव अभी भी जाते हैं तो हमारे यहाँ जो भी हैं बड़े हैं हमारे माता पिता, फिर वो खुश तो होते ही हैं और फिर वही सब चीज हमें भोजन का स्वाद मिलता है। तो सखियों आज भी जीवंत है हमारी परंपरा, जिसे देख कर मन बरबस कह उठेगा आ अब लौट चलें।
1: जब हमारे रसोई के घर से आवाज आएगी सिलबट्टी पर चटनी पीसने की, पर्व त्योहार में वही पकवान की मिठास घर में गूंजेगी, बड़ों की खिलखिलाहट हंसी से गुलजार होगा हमारा घर परिवार, तो आप कहेंगे कि मन ही मन गुनगुनाना भी चाहेंगे इस गीत को।
0: बिल्कुल।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: यदि माँ HIV से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को HIV का संक्रमण हो सकता है, इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की HIV जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0-9-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर DC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
4: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
5: सखियों, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इसीलिए समय समय पर हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर एक उम्र में हमारे शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है।
6: बिल्कुल, और आज हम अपने कार्यक्रम यानी संजीवनी के तहत जानेंगे पोषण और महिला स्वास्थ्य के बारे में, और आज की हमारी खास मेहमान हैं डॉक्टर ब्यूटी बनर्जी, और उनसे बातचीत की है हमारी रेडियो सखी सुभाषिनी।
7: आज हम सभी पौष्टिक भोजन से भली भांति परिचित हैं। पोषण केवल भोजन करने का नाम नहीं है, बल्कि भोजन से मिलने वाले उस जीवन अमृत का नाम है जो हमें बीमारियों से बचाता है और मानसिक रूप से मजबूत करता है। उम्र के हर पड़ाव में पोषण की जरूरत भी बदलती रहती है, इसीलिए पोषण को जीवन का आधार भी माना गया है। खासकर महिलाओं के लिए पोषण का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें विभिन्न शारीरिक बदलावों से गुजरना पड़ता है। तो चलिए आज हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर ब्यूटी बनर्जी को, जो कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
8: नमस्कार
7: जी। हमारा चूंकि महिलाओं का कार्यक्रम है, तो महिलाओं से जुड़ा होने के कारण आप पोषण का भी संबंध महिलाओं से बहुत ज्यादा है, तो महिलाओं के लिए पोषण का क्या महत्व है?
8: महिला क्यों खास है, क्योंकि पुरुष और महिला में अंतर क्या है? महिला की खासियत है कि उसमें प्रजनन की क्षमता है
7: जी।
8: यही खास चीज महिलाओं को अलग बनाती अलग है, और यही खास चीज महिलाओं को कमजोर भी बनाती है। क्यों बनाती है? तो इस चीज के लिए हमें महिलाओं को प्रिपेयर करना पड़ता है। 4 स्टेज में हम बांट रहे हैं महिलाओं को। जब एकदम कम उम्र की महिलाएं, जिसको किशोरावस्था कहते हैं, एडोलेसेंट, उसके बाद ऐसी महिलाएं जिसको फर्टाइल पीरियड में आती है, जो कि प्रजनन का क्षमता शुरू हो जाता है जब से उस समय, फिर जब महिलाओं का जो मासिक धर्म खत्म होने लगता है, पेरी मेनोपॉज जिसको बोलते हैं, कि उसके पहले का और थोड़े कुछ दिनों के बाद का समय, और ऐसी महिलाओं जिसका मासिक धर्म बंद हो चुका हो, और मेनोपॉजल महिलाओं के लिए, ठीक है। तो एडोलेसेंट एज में हम लोग क्यों, जब किशोरावस्था में हम लोग क्यों उस महिलाओं को अच्छा खाना देना चाहते हैं, क्योंकि अगर उस समय महिलाएं कमजोर हो जाए, महिलाओं की हड्डियां उस समय कमजोर हो जाए, नींव उसी समय होता है, खर्च उसी समय कर रहे हैं, बिल बढ़ती है कब, 40 के बाद, मेनोपॉज के बाद उसका बिल बढ़ती है, जब हड्डी बहुत उसका नरम हो जाता है। तो क्या करना है उस समय उनके लिए? 2 चीज है, एक आयरन होना चाहिए, और एक कैल्शियम होना चाहिए, कैल्शियम का सप्लीमेंट होना चाहिए। जितना भी कैल्शियम युक्त खाना है, दूध पीना है, पनीर खाना है, और बहुत सारे चीज। इंडियन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब हम लोग को होता है प्रोटीन का। प्रोटीन हम लोग बहुत कम लेते हैं। प्रोटीन जो लेना चाहिए वो है 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट।
7: हाँ, किसी महिला का बॉडी वेट अगर
8: 50 है
7: तो
8: उसको 50 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है।
7: बिल्कुल।
8: अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अंडा को हम लोग सबसे अच्छा सोर्स मानते हैं प्रोटीन का। एक अंडा में 6 ग्राम प्रोटीन रहता है।
7: अच्छा,
8: मात्र 6 ग्राम, और ये सबसे ज्यादा है। किसी भी चीज में इतना प्रोटीन नहीं है, और बाकी चीज में इससे कम है, मतलब वजन के अनुपात में मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आप 2 अंडा भी कोई लेती है तो 12 ग्राम प्रोटीन होता है। तो सुबह का जो पोषण है उसमें प्रोटीन लेने की बहुत जरूरत होती है। और हमारे यहाँ यूजुअली क्या होता है, हम लोग सुबह में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। हम लोग रोटी, भात, यही सब खाते हैं। या आजकल लोग जो बहुत फैशन है कॉर्नफ्लेक्स खाने का, तो कॉर्नफ्लेक्स क्यों अच्छा नहीं है, क्यों हम लोग मना करते हैं कॉर्नफ्लेक्स खाने, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, मूसली में शुगर कंटेंट का कॉर्नफ्लेक्स से कम होता है, तो मूसली खा सकती हैं। मूसली के साथ आप अगर दूध लेती हैं, दही लेती हैं, कुछ फल लेती हैं, तो वो आपका नाश्ता बढ़िया हो सकता है। लेकिन उसके साथ अगर आप दो बॉयल्ड एग ले लें, तो ये कंप्लीट भोजन हो जाएगा एडोलेसेंट के लिए भी, और जो वैसी महिलाएं जिसका उम्र 18 से 40 के बीच में हो,
7: अच्छा।
8: और जिसमें प्रजनन की क्षमता है।
7: बिल्कुल।
8: अब दूसरी बात क्या है कि महिलाओं में कि जो मासिक धर्म होने के कारण प्रति माह जो खून जाता है,
7: हाँ।
8: उससे हमेशा आयरन की थोड़ी कमी हो जाती है, तो उस आयरन को सप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो खाना से तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिसके लिए जिनके लिए खाना पर्याप्त नहीं है, और बहुत सारे हर चीज का सोर्स एनिमल सोर्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है आयरन के लिए भी, लेकिन यहाँ पर बहुत लोग शाकाहारी हैं और नहीं ले पाते हैं, तो उस समय उनको सप्लीमेंट की जरूरत

0: है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुफ्त में सभी सरकारी केंद्रों पर फॉलिक एसिड की और आयरन की गोलियां देती है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही।
0: उसका लाभ उठाए जाके लोग ले आते हैं दवाई और घर में छोड़ देते हैं, खाते नहीं है। तो इस चीज से बचे, सरकार अगर आपके लिए कुछ कर रही है, आपको आयरन एंड फोलिक एसिड की गोलियां दे रही है मुफ्त में, तो उसको लाए और उसको रेगुलरली एक टैबलेट खाए, तो आयरन और फोलिक एसिड की कमी नहीं होगी। फोलिक
1: बिल्कुल
0: एसिड क्यों, फोलिक एसिड के लिए हम लोग इतना बात क्यों करते हैं? तो फोलिक एसिड इसलिए है क्योंकि जब गर्भवती महिलाओं में जब गर्भ धारण करती है तो पहले 3 माह में बच्चा का ब्रेन बनता है, ठीक है?
1: बिल्कुल
0: तो उस समय उसी में वो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड की जरूरत होती है। अगर कोई महिला है और जिसको आपने देखा होगा जो क्लेफ्ट लिफ्ट क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चे होते हैं, जिसका
1: अच्छा
0: ओट कटा होता है या मुंह का कोई भाग खाली होता है या रीढ़ की हड्डी में से कुछ चीज बाहर निकला रहता है या रीढ़ की हड्डी पूरी नहीं बनती है, ये सब चीजों को हम लोग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को बहुत हद तक 90% ऑफ हद तक हम लोग एक फोलिक एसिड से उसका हम लोग बचाव कर सकते हैं। अब किस समय वो फोलिक एसिड लेना है, लेना चाहिए उनको गर्भ धारण के पहले,
1: अच्छा पहले से तैयारी मतलब जो करनी है।
0: तैयारी करना है। अगर
1: बिल्कुल
0: कोई गर्भ धारण के 3 महीने पहले से फोलिक एसिड लेना शुरू कर दे तब फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी किसी भी पेशेंट को। आप लोग प्लीज ये भ्रांति में मत रहिए, जब आप चाह रहे हैं, जब आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, आप उस समय डॉक्टर के पास जाइए और उस समय से अगर आप फॉलिक एसिड खाइएगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसा खतरनाक चीज जो हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी बच्चा को हो, तो उस चीज से आप अपने आप को बचा सकती हैं।
1: जी
0: एक
1: बिल्कुल
0: सिंपल सा, और बहुत अगर आप बाहर से भी खरीद के खाती है तो उसका भी ज्यादा कीमत नहीं होता, ये सस्ता है
1: सस्ता
0: फॉलिक
1: ही
0: एसिड
1: है दवाई।
0: और गवर्नमेंट तो फ्री ही देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाओं में भ्रांतियां बहुत ज्यादा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो प्रोटीन की बात कही आपने, तो प्रोटीन के संबंध में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो क्या है प्रोटीन को अपने डाइट में कैसे शामिल करें? आपने कहा कि एग ले सकती हैं, अगर
0: देखिए
1: एग के
0: बहुत
1: अलावा।
0: एक एक तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि अंडा सबसे सस्ता चीज है और खाना बहुत आसान है। किसी को अगर हम ये बोले कि रोज चिकन खाइए रोज मछली खाइए
1: हाँ
0: तो शायद वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता
1: हाँ
0: है।
1: मैं
0: अंडा
1: वेजिटेरियंस के लिए मतलब पूछना चाह रही थी।
0: वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन के अच्छे सोर्स है सोयाबीन, क्योंकि कंप्लीट प्रोटीन जिसमें बोलते हैं, कंप्लीट प्रोटीन जिसमें सारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो सोयाबीन में है, तो आप सोयाबीन ज्यादा खा सकती हैं। उसके अलावा दही में पनीर में भी ज्यादा प्रोटीन है, दाल में भी प्रोटीन है। दाल एक अच्छा चीज है, हालांकि उतना ज्यादा नहीं है प्रोटीन दाल में, लेकिन फिर भी दाल एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो दाल जरूर लेना चाहिए। और सारे भी जो बीन्स है, जैसे रांची या झारखंड में बहुत अच्छा फ्रेंच बीन्स मिलता है, तो उससे प्रोटीन भी मिलता है, प्रोटीन के साथ साथ बहुत अच्छा आपको फाइबर मिलता है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। तो यहाँ के लोकल सब्जियों में एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है फ्रेंच
1: फर्श।
0: बीन, फिर जिसको सेम बोलते हैं,
1: जी
0: सेम है, और भी बहुत तरह का यहाँ पर उस तरह का फली जिसको हम लोग कहते हैं, तो बहुत तरह के फली जो झारखंड में बनता है और लोकली मिलता है ये, तो लोकल जितने भी सब्जियां हैं ना वो सारे सब्जियां आपको आपके लिए बहुत अच्छा है। और जितना भी ज्यादा आप तरह तरह का चीज खा सकती हैं, मतलब एक ही चीज मत खाइए, हर तरह का सब्जी, हर तरह का फल, हर तरह की सब्जी जितना भी आप ज्यादा कर सकती हैं उतना अच्छा है। और जहां तक प्रोटीन कब लेना चाहिए, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा लेने की जरूरत है सुबह जब आप काम पे निकलते हो,
1: जी
0: तब आप ज्यादा प्रोटीन लीजिए। उसके बाद आप फिर से ज्यादा प्रोटीन लंच के समय लीजिए, दिन के खाने में भी लीजिए, रात के खाने में, रात में सोने के पहले हम लोग जो खाते हैं उसमें आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए, वो जो दाल चावल इस तरह का चीज अगर आप रात में खाते हैं तो उससे आपका पाचन भी अच्छा रहता है, नींद भी अच्छी होती है, और सारे चीज उस समय आपको, आप चूंकि उसके बाद आप काम नहीं करते सो जाते हैं, उस समय प्रोटीन थोड़ा कम लेना है।
1: जी पोस्ट मेनोपॉज के बारे में थोड़ा आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि उस टाइम महिलाओं को कुछ खास भोजन में अपना शामिल करना होता है, कि क्या क्या वो पौष्टिक चीजें अपने डाइट में शामिल करें?

0: मेनोपॉजल महिलाओं में क्या प्रॉब्लम होता है? दो चीज की प्रॉब्लम है, एक हड्डियां कमजोर हो जाना, दूसरी मांसपेशियां कमजोर हो जाना। ठीक है, तो मांसपेशियां के कमजोर होने के लिए हम लोग को प्रोटीन लेने की जरूरत है जिससे मांसपेशियां मजबूत हो, क्योंकि मांस मतलब प्रोटीन। प्रोटीन क्या चीज है? जैसे एक घर रहता है ना जो ईंट से बनता है, तो आप सोचिए प्रोटीन वही ईंट है, तो वो तो एकदम जरूरी चीज है। और जो आप बीच में छड़ देते हैं घर बनाने में, वो आपका हड्डी है, कैल्शियम से बनता है। तो आपको एक कैल्शियम लेने की जरूरत है, तो कैल्शियम ले और आप प्रोटीन ले, ये दो चीज बहुत ज्यादा महिलाओं को जरूरत है। तो अगर आप ले सकते हैं तो थोड़ा नट्स, नट्स में कहते हैं जैसे बादाम हो गया, बादाम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको आमंड कहते हैं, तो आमंड्स अगर आप ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, आमंड्स लीजिए, अखरोट लीजिए, ये सब चीज। और नहीं ले सकते हैं तो झारखंड में चिनिया बादाम,
1: मूंगफली,
0: मूंगफली जो बहुत ज्यादा उपज होती है यहाँ पर, तो आप रोज एक मुट्ठी मूंगफली लीजिए। मूंगफली आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपको वो जो इम्पोर्टेंट चीज जो पोस्ट मेनोपॉज के लिए जरूरी है वो आपको मिल जाएगी, कार्बन मिलेगा। आप ये लीजिए सेसमी सीड्स, तिल, तिल भी यहाँ बहुत मिलता है। तो आप हर खाने में थोड़ा सा ना सुबह, जैसे नट्स जितने भी सीड्स है, बीज हैं, जैसे पम्पकिन का कोहरा के बीज हो गया और इस तरह का चीज हो गया, तिल हो गया, बादाम हो गया, ये सब अगर एक मुट्ठी भर आप सुबह खाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि खाली प्रोटीन लेने से आपके मांसपेशियां अच्छी नहीं हो जाएंगी। बुढ़ापे में जो मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती है, इसका नींव डालना है शुरू से। अगर आप किशोरावस्था से थोड़ा एक्सरसाइज करती हैं, जिसको वेट बियरिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, थोड़ा वजन लेके एक्सरसाइज करना या थोड़ा वजन लेके घर का काम करना, उठाना, इस तरह का चीज अगर आप करती हैं, तब आपकी मांसपेशियां, और वो हमेशा से थोड़ा वेट बियरिंग एक्सरसाइज करेंगी, तो आपकी मांसपेशियां जो गलने लगती है, मांसपेशियां बहुत पतला और कमजोर हो जाता है, उस चीज से आप बच सकती है। तो शुरू से ही एकदम अर्ली लाइफ से किशोरावस्था से एक्सरसाइज का आदत डालना है और कैल्शियम की आदत डालना है। अगर आप कैल्शियम इतना खाना नहीं खा पाती हैं, तब सप्लीमेंट लीजिए, कैल्शियम की गोलियां लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। एक लास्ट एक चीज और का बहुत डेफिशिएंसी जो हम लोग आजकल हर पेशेंट पे देखते हैं, वो है विटामिन डी की। ये दुर्भाग्य है कि भारत में इतना धूप होने के बावजूद भी यहाँ पर विटामिन डी की इतनी ज्यादा कमी है। तो हम लोग यहाँ झारखंड समुद्र से बहुत दूर है, तो समुद्री मछलियों में बहुत विटामिन डी रहता है, लेकिन हमें वो मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बहुत महंगा है, जो लोग जनरल पीपल तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे हम लोग को सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। विटामिन डी का सप्लीमेंट लीजिए, किसी डॉक्टर से एक बार आप पूछ लीजिए, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए। और जो आजकल पीसीओडी और ये सब भी बहुत हो रहा है, ब्रेस्ट पेन, आपके सन में दर्द के भी बहुत केसेस आते हैं, पीसीओडी के बहुत केसेस आते हैं, एंडोमेट्रियोसिस के बहुत केसेस आते हैं, इवन गर्भावस्था में बहुत जरूरी है। तो हर चीज में, आपके मेनोपॉजल स्टेट में भी विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी के साथ ही हम लोग की हड्डियां मजबूत होती है, कैल्शियम ठीक से काम कर पाता है। तो विटामिन डी की सप्लीमेंट ले आप। बहुत बार लोग सोचते हैं कि टेस्ट कराए ना कराए, तो अगर आप टेस्ट नहीं भी कराते हैं और विटामिन डी ले लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा।
1: बिल्कुल, यानी कि विटामिन डी या जो भी जो हमारे पौष्टिक आहार जो है, खासकर की महिलाओं को अगर हम शुरू से ही किशोरावस्था से ही लेना शुरू करें, अपने डाइट में पौष्टिक चीजें शामिल करें, तो बाद की जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम लोग का जो इंडिया का जो इंडियन डाइट जो है वो बहुत अच्छा डाइट है, जैसे दाल चावल, ये दोनों मिला के अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है, दाल रोटी, ये दोनों मिला के अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। खिचड़ी, खिचड़ी में अगर आप बहुत सारे सब्जी डाल देते हैं तो वो बहुत अच्छा। यहाँ पर एक और चीज है, जो कोहरा आता है, पम्पकिन
1: जी,
0: कद्दू कोहरा जिसको बोलते हैं, पीला वाला जो आता है, तो वो उसमें बहुत ज्यादा विटामिन्स होता है। फिर शकरकंद, शकरकंद एक बहुत अच्छा चीज है। सहजन, सहजन का तो हर पार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन सहजन का पत्ता भी सुपर फूड है। तो ये सारी चीजें को अगर, और ये सारी चीजें सस्ती भी हैं,
1: सस्ती भी हैं और आसानी से मिल,
0: आसानी से मिल जाती है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, गरीब पेशेंट, और वो कीवी खाते हैं और ड्रैगन फ्रूट्स खाते हैं और इस ये सारी चीज में, महंगा चीजों में चले जाते हैं। अमरूद खाइए, आंवला खाइए, ये सब चीजें बहुत फायदेमंद है विटामिन सी के लिए भी।
1: जी बहनों, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, हमें जो महंगी दवाओं की तरफ नहीं जाना है, या महंगे जो फल आते हैं या महंगे जो खान पान आते हैं उनकी तरफ नहीं जाना है, हमारे हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बताया, उनसे हम विटामिन्स मिनरल्स ले सकते हैं और अपने भोजन को पौष्टिक बना सकते हैं।
0: कोशिश करें जितना तक हो सकता है, बहुत जरूरत नहीं हो तो पैकेट वाली खाना मत खाइए।
1: बिल्कुल, बहुत सही कहा श्रोता बहने, आपने सुना और डॉक्टर साहिबा की बातों से आपने लाभ भी जरूर लिया होगा और आप भी लाभान्वित हो और अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी जागरूक करें। डॉक्टर साहिबा से हम विदा लेते हैं, आप हमारे कार्यक्रम में आई और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आप सुन रही थी बातचीत और एक खास विषय था हमारे संजीवनी कार्यक्रम के तहत, पोषण और महिला स्वास्थ्य। और सच बात है भाई कि महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने घर परिवार की धुरी हैं, बच्चों को संभालते हैं, परिवार को संभालते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमारे घर में अगर किशोरी है तो उन्हें, उनके बारे में उन्हें आयरन, कैल्शियम, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो उम्र के हिसाब से चाहिए वो अवश्य देनी चाहिए। तो आज की हमारी मेहमान थी डॉक्टर ब्यूटी बनर्जी और उनसे बातचीत की थी हमारी रेडियो सखी शुभाषिनी।
3: तो बहनों, इसी के साथ और इस वादे के साथ अब दीजिए इजाजत हम दोनों सखियों को। और आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की।
2: और सखियों, आज के कार्यक्रम के सफर में हम दो सखियां थे, वैसे तो आप जानती ही हैं, मैं शिल्पी और हमारे साथ हैं
3: वंदना।
2: तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: गृहलक्ष्मी
5: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, जिसे प्रस्तुत कर रही थी वंदना राय और शिल्पी। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म तेजाब का ये गीत अलका याग्निक का गाया हुआ। जावेद अख्तर ने लिखा है इसे और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

Jim.

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनुरोध का गीत किशोर कुमार की आवाज में। शब्द थे आनंद बख्शी का और उसे संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं इस अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Yesena.
1: अभी आप भारतीय सेना की शौर्य गाथा पर यह संदेश सुन रहे थे। आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप इस समय कुछ फिल्मी गीतों का आनंद उठा रहे हैं। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दोस्ती का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और अब आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म हीरो का ये गीत अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में, शब्द आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, जिसे रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थ्रियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही।
1: The world is witnessing a time of
2: crisis. ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं। ये संबंध आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा प्रतिबद्धताओं पर आधारित हैं।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। श्री रूबियो ने ये बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस 5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को जीएसएलवी F-17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,588 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर रहा। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। महिला एशिया कप 2023 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में रविवार को भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी कनाडा के विक्टर लाई को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: to promote Indian textiles and craftsmanship in global markets. The Bharat Tex Trade Federation and Premier Vision Societe Anonyme exchanged a Memorandum of Understanding, MOU. In a social media post, the Textiles Ministry said the MOU will strengthen cooperation in exhibitions, market linkages, sustainable sourcing and knowledge exchange. The Enforcement Directorate ED is conducting search operations at 11 premises in Kolkata and West Bengal in connection with a 290 crore rupee bank fraud involving Kohinoor Power Private Limited. According to ED officials, the company had availed loans from banks for setting up a 66 megawatt power plant in Jharkhand, which was siphoned off to other group entities and diverted for personal purposes. The ED is conducting massive search actions simultaneously at 30 premises across all zones of southern regions in different narcotics-related cases. ED said the searches are being conducted under the mandate of Nasha Mukt Bharat. In Kerala, former Devaswam Board President P.S. Prashant, the 17th accused in the Sabarimala gold misappropriation case, has been granted bail. The Kollam Vigilance Court granted bail on health grounds after his earlier bail application was rejected. In badminton, India's Kidambi Srikanth stunned Victor Lai of Canada 21-18, 21-19 to enter the men's singles quarterfinals of the China Masters tournament in Shenzhen today. Srikanth will face Hong Kong's Lee Chiu Kiu in his next match. Meanwhile, in women's singles, India's Tanvi Sharma went down to world number 9, Tomoko Miyazaki, of Japan in the second round. And with that, we end this news bulletin.
1: Ranchi Kendra hai. Akashwani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में बंद कोयला खदानों के पुनर्उपयोग की पहल गिरिडीह और कर्मा ओसीपी पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयनित। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज विभागीय अधिकारियों के साथ राजस्व संग्रह की करेंगे समीक्षा। रांची के खेलगांव स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से सेना भर्ती रैली शुरू, हर जिले के अभ्यर्थी के लिए तिथि निर्धारित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस 5 का प्रक्षेपण करेगा। और रांची टोरी रेलखंड पर नगड़ी नया सराय रेलवे फाटक पर ट्रैक पुनर्निर्माण कार्य कल रात 10 बजे तक, सुबह से 4 बजे तक आवागमन रहेगा बाधित। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में बंद होने वाली कोयला खदानों के वैज्ञानिक पुनर्वास और सतत पुनर्उपयोग की दिशा में एक अहम पहल की गई है। राज्य सरकार ने गिरिडीह ओपन कास्ट प्रोजेक्ट और रामगढ़ जिले की कर्मा ओसीपी को पायलट परियोजना के रूप में चयनित किया है। इस संबंध में रांची में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में दोनों खदानों के लिए भारत सरकार को अनुशंसा भेजने पर सहमति बनी। यह पहल भारत सरकार के कोयला मंत्रालय और जर्मनी की संस्था GIZ के सहयोग से संचालित TCCM परियोजना के अंतर्गत की जा रही है। बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राज कमल सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड तथा CMPDI के अधिकारी मौजूद रहे। वाणिज्य कर विभाग में राजस्व संग्रहण को लेकर विभागीय मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में आज समीक्षा बैठक होगी। इसमें राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण, ऑडिट आपत्तियों पर कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में लंबित मामलों की स्थिति की भी समीक्षा होगी। नेपाल में आई भीषण प्राकृतिक त्रासदी के बीच भारत के राहत एवं बचाव कार्यों को लगातार गति दी जा रही है। इसी क्रम में भारतीय वायुसेना के माध्यम से राहत सामग्री की 5वीं खेप नेपाल पहुंची है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। श्री सेठ ने कहा कि संकट की हर घड़ी में भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूती से खड़ा है। रांची नगर निगम क्षेत्र में आगामी पर्व त्योहारों और मॉनसून के मद्देनजर पथ बत्ती व्यवस्था को बेहतर एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए अपर नगर आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में विद्युत शाखा की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मति, शिकायतों के त्वरित निष्पादन, नियमित पेट्रोलिंग और आवश्यकता वाले क्षेत्रों में नई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने संबंधित समीक्षा की गई। अपर नगर आयुक्त ने स्ट्रीट लाइट

0: व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। निगम ने नागरिकों से खराब स्ट्रीट लाइट की सूचना टोल फ्री नंबर 1800570123 पर देने की अपील की है। रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी के नए नियमों को लेकर आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग और अंग्रेजी विभाग के शोधार्थियों ने अपनी समस्याओं को लेकर कुलपति से मुलाकात की। विद्यार्थियों ने कहा कि नियमों में बदलाव के कारण उन शोधार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है जिन्होंने पुराने नियम के तहत प्रक्रिया पूरी की है।
1: हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मान लीजिए अगर किसी तरह से अगर इंटरव्यू में हम लोग का मेरिट लिस्ट में अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया तो हमारा फ्यूचर का क्या हो। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग जो पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों को हम लोग को पुराने नियम के आधार पर हम लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए।
0: देवघर जिले के पुलिस लाइन में 18 करोड़ की लागत से एक आधुनिक 7 मंजिला पुलिस भवन का निर्माण किया जाएगा। इस नए प्रशासनिक परिसर की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें जिले के 4 महत्वपूर्ण और विशेष थाने एक ही छत के नीचे संचालित होंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-5 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह भूसमकालिक कक्षा में स्थापित किया जाना वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। रांची के खेलगांव स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में आज से सेना भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। सेना भर्ती के लिए हर जिले और ट्रेड के लिए तिथि भी निर्धारित की गई है। रैली 15 सितंबर तक आयोजित होगी। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के मौके पर रिम्स में नेत्रदाता परिवार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेत्रदान करने वाले 20 परिवारों को सम्मानित किया गया। रिम्स निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर डी के सिन्हा ने नेत्रदाता परिवारों का आभार जताते हुए कहा कि नेत्रदान समाज के लिए बड़ी सेवा है।
2: बहुत सारी ब्लाइंडनेस के केसेज आते हैं तो उसका कारण होता है कॉर्निया में खराबी। कॉर्निया आंख के सबसे बाहर आउटर पार्ट है और इसको कोई भी व्यक्ति मृत्यु के उपरांत 4 से 6 घंटे के अंदर में इसको डोनेट कर सकता है। इसका अवेयरनेस अगर फैले, लोगों को पता चले कि इस तरह का करने से किसी की आंखों की रोशनी आ सकती है।
0: तेल कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 38 पैसे की बढ़ोतरी की है। राजधानी रांची में अब पेट्रोल की कीमत ₹105.64 और डीजल की कीमत ₹100.87 प्रति लीटर हो गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज सुबह से लागू हो गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त देखी गई। ताजा जानकारी के अनुसार सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 76,779 पर और निफ्टी 53 अंक बढ़कर 23,967 पर पहुंच गया। क्षेत्रीय स्तर पर रियल स्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,43,700 प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत ₹2,44,000 प्रति किलो है। रांची टोरी रेलखंड पर नगड़ी प्रखंड के नया सराय रेलवे फाटक RT-5 पर ट्रैक पुनर्निर्माण कार्य के कारण कल रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक आवागमन बंद रहेगा। रेलवे प्रशासन ने कहा कि यह कार्य रेल परिचालन की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए वाहन चालक और आम लोग इस अवधि में वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें। और अब मौसम का हाल। झारखंड में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र झारखंड से आगे बढ़ गया है। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात की भी संभावना है।
3: जो निम्न दबाव का क्षेत्र था वो आगे बढ़ गया झारखंड से और कमजोर होने की उसकी संभावना जताई जा रही है। 3, 4, 5, 6 दिन में बारिश का लेकर

0: वार्निंग नहीं है, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो बार थंडर स्टॉर्म के साथ में आपको देखने को मिल सकती है, बाकी समय में मौसम ठीक रहेगा।
1: इधर जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदी के जलस्तर में मंगलवार के मुकाबले कमी आई है। बुधवार शाम 6 बजे के आंकड़ों के अनुसार मानगो पुल के पास स्वर्णरेखा का जलस्तर 121.26 मीटर रहा, जबकि खतरे का निशान 121.50 मीटर है। वहीं आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
1: दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले के बाद अब भादो मेला चल रहा है। भादो मेले में भी हर दिन हजारों शिव भक्त बाबा फौजदारीनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन की तरह भादो में भी यहां कतार व्यवस्था जारी है, लेकिन अर्घा हटा लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में बंद कोयला खदानों के पुनरुपयोग की पहल, गिरिडीह और कर्मा ओसीपी पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयनित। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज विभागीय अधिकारियों के साथ राजस्व संग्रह की करेंगे समीक्षा। रांची के खेलगांव स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से सेना भर्ती रैली शुरू, हर जिले के अभ्यर्थी के लिए तिथि निर्धारित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 5 का प्रक्षेपण करेगा। और रांची टोरी रेलखंड पर नगरी नयासराय रेलवे फाटक पर ट्रैक पुनर्निर्माण कार्य, कल रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक आवागमन रहेगा बंद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी में आइए आज सुनते हैं शोभा गुरटू से मिस्र पहाड़ी में ठुमरी, और उसके बाद आप प्रस्तुत करेंगी दादरा। आपके साथ संगत कर रहे हैं सारंगी पर ध्रुव ज्योति घोष और हारमोनियम पर पी वाला वालकर। आइए सुनते हैं शोभा गुरटू को।

अंधेरिया है रात सजन, रहियो की जइयो। अभी आप सुन रहे थे शोभा गुरटू से ये कजरी। आपके साथ संगत के कलाकार थे सारंगी पर ध्रुव ज्योति घोष और हारमोनियम पर पे

Voilà, Volker. और इसके साथ ही उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुगम संगीत में आइए सुनते हैं भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाज में ये गजल।

दोस्तों, ये माना जिंदगी है चार दिन की, बहुत होते हैं यारो चार दिन भी। तो आइए इस चार दिन की जिंदगी को खुशी से जी लें।

मिताली और उपेंद्र सिंह की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये गजल, और आइए अब सुनते हैं तरत अजीज की आवाज में ये प्यारी सी गजल।

तलत अजीज की गाई इस प्यारी सी गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर इस समय दिन के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आप सुनेंगे, जिसे रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: happening over Bihar, East Rajasthan, Sabhimalayan, West Bengal, Sikkim, Uttarakhand and Madhya Pradesh tomorrow. In badminton, Kidambi Srikanth stunned world number 9, Victor Lai of Canada, in straight games to enter the men's singles quarterfinals of the China Masters Super 750 badminton tournament in Shenzhen today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Belgium agree to double bilateral trade in next 5 years. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Belgian counterpart in New Delhi. Agreements signed in areas of renewable energy, cyber crime and diplomatic training. Defence Minister Rajnath Singh and his Belgian counterpart commit to expanding bilateral defence ties through dialogue, high-level visits and capacity building. Finance Minister Nirmala Sitharaman meets investors at high-level business roundtable in New York, highlights government's focus on artificial intelligence, data centers and global capability centers. In Bihar, water level in Ganga River rises, increasing flood threat in new areas. And in badminton, Kidambi Srikanth beat Victor Lai of Canada to enter men's singles quarterfinals of China Masters in Shenzhen. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री टेओ फ्रॉन्कन ने संवाद उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की उन्होंने एआई डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे अब समाचार विस्तार से भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है फूड फ्यूल या सप्लाई चेन हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है
2: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी
2: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ एमओयू हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे
1: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार

0: को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
1: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
2: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैसडैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
4: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2000

0: 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
1: ग्रोथ इन एक्सपोर्ट इज 24%।
2: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक ज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश वाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
5: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
6: रांची में गेतलसूर डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्णरेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम जय भारती।

जय भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को मीता बोले तो आपकी मीत का प्यार भरा नमस्कार। फौजी भाइयों, सियाचिन की हाड़ कपाती ठंड हो या जलता थार में आप डटे रहते हैं, तभी तो हम भी आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हैं। तो ट्यून कर लिया है ना आपने भी आकाशवाणी रांची को। फौजी भाइयों, हमें पता है आपकी जिंदगी काफी व्यस्तता भरी और अनुशासित होती है, लेकिन हमारी तरह आपकी भी तो इच्छा कभी कभार पुराने दिनों को जीने की होती होगी।

दिल ढूंढता है फुर्सत के फिर वही रात दिन। ऐसे ही किसी मोड़ पर हम खुद को ढूंढते हुए कई बार उलझ जाते हैं। कई बार कुछ उलझने ऐसी होती हैं कि आपकी पहचान तक गुम हो जाती है, या फिर कहें कि आप जैसे फौजियों को अपने कर्तव्य पथ में कई बार अपनी पहचान छिपानी पड़ती है। लेकिन कहते हैं कि आपकी आवाज़ आपकी पहचान को उजागर कर जाती है।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची से कुछ फिल्मी गाने और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मीता। हम अभी हाजिर होते हैं, कुछ संदेशों को सुनते हैं।
1: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़. सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल.
3: संदेशों के बाद हाजिर है फिर मीता बोले तो आपकी मीत. मिला था कभी वो जीवन के सफर में, मिला था कभी वो जीवन के सफर में, छेड़ गया था जो दिल के तारों को. याद कर उसे आज भी मुस्कुरा लेते हैं हम, याद कर उसे आज भी मुस्कुरा लेते हैं हम. जाने फिर उनसे कभी मुलाकात हो ना हो.

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:55 हुए हैं। समय है प्रादेशिक समाचार का। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज सत्ता पक्ष के नेताओं ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान नेताओं ने छात्रों की विभिन्न समस्याओं और ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में झामुमो नेता विनोद पांडे ने आरोप लगाया कि जेपीएससी और जेएसएससी मामले में भाजपा छात्रों को उकसाने का काम कर रही है।
1: जो भाजपा के गुंडे थे उनके द्वारा इस तरह के स्थिति को उत्पन्न किया गया और सरकार से हम लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसे तत्वों पर, ऐसे लोगों पर अविलंब कार्रवाई करे जो छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने का जिन्होंने काम किया, सरकार को बदनाम करने का काम किया।
0: गौरतलब है कि कल भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई कथित धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। हजारीबाग के सदर भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने अपने आवास के बाहर संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे और निगरानी उपकरण लगाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। विधायक ने परिवार की सुरक्षा पर चिंता जताई है।
2: कोई आखिर लगा क्यों रहा आपके घर के सामने और हमारा दोनों गेट कवर करके इस तरह से लगाया जा रहा था, नाइट विजन कैमरा था, थोड़ा तो भय तो बनता है कि आखिर इस तरह से प्राइवेसी आपका क्यों करेगा। और जब तक प्रशासन इसमें पूरा क्लियर पिक्चर नहीं देता तब तक कुछ कहना भी बेकार है।
0: जमशेदपुर में टाटा स्टील प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच वित्त वर्ष 2025-26 के बोनस पर समझौता हुआ है। इसके तहत कंपनी के 25,000 से अधिक कर्मचारियों के बीच 315 करोड़ रुपए का बोनस बंटेगा। जमशेदपुर प्लांट के कर्मियों का औसत बोनस करीब 1,48,000 रुपए और अधिकतम 4,52,000 रुपए तय हुआ है। सरायकेला खरसावां जिले में सीजनल इन्फ्लुएंजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सिविल सर्जन डॉ. सरयू प्रसाद सिंह ने बताया कि राज्य के निर्देश अनुसार जिला अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है। ओपीडी में सर्दी, खांसी और सांस के मरीजों की विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा में आज मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत 7 केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए गए हैं। यहां मतदाताओं के दावों और आपत्तियों की सुनवाई की जा रही है। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सुशांत कंडुलना ने बताया कि आयोग के निर्देश अनुसार छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्रवाई जारी है।
3: दावा आपत्ति की सुनवाई राजकीय बालिका विद्यालय मिर्जाम में की जा रही है। 1/7/1987 से जिनका जन्म हुआ है तो उनका नोटिस में 12 दस्तावेज के बारे में दिया गया है। वह दस्तावेज लोग जमा कर रहे हैं और उसके बाद जिनका जन्म तिथि 1/7/1987 के बाद हुआ है उसमें से माता या पिता का कोई भी दस्तावेज और साथ में अपना दस्तावेज लोग जमा कर रहे हैं।
0: हजारीबाग के इचाक प्रखंड के शिवानी नदी में बहे 19 वर्षीय टिंकू कुमार का शव एनडीआरएफ की टीम ने 22 घंटे बाद बरामद कर लिया है। रांची से आई टीम ने कड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को निकाला जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर कीर्ति यानी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से देश के उभरते खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिल रही हैं। भारत सरकार का लक्ष्य देश के हर जिले में खेल प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करना है।
4: खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जो हमारे बच्चे हैं कम उम्र में ही जो होनहार खिलाड़ियों को पहचान कर उन्हें 2036

0: के ओलंपिक पोडियम के लिए तैयार कर रहे हैं। छोटी छोटी सी शुरुआत हमारे जीवन में बदलाव लाता है। तो भारत सरकार एकदम टारगेटेड वे में कि बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और उसके साथ साथ आपके जो हमारे युवा हैं, जो एथलीट हैं, उनके जो सुझाव हैं, उनको भी आमंत्रित करते हैं माई युवा भारत प्लेटफॉर्म पे।
1: 14वीं राष्ट्रीय पैंचक सिलाट चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक जीते। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं। विजेता खिलाड़ियों ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 3 बज चुके हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियाँ भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
0: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
0: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
0: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही। इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
2: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
2: श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
0: जी हाँ श्रोताओं, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
2: जी
0: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
2: श्रोताओं, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
0: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
2: अजीत जी, मैं इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
0: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी।

0: आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे।
1: जी।
0: सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है।
1: जी।
0: धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो 3-4 यात्री ही हुआ करते थे।
1: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया।
0: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
1: श्रोताओ, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
0: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
1: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
0: और फिर ट्रेन आती है।
1: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
0: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
1: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
0: विमलेश जी जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
1: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
1: जी,
0: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओं, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
1: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यूशिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
0: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
1: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
0: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
1: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
0: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
1: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं, उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओ, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
1: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
0: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
0: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी

0: माला यह तुम्हारे लिए है।
1: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप्प से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
3: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ एक मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
5: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
6: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
5: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
6: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
5: ना जाने क्या होगा इसका।
6: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
5: अरे वो सब तो ठीक है, पर
6: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
4: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।

0: झूठ माना।
1: श्याम है ना, अरे इधर तू आओ। हाँ हाँ आते हैं।
2: सैम है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
3: हम तो तैयार है मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
2: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
1: कैसा प्रयोग?
2: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
3: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
2: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
3: अच्छा
2: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ।
1: अच्छा।
2: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है। उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है। सिग्नल पहुंचते ही घंटी बज उठेगी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
2: फिर जाओ ना। पहुंच गए?
1: हाँ हाँ।
2: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
1: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
3: अरे वाह, अरे वाह, क्या
1: अरे वाह, मार्कोनी, क्या क्या बात है।
3: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह क्या बात है, अरे वाह।
2: सिग्नल मिला?
3: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
4: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित

0: एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
1: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
0: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूँ।
2: ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
3: ये क्या? ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved the world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है!
0: वाह, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह,
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि ये जहाज डूब नहीं सकता,
0: लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: अरे भागो भागो, बाहर निकलो, भागो, डेक खोलो, भागो। ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
0: ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
5: अरे हेड को कितनी बड़ी टक्कर पड़ गई है। अरे बचाओ, अरे पानी मत छोड़ो।
0: स्पीड कम करो, ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो, एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हेरी।
6: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो, सेव टाइटैनिक, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेड लाइफ सिग्नल भेजो, सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस।
6: जल्दी जल्दी करो,
0: जीवन रक्षक नावों को नीचे उतारो, लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट को नीचे उतारो।
7: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
3: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
4: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
3: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: पीटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ही काम करने वाला रेडियो।
6: विश्वास नहीं होता।
5: विश्वास नहीं होता।
3: मिस्टर मार्कोनी
7: जी,
3: अच्छा ये बताइए, ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है?
7: जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
3: गुड गुड।
7: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
8: बिल्कुल।

0: 20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
2: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रांची मेलोडीज़।

कार्यक्रम रांची मेलोडीज में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण के धरती पर अवतरित होने का दिन। सभी कृष्ण भक्त पूरे जोर शोर से इस पावन दिन की तैयारियों में लगे हैं। आज भी कई जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया होगा। ऐसे मौके पर खूब गाया और बजाया जाने वाला है खुद्दार फिल्म का ये गीत, जो पिछले 44 सालों से भारत में हर श्री कृष्ण जन्माष्टमी और दही हांडी उत्सव का सबसे बड़ा गीत बना हुआ है। इस गीत में अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं और माहौल भी काफी खूबसूरत है चौल का। कृष्ण की चंचलता से भरपूर ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है। लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। आइए सुनते हैं इस बेहद प्यारे गीत को।

साल 1999 में आई सुपरहिट फिल्म हम सांस है तह का गाना मैया यशोदा भगवान कृष्ण जी के नटखट और चंचलपन से प्रेरित गीत है। करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे और तब्बू ने बेहद खूबसूरत और पारंपरिक ढंग से भगवान श्री कृष्ण के नटखटपन की कहानियां सुनाई है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन है ही ऐसा, इतनी लीलाएं उन्होंने की है कि हर भक्त उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है।

भगवान श्री कृष्ण की इतनी लीलाएं हैं कि जितना भी बखान किया जाए हर लीला अपने आप में काफी आनंददायक है। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, यह सुनते ही माखन चुराते, गोपियों को तंग करते और बांसुरी बजाते बाल कृष्ण की छवि सामने आ जाती है। पूरा बचपन उनका लीलाओं से भरा हुआ था जो काफी दिलचस्प और अनोखी थी। आइए सुनते हैं अमर प्रेम फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द है आनंद बख्शी के और संगीत आर डी बर्मन का।

बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। जी हाँ, कृष्ण की चंचलता बांधने योग्य कहाँ थी, भला ईश्वर को भी कोई बांध सकता है। आइए सुनते हैं शागिर्द का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। लिखा है इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये फिल्म साल 1967 में आई और सायरा बानो पर यह गीत फिल्माया गया, जो काफी सुंदर है और जिसे कृष्ण भक्त आज भी बड़े प्यार से गाते हैं।

चाहकर समझ कर भी अगर श्री कृष्ण निहार लें तो किसी भी भक्त का जीवन संवर जाए। सांवले सलोने श्री कृष्ण पीत वस्त्र में, पीले वस्त्र में, घुंघराले काले बाल और बड़े बड़े मनमोहक नयन किसी का भी मन मोह ले सकते हैं।

आप सुन रहे हैं किसना फिल्म का ये गीत सुखविंदर सिंह इस शैलजा और आयशा दरबार की आवाजों में। बोल हैं जावेद अख्तर के और इस्माइल दरबार ने लिखा है। और इसके साथ ही रांची मेलोडीज कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजे हैं, प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। रांची में आज सत्तारूढ़ दल झामुमो, कांग्रेस और राजद के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। नेताओं ने पिछले दिनों हुए छात्र आंदोलन में शामिल

0: अराजक तत्वों को चिन्हित कर दंडित करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन की सीआईडी जांच में तेजी लाने का आग्रह भी किया है, जबकि ठीक एक दिन पहले भाजपा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। रांची में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कथित घोटालों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 6-7 वर्षों के बड़े घोटालों में मुख्यमंत्री और उनके करीबियों के नाम शामिल हैं, इसलिए राज्य की एजेंसियां निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। उन्होंने साहिबगंज के 1200 करोड़ के घोटाले और शराब घोटाले का विशेष रूप से जिक्र किया। रांची में आज महिला किसान खुशहाली योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समेकित खेती के जरिए महिला किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी। योजना के तहत हर जिले से 70 महिलाओं को जोड़कर 5 वर्षों में 1680 मॉडल महिला किसान तैयार किए जाएंगे। सरायकेला खरसावां जिले में आज पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी और एसडीपीओ अभिनव भारद्वाज ने 19 नए पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन पुराने खराब वाहनों की जगह विभिन्न थानों को सौंपे गए हैं, जिससे आपातकालीन हेल्पलाइन 100 और 112 का रिस्पांस टाइम कम होगा। और गुमला जिले के पालकोट प्रखंड कार्यालय से आज एसीबी की रांची टीम ने मनरेगा बीपीओ हरीश प्रजापति को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक लाभुक की शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने ये कार्रवाई की। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म किसना में सुखविंदर सिंह, शैलजा और आयशा दरबार को। शब्द रचना जावेद अख्तर की है, संगीत इस्माइल दरबार का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म लगान में आशा भोसले और उदित नारायण को, शब्द रचना जावेद अख्तर की है, संगीत ए आर रहमान का।

मिनीवे 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगले कार्यक्रम से पूर्व आइए आज के कुछ कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते चलें। अब से कुछ देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। संध्या 5 बजे और संध्या 6 बजे आप सुना करते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार और संध्या 7 बजे का वक्त हुआ करता है प्रादेशिक समाचारों का।

5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज के लिए चर्चा का विषय होगा ऊंची उड़ान के लिए मजबूत इरादे। आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत, रोचक तथ्य और बहुत सारी जानकारियां। श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक संध्या 5:30 पर। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा सेहत से समझौता नहीं, सही पोषण ही है सही विकल्प। आपको जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में। साथ ही आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे हुनर को दो नई उड़ान, स्वरोजगार को बनाओ अपनी पहचान। संध्या 6:02 पर कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा मिट्टी को जहर से बचाएं। साथ ही डॉक्टर सूर्यकांत मविक आपको जानकारी देंगे झारखंड में धान की प्रमुख बीमारियां एवं एकीकृत प्रबंधन।

5:30 पर कार्यक्रम, क्षमा करेंगे 6:30 पर कार्यक्रम हमारी दुनिया। कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें, साथ ही आप किरण कुमार की वार्ता सुनेंगे सफलता के लिए मेहनत जरूरी। सात बजकर 15 मिनट पर कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा, कार्यक्रम में आज संताली भाषा में आपको जानकारी दी जाएगी बरसात में मवेशियों के रहने के स्थान को साफ रखें, साथ ही बच्चों के खान पान में शामिल करें फल और सब्जियां। 7:30 से आप सुन सकेंगे महिला एशिया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच का आंखों देखा हाल। आज का मैच भारत बनाम हांगकांग के बीच है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 102.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह को, फिल्म गीत गाता चल में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
2: कार्यक्रम में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण को। शब्द रचना जावेद अख्तर की है, संगीत AR रहमान का, फिल्म का नाम है लगान।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
2: कार्यक्रम सांझ सरगम में आगे सुनते हैं। फिल्म काजल में आशा भोसले को संगीत रवि का है।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में श्रेया घोषाल, उदित नारायण, विशाल ददलानी, शेखर, शब्द रचना अनविता दत्त का है, संगीत विशाल और शेखर का।

0: इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कल रांची के मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथि गृह में सुबह 11:30 बजे एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। अपने झारखंड दौरे पर केंद्रीय मंत्री राज्य में चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर मीडिया से चर्चा करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी अध्यक्ष और अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि वन विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को 10 सितंबर तक समय सीमा बताने का निर्देश दिया है। रांची में मुख्य सचिव से इंडिया गठबंधन के मुलाकात पर भाजपा ने तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार को भाजपा द्वारा दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम की याद दिलाते हुए कहा कि छात्रों को न्याय न मिलने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रांची में आज महिला किसान खुशहाली योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पिनी हतिरकी शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समेकित खेती के जरिए महिला किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी।

पूरे राज्य में कल मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आज शाम से ही बाजारों में लड्डू, गोपाल के वस्त्र, बांसुरी और झूलों की रिकॉर्ड खरीदारी हो रही है। सरायकेला में मुरूप में जहां 7 दिवसीय मेला सज चुका है, वहीं रांची के प्रमुख मंदिरों में कल मध्यरात्रि होने वाली विशेष महापूजा के लिए भव्य लाइटिंग की गई है। और 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक जीते। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। शांतिकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूँ छवि। श्रोताओं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब आपको सुनवाते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में चंद युगल नगमे। संध्या के 5:30 से 6 तक आपको हम सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। संध्या के 6 से 6:02 पर आप सुनेंगे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 6:02 से 6:30 पर होगा बंगला कार्यक्रम सात रंग। संध्या के 6:30 पर आप सुनेंगे संथाली कार्यक्रम। 6:55 पर आपको हम लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल।

संध्या के 7:15 से 7:30 तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 7:30 से रात्रि के 8 तक आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इसमें चर्चा की जाएगी पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में। मनोरंजन होगा आपका हो लोकगीत से राम टूडू और साथियों के स्वर में। इसके अलावा मौसम की जानकारी दी जाएगी और आज के मेहमान के अंतर्गत आप भेंट वार्ता सुनेंगे महिला समूह एवं कृषि कार्य। भेंट वार्ताकार हैं लक्ष्मी मुर्मू और उनसे बातें कर रहे हैं ठाकुर चंद्र मुर्मू। लोकगीत आप सुनेंगे संथाली में शंकर चंद्र मुर्मू और साथियों के स्वर में। रात्रि के 8 से 8:45 पर आप हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम सुनेंगे। महिला एशिया T20 क्रिकेट मैच 2026 के अंतर्गत भारत और हांगकांग के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण इसके समापन तक। रात्रि के 8:45 से 9 तक आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 9 से 9:15 पर होगा अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 9:15 से रात्रि के 10 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10 से 11:45 तक आप सुनेंगे क्रिकेट मैच का प्रसारण इसके समापन तक।

श्रोताओं 11:46 पर सभा समापन की घोषणा की जाएगी। श्रोताओं आप अभी सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको हम सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में चंद फिल्मी गीत युगल नगमे आप सुनेंगे।

कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं महाप्रति फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। जतिन ललित का संगीत है और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। आज हम आपको युगल गीत सुनवा रहे हैं, तो चलिए इस गीत का आनंद हम सब मिलकर लेते हैं।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे मोहरा फिल्म का गीत, पंकज उदास और साधना सरगम की आवाजों में। इंदिवर के बोल थे, संगीत था बीजू शाह का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से कार्यक्रम गुलदस्ता में चंद युगल नगमे छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं फिल्म मिस्टर आशिक से अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजों में।
1: मेरा सच्चा

0: तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444 या 1800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे लम्हे फिल्म का गीत लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाजों में। बोल थे आनंद बख्शी का और संगीत था शिवारी का। श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने सुना चंद युगल नगमे छवि के साथ। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, इस समय संध्या के 5:30 हो रहे हैं और अब समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं, मैं हूं छवि। अब आपको सुनवाते हैं बहुत सारे फिल्में गीत, तो चलिए गीतों का सिलसिला शुरू करते हैं फिल्म मैंने प्यार किया के इस गीत से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की, देव कोहली के बोल हैं और संगीत है राम लक्ष्मण का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में चंद फिल्मी नगमे। अभी आप सुन रहे थे मैंने प्यार किया का गीत। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का गीत। शान और प्रिया की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, संगीत है समीर के बोल हैं, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत छवि के साथ। चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम से। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है। उदित नारायण और अलकन याग्निक की आवाजें हैं।
1: ओए, कहाँ जा रहे हो तुम?
2: मैकडॉनल्ड से हैमबर्गर लाने जा रहा हूँ, तुम खाओगी?
1: हाँ, लेकिन वेजिटेरियन।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

0: पदार्थों की तस्करी के आरोपी सागर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय संध्या के 6:02 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं बंगला कार्यक्रम सात रंग, बस कुछ ही पलों में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे बंगला कार्यक्रम सात रंग। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। अब आपको सुनवाते हैं संथाली कार्यक्रम।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: निये संदेश तैनम दा रेया आजार और ओना रेया बंचाव दी कथे मन डॉक्टर महेंद्र हंसदा तिखना गपाल मराबन अंजोमा।
3: ᱫᱟᱭᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱲᱢ ᱦᱚᱸ ᱞᱚᱞᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱥᱚᱢᱮᱱᱟ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱜᱟᱥ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱭᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱚ ᱥᱤᱠᱲᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱭᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱞᱮᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱡᱽᱨᱟᱭᱮᱱᱟ ᱦᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮᱱᱟ ᱚᱡᱽᱨᱟ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱦᱚᱭ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱠᱷᱩᱜ ᱢᱟᱫᱟ ᱢᱮᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱠᱩᱴᱷᱟᱹ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱴᱟᱭᱯᱷᱟᱭᱮᱰ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱦᱟᱭᱡᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱷᱩᱜ ᱢᱟᱫᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱠᱷᱮᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱞᱚᱦᱚᱫ ᱵᱟᱲᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱧᱟᱜ ᱧᱟᱢᱟ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱵᱟᱝ ᱡᱚᱢᱞᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱵᱮᱥᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱠᱳᱱᱟᱭᱤᱴ ᱱᱟᱠᱥ ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱟ ᱵᱮᱞᱟᱰᱳᱱᱟ ᱟᱥᱢᱤᱠᱟᱢ ᱮᱞᱤᱭᱮᱱᱥᱤᱯᱟ ᱤᱯᱷᱨᱮᱥᱤᱭᱟ ᱡᱮᱞᱥᱤᱥᱤᱭᱟᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱢᱮᱫᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱚᱲᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱩᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱮᱫ ᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨᱟᱜᱚᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱦᱟᱹᱥᱩᱣᱟ ᱦᱚᱭ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱛᱟᱨᱟᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱤᱱᱤᱯᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱱ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱹᱥᱩᱣᱟ ᱚᱠᱟ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱤᱱᱤᱯᱤᱫ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱤᱱᱤᱯᱤᱫ ᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱚᱠᱟ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱢᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱚᱧᱮ ᱢᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱤᱱᱤᱯᱤᱫ ᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱦᱟᱹᱥᱩᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱡᱮᱠᱴᱤᱵᱟᱭᱴᱤᱥ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱫᱚᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱮᱠᱳᱱᱤᱴ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱮᱫᱚᱜ ᱵᱟᱝ ᱰᱷᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱫ ᱟᱨᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱮᱞᱟᱰᱳᱱᱟ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱢᱮᱫ ᱡᱮᱨᱟᱜᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱞᱯᱷᱟᱨ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱮᱨᱟᱜ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱤᱭᱩᱯᱷᱨᱮᱥᱤᱭᱟ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱴᱷᱚᱯ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱭᱩᱯᱷᱨᱮᱥᱤᱭᱟ 20 ᱴᱷᱚᱯ ᱡᱤᱝᱠᱤᱱ 20 ᱴᱷᱚᱯ ᱟᱨ ᱨᱩᱴᱟᱹ 20 ᱴᱷᱚᱯ ᱪᱩᱣᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱴᱷᱚᱯ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱮᱫ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱯᱟᱹᱨ ᱥᱟᱞᱯ ᱟᱨᱡᱮᱱᱴᱟᱢ ᱱᱮᱴᱨᱤᱠᱟᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱚᱡᱼᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱰᱟᱭᱨᱤᱭᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱠᱚᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱡᱩ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱛᱤᱡᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧᱟ ᱢᱮᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱱᱩᱭ ᱛᱤᱡᱩ ᱫᱚ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱚᱡᱽᱨᱟ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱚᱡᱽᱨᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱡᱽᱨᱟ ᱛᱤᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱡᱤᱱᱤᱥᱮᱢ ᱥᱟᱵᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱡᱤᱱᱤᱥᱨᱮ ᱨᱚᱭ ᱟᱵ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱧᱟᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱚᱰᱚᱠ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱜᱞᱩᱠᱳᱡᱽ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱸᱭ ᱜᱚᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱰᱟᱭᱨᱤᱭᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱷᱟᱣ ᱡᱷᱟᱲᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱢᱮᱫ ᱵᱚᱞᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱞᱤᱱᱤᱴᱤᱵ ᱪᱮᱯᱚᱜᱼᱟ ᱢᱚᱪᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱨᱚᱦᱚᱲᱚᱜᱼᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱪᱤᱢᱴᱟᱹ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱟᱲᱟᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜᱼᱟ ᱱᱟᱹᱲᱠᱟᱹ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱨᱮ 140 ᱫᱷᱟᱣ ᱜᱟᱱ ᱟᱨ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱠ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱠ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱢᱤᱫ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱨᱮ 40-60 ᱫᱷᱟᱣ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱜᱮᱞᱟ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱥᱤᱱᱤᱠᱟᱢ ᱵᱷᱮᱨᱮᱴᱨᱟᱢ ᱮᱞᱵᱟᱢ ᱮᱞᱳ ᱠᱨᱚᱴᱚᱱ ᱴᱤᱜ ᱨᱤᱭᱩᱢ ᱯᱳᱰᱳ ᱢᱟᱨᱠᱩᱨᱤᱭᱟᱥ ᱠᱟᱞᱠᱟᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱯᱷᱚᱥᱯᱷᱚᱨᱟᱥ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱥᱩᱞ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱞᱟᱡ ᱦᱟᱹᱥᱩᱣᱟ ᱛᱚᱯᱟᱜᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱫᱚ ᱢᱚᱴᱟ ᱞᱟᱡ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱞᱤ ᱢᱚ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱞᱟᱡ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱦᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱥᱩᱞᱩᱡ ᱢᱮᱥᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱨᱠ ᱥᱚᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱢᱚᱴᱟ ᱞᱟᱡ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱜᱷᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱡ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱦᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱢᱮᱥᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱨᱠ ᱠᱚᱨ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱥᱩᱨᱩᱡ ᱢᱮᱥᱟ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱫᱚ ᱥᱩᱞ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱢᱮᱥᱟ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥᱤᱞᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱢᱟᱵᱤᱠ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱤᱞᱤ ᱟᱨ ᱟᱢᱤᱵᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱤᱡ ᱛᱤᱡᱩ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱠᱳᱱᱟᱭᱤᱴ ᱯᱷᱮᱨᱟᱢᱯᱷᱳᱥ ᱟᱥᱱᱤᱠ ᱵᱮᱯᱴᱤᱥᱤᱭᱟ ᱢᱟᱨᱠ ᱠᱳᱨ ᱢᱟᱨᱠ ᱥᱳᱞ ᱠᱞᱳᱥᱤᱱᱛ ᱱᱟᱠᱥ ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱞᱯᱷᱟᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱴᱟᱭᱯᱷᱮᱰ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱥ ᱴᱟᱭᱯᱷᱳᱥᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱛᱤᱡᱩ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱩᱭ ᱛᱤᱡᱩ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱯᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩᱣᱟ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱚᱜᱼᱟ ᱠᱷᱩᱜ ᱩᱞᱟᱹ ᱫᱚᱭᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱩᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ 102 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ 104-5 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱞᱮᱛᱟᱲᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱯᱩᱥᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱚᱰᱚᱝᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ 3 ᱦᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ 1 ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱠᱚᱢᱡᱳᱨᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱹᱪᱩ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱴᱟᱭᱯᱷᱚᱰᱤᱱᱟᱢ ᱵᱮᱯᱴᱤᱥᱤᱭᱟ ᱟᱨᱱᱤᱠᱟ ᱨᱟᱥᱴᱟᱠᱥ ᱵᱨᱟᱭᱳᱱᱤᱱᱟ ᱵᱮᱞᱟᱰᱳᱱᱟ ᱞᱮᱠᱮᱥᱤᱥ ᱚᱯᱤᱭᱟᱢ ᱟᱨ ᱦᱮᱥᱟᱭᱢᱟᱥ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱚ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱤᱡ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱯᱷᱤᱢᱮᱞ ᱮᱱᱳᱯᱷᱤᱞ ᱢᱚᱥᱠᱤᱴᱳᱭ ᱜᱮᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱧᱟᱧᱟᱢᱟ ᱱᱩᱭ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱫᱚ ᱚᱡᱽᱨᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱩᱯᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱟᱨᱮᱡ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱛᱚᱸᱵᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱚᱪᱚᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱟᱨᱮᱡ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱰᱤᱰᱤᱴᱤ ᱯᱷᱚᱪᱚᱨ ᱚᱪᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱡᱷᱟᱹᱞᱤᱛᱮ ᱴᱚᱯᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤᱛᱮᱢ ᱩᱭᱩᱠᱚᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱛᱷᱟᱨᱛᱷᱟᱨᱟᱣᱛᱮ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱡᱟᱠᱮᱫ ᱦᱤᱞᱟᱹᱣ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ 103 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ 105 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱞᱚᱞᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱞᱵᱟᱞᱟᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱟᱹᱡᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱪᱟᱵᱟ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱤᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱸᱡᱟ ᱠᱷᱚᱸᱡᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩᱣᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱩᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱫᱚᱭᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱨ ᱦᱟᱴ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱰᱷᱮᱨ ᱫᱤᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱠᱚᱢᱡᱳᱨᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱹᱪᱩ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱭᱱᱟ ᱤᱯᱤᱠᱟᱠ ᱟᱨᱥᱮᱱᱤᱠᱟᱢ ᱵᱨᱟᱭᱳᱱᱤᱭᱟ ᱤᱭᱩᱯᱮᱴᱳᱨᱤᱭᱟᱢ ᱯᱟᱨᱯ ᱱᱮᱴᱨᱟᱢᱤᱭᱩᱨ ᱡᱮᱞᱥᱮᱢᱤᱭᱟᱢ ᱪᱤᱱᱱᱟᱢ ᱥᱟᱞᱯ ᱟᱨ ᱪᱤᱱᱱᱟᱢ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱦᱟᱭᱡᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱭᱵᱨᱳ ᱠᱚᱞᱮᱨᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱛᱤᱡᱩ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱨᱮ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶᱨᱮ ᱩᱞᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱨᱟᱪᱟ ᱥᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱟᱸᱡᱮᱫ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱜᱞᱩᱠᱳᱡᱽ ᱥᱟᱞᱟᱭᱤᱱ ᱮᱢᱚᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱮᱨᱟᱴᱨᱟᱢ ᱮᱞᱵᱟᱢ ᱠᱩᱯᱨᱟᱢ ᱠᱮᱢᱯᱷᱚᱨ ᱠᱟᱨᱵᱳᱵᱷᱮᱥ ᱯᱳᱰᱳᱯᱷᱟᱭᱞᱤᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱠᱩᱧ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱪᱟᱯᱟᱠᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱟ ᱠᱩᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱞᱳᱨᱤᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭᱢᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩ ᱦᱚᱸ ᱞᱚᱞᱚ ᱡᱚᱢ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱟ ᱨᱚᱠᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱵᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱨᱚ ᱟᱞᱚᱭ ᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱟᱲᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚᱢ ᱡᱚᱢ ᱢᱟ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱩᱭᱢᱟ ᱟᱲᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱡᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱤᱥᱤᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝᱛᱮ ᱵᱮᱥ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱵᱽᱨᱟ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱢᱟᱫᱮᱨᱮ ᱜᱤᱰᱤᱭᱢᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱛᱤᱡᱩ ᱜᱚᱡ ᱨᱟᱱ ᱟᱨ ᱰᱤᱰᱤᱴᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚᱭ, ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚᱭ, ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ, ᱵᱮᱥ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱣᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱥᱩᱛᱩᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ
2: ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱡᱟᱨ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱼᱟ

श्रोताओं, आप सुन रहे थे संथाली कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको हम लिए चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
4: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में रिक्त संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 10 सितंबर तक मांगी समय सीमा। रांची में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन सम्मेलन संपन्न, लोकतांत्रिक सहभागिता और AI तकनीक पर हुई विस्तृत चर्चा। छात्र आंदोलन मामले में मुख्य सचिव से मिला सत्तारूढ़ गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल, अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग, भाजपा ने कसा तंज। रांची में महिला किसान खुशहाली योजना पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित, 5 वर्षों में तैयार की जाएंगी 1680 मॉडल महिला किसान। और 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में 9 पदक जीतने वाले राज्य के जांबाज खिलाड़ियों ने लोकभवन में राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC अध्यक्ष और अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि वन विभाग से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को 10 सितंबर तक समय सीमा बताने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि JPSC अध्यक्ष का पद लंबे समय तक खाली नहीं रखा जा सकता।
6: झारखंड राज्य में विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने JPSC के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर सरकार से 10 सितंबर के पूर्व जवाब दाखिल करने को निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई 10 सितंबर के बाद निर्धारित की गई है।
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के सहयोग से रांची में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता सूची 2026 संपन्न हो गया, जिसमें मतदाता सूची को लोकतांत्रिक सहभागिता की आधारशिला बताया गया। सम्मेलन के दौरान AI, डिजिटलीकरण और विभिन्न देशों की चुनावी प्रथाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। गिरिडीह के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राम निवास यादव ने डुमरी और सरिया में BLO के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरा करने वाले सभी युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया। बगोदर और डुमरी विधानसभा क्षेत्रों से अब तक कुल 9251 प्रपत्र 6

0: प्राप्त हुए हैं।
1: बीएलओ सुपरवाइजर के साथ मीटिंग किया है और जो 18 प्लस के मतदाता है उन सभी का नया फॉर्म 6 मंगवा रहे हैं। उनको आ रही कुछ भी समस्या प्रॉब्लम अड़चन को दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ SIR का भी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का टाइम पीरियड चल रहा है, सुनवाई पंचायत बात चल रही है, सभी लोग एडिशनल AR लोग कर रहा है।
0: रांची में आज सत्तारूढ़ दल झामुमो कांग्रेस और राजद के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। नेताओं ने पिछले दिन हुए छात्र आंदोलन में शामिल अराजक तत्वों को चिन्हित कर दंडित करने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच कुछ अराजक तत्वों ने घुसकर माहौल बिगाड़ने का काम किया है, जिन्हें बेनकाब करना बेहद जरूरी है।
2: हम लोगों ने भी चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि वैसे अराजक तत्व जो हैं, जो अशांति फैलाना चाह रहे थे या अस्थिर करना चाह रहे थे छात्रों के मांगों की आड़ में, उन लोगों को भी चिन्हित करके 48 घंटा में वैसे लोगों को भी जेल के सिकंजों में बंद करने का काम कर।
0: रांची में मुख्य सचिव से इंडिया गठबंधन की मुलाकात पर भाजपा ने तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सरकार छात्र आंदोलन के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए CID जांच का ड्रामा कर रही है। उन्होंने सरकार को भाजपा द्वारा दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम की याद दिलाते हुए कहा कि छात्रों को न्याय न मिलने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
3: पर देखिए कितनी बेशर्मी की हाइट है। झारखंड में बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ किसी पुलिसकर्मी को मारने का वीडियो नहीं आया था, फिर भी कह रहे हैं कि BJP के गुंडों को आइडेंटिफाई कीजिए। बिल्कुल हम चुनौती देते हैं, तमाम आपके पास जो आधुनिक तकनीक है उसे आइडेंटिफाई कीजिए, लेकिन छात्रों पर से अगर आपने मुकदमे वापस नहीं लिए तो 48 घंटे की डेडलाइन कल शाम को समाप्त हो जाएगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा के निधन पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दिवंगत न्यायमूर्ति को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका निधन न्याय जगत और झारखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कल रांची के मोराबादी स्थित राजकीय अतिथि गृह में सुबह 11:30 बजे एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। अपने झारखंड दौरे पर केंद्रीय मंत्री राज्य में चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर मीडिया से चर्चा करेंगे। रांची में आज महिला किसान खुशहाली योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समेकित खेती के जरिए महिला किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी। योजना के तहत हर जिले से 70 महिलाओं को जोड़कर 5 वर्षो में 1680 मॉडल महिला किसान तैयार की जाएंगी।
4: ये पूरा जो योजना है इसको 5 साल में फेज आउट किया गया है। प्रत्येक साल लगभग हम लोग 350 किसानों को आइडेंटिफाई करेंगे प्रत्येक साल, और लगभग योजना के अंत में 5 साल के बाद 1680 महिला किसान इस तरह का प्रोजेक्ट या मॉडल स्थापित हो पाएगा।
0: ईडी ने सरायकेला के कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के 11 ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच के अनुसार चांडिल थर्मल पावर प्लांट के नाम पर बैंकों से लिया गया कर्ज फर्जी कंपनियों और निजी संपत्तियों में डाइवर्ट किया गया। तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड कार्यालय से आज ACB की रांची टीम ने मनरेगा BPO हरीश प्रजापति को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एक लाभुक की शिकायत के सत्यापन के बाद ACB ने ये योजनाबद्ध कार्रवाई की। आवश्यक पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद टीम आरोपी BPO को रांची ले गई है।

0: पूरे राज्य में कल मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बाजारों में रौनक है और मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: कल होने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में उत्साह चरम पर है। आज शाम से ही बाजारों में लड्डू गोपाल के वस्त्र, बांसुरी और झूलों की रिकॉर्ड खरीदारी हो रही है। सरायकेला के मुरूप में जहां 7 दिवसीय मेला सज चुका है, वहीं रांची के प्रमुख मंदिरों में कल मध्य रात्रि होने वाली विशेष महापूजा के लिए भव्य लाइटिंग की गई है। रांची में इस्कॉन की ओर से 5 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव की भी कल से शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही रांची के आल्बर्ट एक्का चौक और मोराबादी मैदान में होने वाली प्रसिद्ध दही हांडी प्रतियोगिता के लिए भी बड़े मंच तैयार किए जा चुके हैं, जो युवाओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलार चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक जीते हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इस उपलब्धि पर पदक विजेता खिलाड़ियों ने लोकभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में रिक्त संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 10 सितंबर तक मांगी समय सीमा। रांची में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन सम्मेलन संपन्न, लोकतांत्रिक सहभागिता और एआई तकनीक पर हुई विस्तृत चर्चा। छात्र आंदोलन मामले में मुख्य सचिव से मिला सत्तारूढ़ गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल, अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग, भाजपा ने कसा तंज। रांची में महिला किसान खुशहाली योजना पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित, 5 वर्षों में तैयार की जाएंगी 1680 मॉडल महिला किसान। और 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में 9 पदक जीतने वाले राज्य के जांबाज खिलाड़ियों ने लोकभवन में राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता।
1: खूंटी जिले में इस हफ्ते मुरहू के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नालसा के निर्देश पर बाल हितैषी विधिक सेवा योजना से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत बाल संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधानों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस हफ्ते सोमवार को जिले के विभिन्न पंचायतों में SIR में मिसमैच नामों के सुधार के लिए विशेष शिविर सह जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फुदी पंचायत अंतर्गत कालामाटी के सरकारी विद्यालय परिसर में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में नामों की मैपिंग तथा अन्य विसंगतियों के संशोधन हेतु AERO ERO BLO तथा संबंधित पदाधिकारियों की उपस्थिति में SIR प्रपत्र में संशोधन की प्रक्रिया की गई। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण अमर बाबू तथा फुदी पंचायत की मुखिया अनीमा कच्छप ने बताया।
2: SIR को लेकर के हमारा राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय जो कि कालामाटी में स्थित है और फुदी पंचायत पड़ता है, और जो भी त्रुटियां हैं या विसंगतियां हैं उसको लोग भी काफी ज्यादा मतलब सहयोग कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा हो।
3: चौहान, मैं पूरी ग्राम पंचायत की मुखिया अनीमा कच्छप, और आज हमारे पंचायत में जन सुनवाई रखा गया SIR को लेकर, जिसका उद्देश्य है कि जितने भी हमारे गांव के हमारे पंचायत के लोग हैं उनका जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है SIR में उनका नाम ना छूटे।
1: जिले के उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन ने बताया कि SIR का ड्राफ्ट विगत 5 अगस्त को प्रकाशित हुआ था। उस ड्राफ्ट के अनुसार बहुत सारी नो मैपिंग के केस थे, कुछ नामों में विसंगतियां भी पाई गई थी।
4: मोस्टली अभी जो हम लोगों ने ड्राफ्ट रूल जो हमारा 5 अगस्त को पब्लिश हुआ था, उसके बाद बहुत सारे नो मैपिंग के केसेस भी थे, एनोमलीज के केसेस भी थे, तो इसको जो भी हमारे सिस्टम ने जनरेट किया है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने AERO कुछ एडिशनल AERO और ERO के थ्रू नोटिस निर्गत किए गए हैं क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में। तो इस दौरान जिन लोगों को भी नोटिस गया है कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिनका मैपिंग नहीं हो पाया है, जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने मैपिंग के दौरान भी कार्य किया था, वैसा ही सिमिलरली अभी मैपिंग जिनका नहीं हो पाया है उनको नोटिस गया है, उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है अपनी मैपिंग कराने के लिए।
1: इस हफ्ते ऑपरेशन मुस्कान के तहत खूंटी पुलिस ने 53 लोगों को उनके खोए मोबाइल बरामद कर वापस किए। इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने कहा,
5: पिछले माह भी हम लोगों ने इस प्रकार का एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें खूंटी जिला अंतर्गत जितने भी हमारे खूंटी वासी हैं जिनका मोबाइल गुम हो जाने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए खूंटी पुलिस ने उनके मोबाइल उन तक सुपुर्द करने का काम किया है। इसके लिए मुख्यालय से भी हम लोग को आदेश प्राप्त है और समय समय पर हम लोगों को यह कार्य करने के लिए कहा गया है।
1: बृहस्पतिवार को बिरसा कॉलेज खूंटी में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा सुरीन ने कहा,
6: हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी का जो संवाद चल रहा था जो संदेश हमारे बच्चों के लिए हमारे बच्चों ने देखा और इनसे इन लोग को सीख मिली और हम लोग भी यही चाहते हैं कि बच्चे खेल में ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हो और आगे आए।
1: खूंटी जिले के डुमरदगा निवासी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के छात्र और तीरंदाज सुधीर सांगा का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण साई हजारीबाग के लिए हुआ है। वहीं दूसरी तरफ खूंटी के ही अजीत नाग का चयन तीसरी बार भारतीय अंडर 18 रग्बी टीम के लिए हुआ है। आगामी 5 और 6 सितंबर को चीन में आयोजित होने वाली एशिया रग्बी अमीरात अंडर 18 चैंपियनशिप में अजीत नाग भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
0: अभी आप सुन रहे थे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित समाचार और जिले में आजकल। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:16 हो रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आपको हम सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कल जन्माष्टमी है, इस अवसर पर आप सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें और हम सबके जीवन में खुशहाली लाएं। तो चलिए सबसे पहले भगवान कृष्ण का ही गीत सुन लेते हैं। फिल्म का नाम है लगान, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत है ए आर रहमान का।

श्रोताओं, इस गीत को सुनना चाहते हैं तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहत मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, राजूबाई तड़वी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशरफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। कासम कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रिस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, कासिफ हासिम, इरफान मीना। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है सौदागर। लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश आवले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, यीशु और ताशु, खरसवा धलाई किला से लक्ष्मण सोए, मांगू सोए, गीता सोए, ललिता सोए, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। चलिए सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: ᱪᱟᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱳᱠᱜᱤᱛ ᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱮᱞᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ
1: ᱠᱚ प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है।
2: नैन संदेश को चनब चासगे को इलामियन बेपटा जपा गर्भ आयुम लिया विषय वतना महिला समूह एवं कृषि खरे मेन विषय रे लक्ष्मी मुर्मू और अकिलो जपगर रे मेना किने ठाकुर चंद मुर्मू
0: चसी बोया को नवा किसान वाणी कार्यक्रम रे जाओगे अडी लेकाना चासपास रे को हबन गपल मरा और इन साव सावते जहां रोजगार बढ़ावा अबवा चासबास खोन ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱦᱚᱱ ᱜᱟᱯ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱛᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
3: ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱤ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱜᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱨ
0: ᱜᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱢᱩᱦ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱦᱟᱸᱜ
3: ᱥᱟᱢᱩᱦ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱪᱮ ᱵᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱨᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱤᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱴᱤᱝ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱱᱚᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱚ ᱪᱟᱴᱟᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱚ ᱪᱟᱴᱟᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱟᱹᱴᱭᱟᱹ
3: ᱵᱮᱱᱟᱣ
0: ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
3: ᱥᱤᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱟᱨ ᱜᱨᱩᱯ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
3: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱲᱩ ᱤᱨᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱰᱷᱮᱨ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱜᱼᱟ ᱠᱚᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱢᱩᱦ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ
3: ᱫᱚ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱷᱮᱨ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱢ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱮᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱥᱚᱢᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤᱜᱼᱟ
0: ᱚᱻ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱮᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜᱼᱟ
3: ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱢᱤᱛᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱦᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱢᱮᱭᱟᱝ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ
3: ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ
0: ᱚᱱᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜᱼᱟ
3: ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱨ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ
3: ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ
0: ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱟᱵᱷ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
3: ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱟᱵᱷ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱱᱚᱣᱟ
3: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱫᱟᱲᱮ
0: ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱥᱟᱹᱢᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱟᱹᱢᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱞᱚᱜᱚᱱᱮ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱟᱨ ᱵᱮᱝᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮᱱᱫᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱹᱢᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱟᱨ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ
0: ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
3: ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱮᱢᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱳᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱢᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱮᱝᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱮᱢᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱢᱟᱹᱦᱤᱞᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱮᱫ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱹᱦᱤᱞᱟ ᱥᱟᱹᱢᱩ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
3: ᱥᱟᱹᱢᱩ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱮᱛᱮ ᱦᱚᱲᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ
3: ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱮᱵᱤᱠ ᱟᱨ ᱨᱟᱥᱟᱭᱱᱤᱠ ᱠᱷᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚᱭᱳᱜᱽ
0: ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱹᱢᱩ ᱫᱟᱨᱟ
3: ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱨ
3: ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱮᱵᱤᱠ ᱠᱤᱴᱱᱟᱥᱤ ᱛᱤᱡᱩ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱨᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚᱭᱳᱜᱽ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱥᱟᱢᱤᱛᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱥ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱢᱤᱛᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱦᱤᱞᱟ ᱥᱟᱹᱢᱩᱦ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱞᱚᱠᱥᱢᱤ ᱵᱟᱹᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱦᱤᱞᱟ ᱥᱟᱹᱢᱩᱦ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱢᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ
3: ᱥᱟᱹᱢᱩᱦ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱟᱦᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱢᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱢᱯᱳᱥᱴ ᱠᱷᱟᱫ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱦᱤ ᱪᱟᱥ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱛᱩ ᱠᱚ ᱟᱲᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱢᱨᱩᱫ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱹᱭ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱣᱟ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱥᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱜᱟᱹᱭ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱤ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱚᱠᱥᱢᱤ ᱵᱟᱹᱭ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚᱢᱤᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱰᱷᱮᱨ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱦᱳᱭ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱰᱷᱮᱨ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱮᱝᱠ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱢᱟ ᱤᱫᱤᱭᱮᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱵᱟᱝᱟ ᱵᱮᱝᱠ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱚ ᱡᱟᱢᱟ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱦᱳᱭ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱧᱚᱜ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ

0: ᱪᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱹᱦᱤᱞᱟᱹ ᱥᱚᱢᱩᱦ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱪᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ?
1: ᱦᱳᱭ, ᱢᱟᱹᱦᱤᱞᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱢᱩ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱩ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱩ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱟᱢᱩ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ
0: ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱞᱚᱠᱥᱢᱤ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱤᱠᱤᱱ, ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱤᱱ ᱮᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱱᱮᱱ ᱵᱮᱯᱟᱴᱟ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱤᱞᱟ ᱚᱰᱚ ᱢᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱤᱭᱟ
3: ᱢᱟᱱᱚᱱᱤᱭᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨ ᱢᱳᱫᱤ ᱡᱤ ᱠᱮ ᱫᱩᱨᱫᱚᱨᱥᱤ ᱱᱮᱛᱨᱤᱛᱵ ᱢᱮ ᱯᱤᱪᱷᱞᱮ 8 ᱥᱟᱞᱚ ᱢᱮ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱮᱵᱚᱢ ᱤᱥᱥᱮ ᱡᱩᱲᱮ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱟᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱵᱟᱱᱟᱱᱮ ᱟᱨ ᱠᱤᱥᱟᱱᱚ ᱠᱚ ᱥᱚᱥᱚᱠᱛ ᱮᱵᱚᱢ ᱟᱛᱢᱚᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨ ᱵᱟᱱᱟᱱᱮ ᱠᱮ ᱞᱤᱭᱮ ᱠᱟᱭ ᱢᱚᱦᱚᱛᱚᱯᱩᱨᱱ ᱠᱟᱫᱟᱢ ᱩᱴᱷᱟᱭ ᱜᱟᱭ ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱞ 2013-14 ᱢᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱠᱮᱵᱚᱞ 21,933 ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱨᱩᱯᱮ ᱛᱷᱟ ᱵᱟᱦᱤ ᱥᱟᱞ 2022-23 ᱢᱮ ᱤᱥᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟ
4: ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱚ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ ᱱᱤᱫᱷᱤ ᱟᱛᱤ ᱦᱮ ᱱᱟ ᱚ ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱢᱮ ᱟᱛᱤ ᱦᱮ ᱩᱥᱢᱮ ᱠᱚᱭ ᱫᱤᱠᱠᱚᱛ ᱱᱟᱦᱤ ᱠᱚᱭ ᱵᱮᱵᱫᱟᱨ ᱱᱟᱦᱤ ᱚᱨ ᱯᱷᱤᱨ ᱩᱥᱠᱚ ᱱᱤᱠᱟᱞ ᱠᱮ ᱦᱟᱢ ᱵᱟᱡᱨᱟ ᱠᱚ ᱵᱤᱡ ᱞᱮ ᱟᱛᱮ ᱦᱮ ᱜᱮᱦᱩᱱ ᱠᱚ ᱵᱤᱡ ᱞᱮ ᱟᱛᱮ ᱦᱮ ᱥᱚᱨᱥᱚ ᱠᱚ ᱵᱤᱡ ᱞᱮ ᱟᱛᱮ ᱦᱮ ᱵᱟᱛᱮ ᱦᱟᱢᱟᱨ ᱡᱮ ᱠᱷᱮᱞ ᱪᱟᱞᱛᱚ ᱵᱟᱲᱦᱤᱭᱟ
3: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
5: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
3: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा MSP दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए MSP दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
6: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मील चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
3: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
7: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
3: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
8: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ, मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
3: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
9: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
3: कृषि में रिफॉर्म

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
7: मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नितोबन अजमे थन मिट बार जरूरी संदेश निये संदेश तयम दिला आरहों कार्यक्रम मुचिर अरमु रस्कन्यो लंगेनवा संथाली लोकगीत ते शंकर चंद्र मुर्मू आर सांतेन को सपड़ाते।

0: क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला एक देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनाने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा कि देश 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का आंकड़ा पार कर चुका है, जो वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य की ओर देश की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गुजरात के अहमदाबाद में भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन

0: और प्रदर्शनी 2026 के अंतर्गत आयोजित एक रोड शो में श्री नाइक ने ये बात कही। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण बुनियादी ढांचा, ऊर्जा भंडारण
1: నిర్వహించారు.
2: అందులో వ్యవసాయ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఇస్ వెల్ ఫర్ హాంగ్కాంగ్ దే హావ్ మేడ్
3: అచ్చా అచ్చా కుచ్ నహీ బే యే సబ్ ఇస్లియే కర్ రహా హూం కి తూ భగత్ జీ కా బేటా హై ఔర్ మై భగత్ జీ కి బహుత్ ఇజ్జత్ కర్తా హూం తుమ్హారి వ్యవస్థా మే సబ్సే షరీఫ్ ఆద్మీ హై వో యే లే పాజామా పహన్ లే చాయ్ పియేగా
4: జానే తో సాహబ్
3: హా హా జానే తో దూంగా पहले तुझसे जरा बातें तो कर लूं। तू सबसे बड़ा लगता भगत जी का?
4: नहीं साहब, मेरे से बड़ा एक और था।
3: था मतलब?
4: वो भाग गया साहब, जब बाप का पैर कटा और घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो एक दिन वो चुपके से भाग गया।
3: वाह क्या कलयुग का श्रवण कुमार था। उसके बाद तू है?
4: जी नहीं, एक बहन है मेरे से बड़ी।
3: शादी हो गई उसकी?
4: हो गई थी, मगर उसका आदमी दारू का धंधा करता था साहब, इसलिए पकड़ा गया। साल भर की हो गई।
3: वाह वाह वाह शाबाश, ये सारे नमूने भगत जी के भाग में बदे थे। आजकल बहन कहाँ है?
4: हमारे घर में है साहब, वो छोटे छोटे दो बच्चे लेकर कहाँ जाती अकेली।
3: तीसरा नंबर तेरा है
4: जी।
3: और तेरे बाद?
4: मेरे बाद एक भाई है, उसके पीछे तीन बहने हैं।
3: भाई क्या करता है?
4: कुछ नहीं साहब।
3: कुछ नहीं तो मतलब सब लोग भगत जी की छाती पर बैठ कर खाते हो। माँ तुम्हारी माँ कुछ काम करती है?
4: बर्तन भांडे मांजने जाती है साहब, दो तीन घरों में।
3: भगत जी को मिल से मुआवजा भी तो मिला होगा पैर कटने का?
4: हाँ साहब, उसमें से थोड़ा सा बहनोई के मुकदमे में खर्च हो गया और बाकी मंदिर को चढ़ावे में दे दिया
3: भगत जी ने।
4: हाँ साहब।
3: वाह वाह वाह क्या श्रद्धा है, क्या देवता आदमी है। जिनकी तिजोरियां भरी होती है उनकी जेब से तो चवन्नी तक नहीं निकलती मंदिर के नाम पर। अरे भगत जी है सो, मेरी तो समझ में नहीं आता ऐसे देवता के घर राक्षस कहां से आ गए। एक वो है जिनका मुंह खुलता है तो जबान से राम राम निकलता है, और एक तुम हो जो चोरी के इल्जाम में सड़कों पर जूते खाते फिरते हो। शर्म आनी चाहिए, अब सिर झुका कर क्या बैठा है। उधर देख, उधर देख, वो दीवार पर तस्वीर देखता है, जानता किसकी है? मेरे पिताजी की है। मैं 3 बरस का था तभी चल बसे थे, उनकी सूरत बस इस तस्वीर में ही देखी है मैंने। सिवाय इस तस्वीर को माला लाने के और कोई सेवा नहीं कर सका मैं अपने जन्मदाता की। इतना तरसा हूं जिंदगी भर बाप की परेशानी को, और बाप ही क्या, भाई बहन भी नहीं, बस मां ने किसी तरह पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। लेकिन तुम मां बाप भाई बहनों की कदर क्या जानो। सब दिया है ना राम जी ने, इसीलिए आज बेखट के बाप की इज्जत को बाजार में उछालता है। सोचता हूं भगत जी को पता चलेगा तो उनकी आत्मा को कितना दुख होगा। कैसे तू इतने भले आदमी के मन को चोट पहुंचा सकता है?
4: साहब एक बात बोलूं?
3: क्या बात है?
4: आप मेरे बाप को इतना शरीफ आदमी मालूम है क्यों बोलते हो?
3: क्यों?
4: क्योंकि वो आपका बाप नहीं है।
3: क्या मतलब?
4: हाँ साहब, क्योंकि वो मेरा बाप है।
3: क्या बकवास है
4: साहब, काले आदमी के नजदीक सांवले आदमी को बैठाओ तो वो गोरा ही दिखेगा।
3: तू कहना क्या चाहता है?
4: मैं आपकी नजर में चोर बदमाश हूँ साहब, पाकेटमार हूँ, इसीलिए आपको मेरा बाप बहुत शरीफ दिखाई देता है। मेरे कसूर के लिए तो पुलिस है, थाना है, जेल है, और ये नहीं तो सड़क पर जूते मारने के लिए पब्लिक है, मगर मेरे बाप के कसूर के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है।
3: दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? उस संत आदमी के खिलाफ क्या बकवास कर रहा है? खिला पिला कर इसलिए जवान किया तुझे?
4: जवान किया? कैसा जवान किया, वो तो आपको दिखता ही है साहब, बदन पर फटे हुए कपड़े हैं, न खाने का ठिकाना न रहने का, जिधर जाता हूँ लोग दुत्कारते हैं, नौकरी मांगता हूँ तो गाली मिलती है साहब, जेब काटता हूँ तो जूते मिलते हैं, इसी को जवानी बोलते हैं आप?
3: व्हाट नॉनसेंस, करतूतें तेरी और दोष भगत जी का। जब माँ बाप ने जन्म दिया है तो क्या जिंदगी के ऊपर खिलाने का ठेका भी ले लिया?
4: लेकिन साहब मैं पूछता हूँ काहे को दिया जन्म, मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे पैदा करो।
3: शट अप, शर्म नहीं आती इस तरह की बकवास करते? माँ बाप की इज्जत करना तो दूर, उनके खिलाफ जो मुंह में आगे बकेगा।
4: माफ करना साहब, माफ करना साहब, मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ साहब, बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल, जो दिल में आता है बिना सोचे बोल देता हूँ साहब।
3: लेकिन तेरे दिल में इतना मैला भर कहाँ से गया?
4: धीरे धीरे करके जमा हो गया है साहब, जब से हो संभाला तब से बराबर जमा हो रहा है साहब, और गरीब आदमी हूँ ना इसलिए होश जल्दी ही संभाल लिया था। जब मैं 8-10 बरस का था साहब, तब एक रात अचानक बड़ा हो गया था। मैंने अपने माँ बाप की बातचीत सुनी थी, उस रात अंधेरे में जो कुछ सुना था साहब वो आज भी याद है मुझे।

0: क्योंकि उसी की वजह से जिंदगी में आज तक अंधेरा है साहब।
1: अरे सुनती है रतन की अम्मा, आज वो मोटर वाले सेठ लोग फिर आए थे। अरे वही बिना संतान वाले।
2: कब?
1: संध्या को। मैंने गली के नुक्कड़ पर ही रोक लेना।
2: फिर वही बात कह रहे होंगे।
1: और क्या, साथ में वो समाज सेवक भी था।
2: लेकिन जब हमने एक बार कह दिया कि हम अपने बेटे को देने के लिए तैयार नहीं है, तो बेर बेर आने की जरूरत क्या है? अरे कहीं दूध पूध भी बेचे जावे हैं।
1: अरे कलयुग है ये कलयुग, दूध का बिकना तो देख ही रही है रोजाना, पूत का बिकना मैं देखा है आज।
2: क्या मतलब?
1: अरे वो गिरधरलाल नहीं है? अरे वो जो मिल के बॉयलर में काम कर रहे
2: है। हाँ हाँ, वही जो राशन की दुकान के ऊपर रह हुए है।
1: हाँ हाँ वही।
2: अच्छा क्या हुआ उसको?
1: अरे मती परस्त हो गई है उसकी, और का बेटे को बेच दिया है उसने।
2: मतबल वो मोटर वाले सेठ उसका लड़का ले गए?
1: और का, इतने दिनों तक अपने रतन के पीछे पड़ रहे, अब कोई पूछे भाई तुम्हारे बाल बच्चा नहीं हुआ तो हम क्या करें? पर हमारे ना करने से कहा समाज सुधारक ने गिरधर लाल का लड़का दिलवा दिया उनको। श्री राम श्री राम।
2: कौन सा वाला लड़का दिया है?
1: अरे वही जो अपने रतन के बराबर है, 8-9 वर्ष का।
2: हाय हाय, कैसा कलेजा है माँ बाप का, पैदा करके संतान और लोगों को सौंप दी।
1: जब ही तो कहता हूँ कलयुग है ये कलयुग, माँ बाप लड़का औरों को सौंप कर कह रहे हैं इसी में लड़के की भलाई है, सुख चैन से रहेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पहरेगा, खूब पढ़ेगा और जिंदगी बन जाएगी उसकी।
2: मतबल लड़के की जिंदगानी ही सब कुछ हो गई, माँ बाप का फर्ज तो कुछ हुआ ही नहीं।
1: अरे उनसे पूछो तो यही फर्ज है जो उन्होंने किया है।
2: और तो और, जो कल को लड़का वापस असली माँ बाप के पास लौट आया तो?
1: ऐसा थोड़े ही होता है, पक्की कानूनी कार्रवाई हुई है, अब तो लड़का गया सेठ का वंश बढ़ाने।
0: सेठ का वंश बढ़ाने मैं भी जा सकता था साहब, मगर कोई पूछे आज 12-15 बरस बाद मैं क्या हूं? एक चोर। मैं क्यों हूं? क्यों? आधा भूखा हूं, आधा नंगा हूं, अनपढ़ हूं। और जब यह सवाल अपने पाप से करता हूं कि क्यों पैदा किया मुझे, तो बताओ कौन सा पाप करता हूं साहब? साहब आप तो बहुत भारी पढ़े लिखे समझदार सरकारी अफसर हैं, आप ही बताइए किसका बाप शरीफ है, मेरा या उस लड़के का जो आज सेठ का लड़का बनकर ठाट से मोटर में घूमता है? उसके बाप ने उसे जिंदगी दी, अब मेरे बाप ने क्या दिया मुझे? कहां धकेला मुझे सड़क पर लोगों के जूते खाने के लिए? मेरा बड़ा भाई घर से भागता नहीं तो और क्या करता? अभी तो देखना साहब, मुझको एक दिन जेल हो जाएगी, छोटी बहनें बड़ी होकर ही उसके साथ भाग जाएंगी। अभी तो बाप की सिर्फ टांग ही कटी है साहब, एक दिन नाक भी कटेगी। अब शायद उस दिन भी मेरे बाप को शरीफ आदमी कहेंगे साहब, मगर मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि शराफत बच्चे पैदा करने में नहीं है साहब, बच्चों की परवरिश करने में है। परवरिश करने में।

अभी आपने लोकेंद्र शर्मा की लिखी नाटिका सुनी शराफत। निर्देशिका थी अचला नागर। ये नाटिका विविध भारती की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।

0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सुनने वालों को। नमस्कार, सविता सिंह का।

जावेद अली, कीर्ति सरगाथिया और पूजा की आवाजों में रांझणा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी। जब तक है जान फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

जब तक है जान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राघव माथुर, शिल्पा रॉय की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे, ए आर रहमान के तर्ज थे। बार बार देखो फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं हमारा आरशी बादशाह और नेहा कक्कर की आवाजों में।

करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा चचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला जले जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तो दे।

बार बार देखो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमर आरशी नेहा कक्कर बादशाह की आवाजें थी। गीतकार थे अमरीक सिंह और कुमार, संगीतकार जैस्लिन रॉयल। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर से सुनवाएंगे गाने।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
0: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
5: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
5: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
5: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
5: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
6: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
6: स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
6: तो गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, 2 बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो 2 बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वाज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से। मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: फिर हेरा फेरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया की आवाज में। समीर के बोल थे हिमेश रेशमिया का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे महिला T20 क्रिकेट का सीधा प्रसारण। अब आपको हम ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या।
2: समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर

0: किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
2: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
3: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
2: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4,216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026

0: पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहा सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद् गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
4: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,800

0: for achieving 7.8% GDP growth in previous quarter. Heavy rain and release of water from Bairaj caused floods in 23 districts of Uttar Pradesh. Prime Minister takes stock of situation in Varanasi. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls on Ukrainian President Volodymyr Zelensky. He welcomes Prime Minister Modi's call to end Russia-Ukraine war. And in women's cricket, Group A match underway between India and Hong Kong in 2020 Asia Cup in Dubai. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीराजम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हमनसब बाख्त दी वेवर ने मजबूत कलीदी शराकतदारी की जरूरत पर जोर दिया है। बेल्जियम ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई की हिमायत की। भारत और बेल्जियम ने दिफाई तआवुन के सिलसिले में माहदे पर दस्तखत किए हैं। अगले 5 वर्षों में बाहमी तिजारत को दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, अहम मादनियात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शोबे में तआवुन बढ़ाने से भी इत्तफाक किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने पिछली सहमाही में 7.8% जीडीपी की शरह तरक्की हासिल करने के सिलसिले में एमएसएमईज की सताइश की है। बहुत तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के सबब उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में सैलाब आ गया है। वजीर आजम ने वाराणसी में सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। कीव की जानिब से रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की वजीर आजम मोदी की अपील का खैर मकदम किया गया। और खवातीन क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप में भारत और हांगकांग के दरमियान ग्रुप ए का मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत और बेल्जियम ने आज तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी तआवुन को मजीद फरोग देने के अपने अज़्म की तौसीख की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हमनसब बाख्त दी वेवर ने नई दिल्ली में दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद जारी किए भारत बेल्जियम मुश्तरका बयानिए में बाहमी तिजारत के शोबों में बढ़ते हुए तनवो का खैर मकदम किया। दोनों लीडरों ने भारत बेल्जियम कलीदी मुज़ाकरात के आगाज का भी खैर मकदम किया। भारत और बेल्जियम ने अगले 5 बरस में बाहमी तिजारत को दोगुना करने के उमंगों से भरे हदफ भी तय किए हैं। दोनों मुल्कों ने अद्वियात साजी, लाइफ साइंसेज, सेमीकंडक्टर्स, दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग, अहम नौयत की मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, खला और जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज में तआवुन के खातिर खा इम्कान की भी निशानदेही की। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: दोनों लीडरों ने भारत यूरोपी यूनियन आज़ाद तजारती माहदे से मुतालिक मुज़ाकरात के कामयाब इख्तिताम और इस पर बरवक्त अमलावरी की ज़रूरत की तजवीज़ का भी खैर मकदम किया। दोनों लीडरों ने भारत यूरोपी यूनियन सरमायाकारी तहफ़ुज़ माहदे और जुग्राफियाई इंडेक्शन से मुतालिक माहदे पर मुज़ाकरात की जल्द अज जल्द तकमील की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दिफा और सलामती के मुतालिक बेल्जियम ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजहती का इजहार किया और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। दोनों लीडरों ने दहशतगर्दी के खिलाफ तआवुन को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी से निमटने के सिलसिले में एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तफाक किया। दोनों मुल्कों ने मुस्तकिल एक्सचेंजेस, तरबियत, तहकीक और दिफाई सनअती शराकतदारी के जरिए दिफाई तआवुन को मुस्तहकम करने के एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो CBI और फेडरल पुलिस ऑफ बेल्जियम के दरमियान एक मुफाहमत नामे पर भी दस्तखत किए गए ताकि बैन कौमी मुनज्जम जराइम और साइबर क्राइम से निपटा जा सके। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: भारत और बेल्जियम ने आज दिफाई तआवुन के इकरारनामे और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मफाहमत नामों समेत कई माहदे किए ताकि बैन मुल्की जराइम से निपटा जा सके। इनमें साइबर क्राइम और सिफारती तरबियत के माहदे शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रेस के लिए अपने बयान में जोर देकर कहा कि चैलेंजों से भरे इस माहौल में भी भारतीय मईशत ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वजीर आजम ने कहा कि पिछली सहमाही में भारत में 7.8% शरह तरक्की दर्ज की गई। उन्होंने मजीद कहा कि आज भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया के लिए एतमाद और नए मौके का एक वसीला बनती जा रही है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि बाहमी तआवुन के इम्कानात रिवायती शोबों से बालातर होकर वसत इख्तियार करते हुए कलीदी शोबों जैसे दिफा और साफ तवानाई तक रसाई हासिल कर चुके हैं।
3: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य स्थापित

0: पार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
1: प्रेस के लिए अपने बयान में बेल्जियम के वजीर आजम बाख दी वेवर ने भारत को सबसे बड़ी जमहूरियत और तेजी से उभरती हुई मईशत कहकर उसकी सताइश की और भारत को अपना अहम इत्तेहादी करार दिया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवेज का महकमा सलाहियत में इजाफे, सिग्नलिंग में बेहतरी और खुदकार दरवाजों वाली सहूलत से लैस नई नस्ल की मुजाफाती ट्रेनें मुतारफ कराने के लिए मनसूबाबंद तरीके से काम कर रहा है। जनाब वैष्णव ने कहा कि मुंबई में 18,000 करोड़ रुपए लागत के रेलवे प्रोजेक्टों पर काम जारी है। जनाब वैष्णव मुंबई से सिंधुदुर्ग के दरमियान चलने वाली ट्रेन को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर रवाना करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मखसूस मशरकी और मगरबी फ्रेट कॉरिडोर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से मुल्क के दीगर हिस्सों में साजो सामान की हमलो नकल में सहूलत पैदा करते हुए महाराष्ट्र की सनअती तरक्की को इस्तेहकाम बख्शेंगे। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि मुंबई शहर में फिलहाल 3,200 लोकल ट्रेनें चल रही हैं और खिदमात में 10% के इजाफे से मुसाफिरों की आमोदरफ्त में खातिरखा इजाफा होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि रेलवे बोर्ड ने चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को 28 एसी लोकल ट्रेनें मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर दिया था, जिसके तहत पहली ट्रेन के अगले साल बनकर तैयार होने की उम्मीद है। जनाब वैष्णव ने कहा कि नई नस्ल की लोकल ट्रेनें मुंबई के मुजाफाती रेलवे निजाम में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाएंगी।
2: ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रेट कॉरिडोर हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक ताकत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फोकस करके इस काम को आगे लिया, में जो भी डिफिकल्टीज थी उनको दूर किया और अब ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का काम 100% कंप्लीट हो गया है। आगामी कुछ ही दिनों के बाद में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे कम्प्लीट ईस्ट और वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
1: कॉमर्स और सनअत वजीर पीयूष गोयल ने रवां माली साल की पहली सहमाही के दौरान मजमुई घरेलू पैदावार GDP के 7.8 नमू हासिल करने में छोटी और दरमियानी दर्जे की सनअतों के अहम रोल की सताइश की है। नई दिल्ली में आज FTA के आउटरीच प्रोग्राम से मुतालिक कौमी वर्कशॉप की सदारत करते हुए जनाब गोयल ने ये बात कही। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ किए गए आजादाना तजारती समझौतों की बदौलत मुल्क के बड़े बरामदकार बनने की राह हमवार होगी। जनाब गोयल ने दुनिया के साथ मुल्क की तिजारत को फरोग देने की खातिर आजादाना तिजारती समझौतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मुल्क गिर जामे कोशिश की अपील की। जनाब गोयल ने कहा कि भारत अगले कुछ सालों में कनाडा, मेक्सिको, चिली, जनूबी अमरीकी ममालिक, जनूबी अफ्रीकी कस्टम यूनियन, खलीजी ताउन काउंसिल और इसराइल के साथ आजादाना तजारती समझौतों को हतमी शक्ल देगा। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि इस कदम के जरिए मोल भाव की बेहतर अहलियत की बिना पर भारत को आलमी तिजारत के 75% हिस्से तक रसाई हासिल हो जाएगी। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें दिल्ली NCR और उसके आसपास के इलाकों में तरफेन की मरकूज वाबस्तगी के जरिए फिजाई आलूदगी का बंदोबस्त करने और इसे कंट्रोल करने पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के माहौलियात महकमे के वुजरा और सेक्रेटरी और आलूदगी को कंट्रोल करने से मुतालिक बोर्ड्स के चेयरपर्सन और मेंबर सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान जनाब यादव ने फिजाई आलूदगी से ज्यादा मौसर तौर पर निमटने के तई कोशिश करने की गरज से तरफेन की मरकूज वाबस्तगी और तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश और बैराजों से पानी के अखराज की वजह से 23 जिले सैलाब से मुतासर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लियामानी हलके वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की और सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक जानकारी हासिल की। वजीर आजम ने काशी की नदियों की सतह आब की जानकारी ली और राहत कैंपों में किए जा रहे इंतजाम से आगाही हासिल की। वजीर आजम ने वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी से भी टेलीफोन पर सैलाब की सूरत हाल की तफसीलात हासिल की। दूसरी जानब उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी फरूखाबाद के सैलाब से मुतासर इलाकों का हवाई सर्वे किया और राहत और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया। जनाब आदित्यनाथ ने सैलाब से मुतासरा 1,000 कुंबों में राहत की साजो सामान तकसीम किया। वजीर आला ने सैलाब की वजह से नकली मकानी पर मजबूर हुए अफराद को खित्ते अराजी के अलॉटमेंट सर्टिफिकेट भी फराहम किए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंडौली में आज शदीद बारिश की वजह से स्कूल बंद रहे। इस दौरान चित्रकूट में मंदाकिनी नदी

की सतह आब में मजीद इजाफा हो गया, जिसके बाद हुकाम को सैलाब से मुतासर इलाकों में रह रहे बाशिंदों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील करनी पड़ी। इधर तबाहकुन नेपाल तिब्बत सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1252 हो गई है। कुदरती आफात के खतरात में कमी और बंदोबस्त से मुतालिक नेपाल की अथॉरिटी NDRRMA की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक 4216 अफराद अब भी लापता हैं। अथॉरिटी ने बताया कि चितावान जिले से 355 लाशें, नवल परासी ईस्ट से 218, नवल परासी वेस्ट 208, जिसमें भारत से बरामद की गई 18 लाशें शामिल हैं और जिन्हें नवल परासी वेस्ट के सुपुर्द किया गया है, नीज नुआकोट से मिली 177 लाशें शामिल हैं। चीन की जानिब सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। नेपाल सरहद के नज़दीक तिब्बत में गिरोंग काउंटी इस सैलाब से मुतासिर हुआ और कल तक की खबर के मुताबिक यहां से 541 लोग लापता हैं। मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में अहले खाना ने कुशा घास से पुतले बनाकर अपने उन रिश्तेदारों की आखिरी रसूमात अदा की जिनका अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया। अब इस बात की उम्मीदें कम हो गई हैं कि वो जिंदा बचे होंगे। भोटे कोशी दरिया के बाला इलाकों में आज भी लगातार बारिश होती रही, इसलिए अंदेशा है कि भोटे कोशी और त्रिशूली दरियाओं में पानी की सतह बढ़ जाएगी। नीज रसुआ और नुआकोट जिलों में बह रहे छोटे दरियाओं और नहरों में भी पानी की सतह बढ़ जाएगी। भारतीय महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश में कल तेज से बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और शुमाल मशरकी खित्तों में कुछ मकामात पर कल तेज बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल और अंडमान और निकोबार जजायर में भी अगले दो दिनों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक की पेशगोई की है। इसी तरह का मौसम कल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वस्ती महाराष्ट्र, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कल दिल्ली के कुछ मकामात पर हल्की बारिश के साथ मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई की है, जबकि कौमी राजधानी दिल्ली के कुछ मकामात पर आंधी तूफान और बिजली चमकने के साथ दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और कम अज कम दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि भगवान कृष्ण की जिंदगी और तालीमात ने भारतीय सकाफत और फलसफियाना विरासत में नई रूह फूंकी है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता के जरिए दी गई भगवान कृष्ण की तालीमात वक्त की गर्द से पाक इंसानियत तरगीब का जरिया बनी रहेंगी, जिसे इंसानियत को मुश्किल घड़ी में अखलाकी इकदार पर साबित कदम रहते हुए दानिशमंदाना फैसले करना मुमकिन हो सकेगा। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि जन्माष्टमी का त्यौहार रवादारी, खिदमत और फर्ज के तई वक्फ होने जैसी इकदार के तई तरगीब देता है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज यूक्रेन की राजधानी कीव में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाजे को खत्म करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने यूक्रेन के अपने हमनसब एंद्री सिबिहा से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत मुसलसल अपने मौकफ पर कायम है कि ये दौर जंग का दौर नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने इस तरह के तनाजात के दौरान बहरी जहाजों पर हो रहे हमलों के मसले को उजागर किया और कहा कि इससे आलमी खित्ते जुनूब के कई ममालिक पर मुख्तलिफ एतबार से असर पड़ा है, जिससे तेल, खाद और खाने की अशिया की कमी हो गई है। भारत को एक आलमी ताकत करार देते हुए यूक्रेन के वजीर खारजा एंद्री सिबिहा ने कहा कि उनका मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग को खत्म करने के लिए की गई अपील का खैर मकदम करता है। दुबई में जारी खवातीन के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए के एक मुकाबले में हांगकांग ने टॉस जीता और भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत की जानिब से वो टीम खेल रही है जिसने इतवार के रोज खेले गए टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में थाईलैंड को 94 रन से शिकस्त दी थी। आज के मैच में अगर भारत की टीम जीत हासिल करती है तो हरमनप्रीत कौर की जेर क्यादत भारत की टीम 8 ममालिक पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हमनसब बाक दी वेवर ने मजबूत कलीदी शराकतदारी की जरूरत पर जोर दिया। बेल्जियम ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई की हिमायत की है।
भारत और बेल्जियम ने दिफाई ताउन के सिलसिले में माहदे पर दस्तखत किए हैं। अगले 5 वर्षों में बाहमी तिजारत को दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, अहम मादनियात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी

0: के शोबे में तआवुन को बढ़ाने से भी इत्तेफाक किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने पिछली सहमाही में 7.8% GDP की शरह तरक्की हासिल करने के सिलसिले में MSMEs की सताइश की है। बहुत तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के सबब उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में सैलाब आ गया है। वजीर आजम ने वाराणसी में सूरत हाल का जायजा लिया और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। कीव की जानिब से रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील का खैर मकदम किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: का बल्ला चला तो रिकॉर्ड टूटते चले गए। शानदार शतक और महिला क्रिकेट में रनों की नई ऊंचाई तक पहुंच गई हैं वो। भारत ने 20 ओवर में लगा दिए हैं 193 रन। अब कहानी बदल चुकी है, भारत का काम पूरा और अब हांगकांग के सामने है 194 रन का विशाल लक्ष्य। हर ओवर में करीब 10 रन, हर गेंद पर दबाव और सामने अनुभवी भारतीय गेंदबाजी। हांगकांग के लिए यह सिर्फ रन चेज नहीं है, यह है पहाड़ चढ़ने की चुनौती। पहली पारी में भारत ने इतिहास लिखा और अब क्या हांगकांग नया इतिहास लिखने की कोशिश करेगा। चर्चा होगी स्मृति की, चर्चा होगी अन्य भारतीय बैटर्स की और चर्चा होगी हांगकांग के गेंदबाज की। मैं हूं मिड मैच 20 में आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ हैं आस्था तिवारी, वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूर्व महिला क्रिकेटर वैशाली भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू। धन्यवाद आनंद। वैशाली, आपसे स्मृति मंदना की इस नौक पर, आप खुद क्रिकेटर रही हैं, जानती हैं ऐसी पिचेस पर कितना ज्यादा मुश्किल होता है बल्लेबाज के लिए बैटिंग करना, तो मतलब क्या, किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगी स्मृति की इस परफॉर्मेंस को?
3: एक वर्ड में बोले तो फ्लॉलेस। और अगर इलैबोरेट करें तो उसमें मैं कहूंगी कि जिस तरह के हांगकांग के बॉलर ने बॉल डाली है तो उनकी जो बैटिंग जैसे उन्होंने की है, 50 रन्स तक उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को वहां पे स्टेबल रखा। एंड उसके बाद उनके 50 के बाद 122 के कब बने हमें भी नहीं पता चला। वो इतना फ्लो में गया है कि हम देखते रह गए और वो रन अपने बटोरती रह गई। एंड उसके साथ उनका हमने देखा कि जो हांगकांग के बॉलर्स है वो स्लो बॉल डाल रहे थे, उनका उन्होंने वेट करके, जिस तरह से वेट करके और बॉल बाउंड्री तक पहुंचाई, ये सबसे ज्यादा मेहनत बैटर की हुई है। क्योंकि वहां पर आप स्लो बॉलर को आप हिट कर रहे हो और वो भी सिक्स तक, तो कहीं ना वो आपको पावर जनरेट करनी पड़ रही है उस टाइम पे। एंड उसके साथ शेफाली वर्मा ने भी उनका बहुत साथ दिया है, लेकिन वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। बट एक बैड लक होता है, लेकिन दिन हर किसी का अच्छा होता है किसी दिन, और किसी दिन सब किसी का बुरा होता है। लेकिन आज दिन है स्मृति मंदना का। एंड उसके साथ हम अगर बात करूं ऋचा घोष की, तो वो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं उनको।
1: जी मनोज, आज रिकॉर्ड की झड़ी लगाई है स्मृति ने। पिछले मैच में सूजी बेट्स को पीछे छोड़ा था 10,740 रन के आंकड़े को, और इस बार 10,868 रन के साथ मिताली राज लंबे समय तक टॉप पर थी। उनको पीछे छोड़कर महिला क्रिकेट यानी ODI टेस्ट और T20 आईज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं स्मृति मंदना।
4: जी हाँ, बिल्कुल, ऐसी प्लेयर को सल्यूट करने का मन करता है, और क्यों ना हो, क्योंकि इस खिलाड़ी ने जिस तरह से दिल जीता, समा बांधा, जितने रन बनाए उतने तो पूरी भारतीय टीम भी नहीं बना पाई बाकी खिलाड़ी। लेकिन इसके लिए खैर उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन जो इनकी बल्लेबाजी थी, जिसमें नफासत थी, आप देखें तो एक्सेलरेशन था बहुत अच्छा। जब शुरू में स्मृति के साथ जब टिक्कर खेली, उतनी तेजी से रन नहीं बन रहे थे, लेकिन इन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। जब एक्सेलरेशन की बारी आई, 14वां ओवर आता है पारी का, 2 छक्के लगाती हैं, 15वां ओवर आता है 2 चौके लगाती हैं, 18वां ओवर आता है 3 छक्के लगाती हैं, जो एक्सेलरेशन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप रन गति को बहुत तेजी से आप आगे बढ़ा रही हैं। और बस यही है कि कुछ चीजें इस पर हमें फूल कर कुप्पा नहीं होना चाहिए, हमें इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जो एक कम्युनिकेशन एरर दिखाई दिया भारतीय टीम का आखिरी ओवर में, जो भारती के साथ उनका जो तालमेल गड़बड़ाया था जिससे वो रनआउट हुई, इस तरह की गलतियां बड़े मैचों में आत्मघाती साबित हो सकती हैं।
1: जी हाँ, ये तीसरा T20I शतक था किसी भी भारतीय महिला क्रिकेटर की तरफ से, एकमात्र शतक हरमनप्रीत कौर के नाम है। इससे पहले स्मृति ने 100 नाबाद बनाए थे हांगकांग के साथ ही, और 18 शतक उनके नाम हो चुके हैं अब महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में, और 17 शतक के साथ मेग लैनिंग दूसरे स्थान पर हैं।
2: वैशाली, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि देखिए स्मृति मानधना की आज तारीफ होगी और मुझे लगता है आगे आने वाले काफी मैचेस तक, स्पेशली इस एशिया कप में एक मेजर हाईलाइट स्मृति मानधना की रहने वाली है। लेकिन फिर वही जो पहले मैच में दिक्कतें थी, दूसरे मैच में भी वही सामने आई। मिडल ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, प्रतिका रावल डेब्यूटेंट थी, अब एक मैच का थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था, कंडीशंस के साथ फेमिलियर हो गई थी, दिख रहा था कि स्मृति मानधना उस पारी को चला रही है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिडल ऑर्डर अभी भी टीम इंडिया के लिए आपको लगता है फंसा हुआ है?
3: सिर्फ मिडल ऑर्डर ही नहीं, हमारा फर्स्ट डाउन भी फंसा हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रतिका रावल फर्स्ट डाउन पे आ रही है, तो अगर आज का हम मैच का सिनेरियो देखते तो उस ओपनर के बाद हमारे पास बैटर नहीं है, एंड ये अगर आप एक इंडियन टीम खेल रही है तो इस तरह के लैक्स होने नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे और हमारे पास बैटर्स की कमी नहीं है। और रही प्रतिका रावल की बात, तो वहाँ 12 बॉल्स में उन्होंने 10 रन्स बनाए हैं, हम यहाँ पे T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, उस तरीके से आपको तैयारी करके आनी चाहिए थी, अपना माइंडसेट बना के आना चाहिए था। और दूसरा, जैसे मैं पहले भी बताया था कि हरमनप्रीत कौर को पहले ऊपर आना चाहिए था बैटिंग करने, बट उस तरह की वो बल्लेबाजी उनकी देखने को नहीं मिली, क्योंकि उनका एक शॉट गया था जो पीछे थर्ड मैन की तरफ गया था, वो शॉट उन्होंने ऐसा लगा कि एज लग के गया है, वो ड्राइव खेलना चाह रही थी बट वो एज लग के पीछे चला गया, तो उनके बैट पे वो क्लास नहीं नजर आ रही है जो उनके बैट से नजर आती हुई दिखाई देती थी। तो ये क्लास देखना और अप्लाई करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट मैच के लिए।
4: मनोज, कैसे देखते हैं ओवरऑल बैटिंग परफॉर्मेंस को? चूंकि पहले मैच में एक बैटिंग कोलैप्स था, स्मृति ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर से परेशानियां अब भी बनी हुई हैं।
5: जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और यहाँ देखिए, स्मृति ने रनों का अंबार लगाया, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि फुल टॉस गेंदें बहुत हुई, लेग साइड पर गेंदें बहुत आईं, शॉर्ट बॉल बहुत हुई, उसका उन्होंने बहुत भरपूर फायदा भी उठाया, क्योंकि आप शेफाली या स्मृति, इनको अगर आप इस तरह से गेंदबाजी करेंगे, फुल टॉस करेंगे, शॉर्ट गेंदें करेंगे, ये बख्शेंगे नहीं भाई, ये आपको छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात जो इस पारी की लगी है, दो बातें। पहली तो ये कि हमारे मिडिल ओवर्स में, जैसा कि हमने प्री शो में जिक्र भी किया था कि हमारे रन नहीं आ रहे थे, इस बार हमने मिडिल ओवर्स में 80 रन बनाए हैं, यानी आप 7वें ओवर से 15वें ओवर तक का अगर आप स्कोर देखेंगे तो 80 रन बने हैं 60 के बाद, यानी 150 रन थे हमारे 15 ओवर में, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। ठीक है, अपोजिशन कमजोर था, वो एक अलग बात है। दूसरी बड़ी बात जो पॉजिटिव मुझे इस पूरी पारी में देखने को मिली, वो है इंडियन माइंड सेट। अगर आपका विकेट गिरता है गुच्छे में, जैसे गावस्कर कहा करते हैं कि गुच्छे में विकेट नहीं खोने हैं आपको, तो वो शेफाली वर्मा का जब विकेट गिरा, उस विकेट गिरने के 17 गेंद तक भारतीय खिलाड़ियों ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई। ऐसा नहीं था कि उनकी कोई गेंदबाजी में कोई बहुत ज्यादा अप्रत्याशित सुधार देखने को मिला हो, कोई बहुत ज्यादा चढ़कर गेंदबाजी कर रहे हो, ऐसा भी नहीं था। इन्होंने कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाया, लेकिन अगर आप देखें तो फिर उसके बाद एक छक्के के साथ उन्होंने जो है स्मृति ने खामोशी तोड़ी, फिर चौका लगाया उन्होंने, तो ठीक है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा गया कि प्रतिका रावल जो है टेक्निकली बहुत साउंड है, मुझे, मैं टेक्निकली उनका गेम बहुत पसंद करता हूं, लेकिन T20 का जो माइंडसेट है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जो हश्र आपका साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस साल हुआ है, उसी की पुनरावृत्ति, उसी की बार बार वो सब देखने को मिले और हम इन्हीं मैचों में उलझ कर रह जाएं। तो बस यही है कि इसके जो अहम पक्ष हैं उस पर ध्यान दिया जाए। इकरा सहार, उनकी बहुत ही किफायती गेंदबाज, जिन्होंने दो ओवर जो हैं बहुत ही शानदार किए थे, पहले दो ओवर जिसपे केवल 8 रन खर्च किए थे पहले दो ओवर में, जब इनका विकेट गिरता है शेफाली का, तो वो तुरंत उनके कप्तान की सूझबूझ देखिए, वो इकरा को ले आते हैं, जबकि इतनी जल्दी आमतौर पर उनको लाया नहीं जाता, और वहां पर भी वो बहुत अच्छी गेंदबाजी करती हैं। तो अच्छी स्ट्रेटजी देखने को मिली हांगकांग इस टीम की तरफ से भी, और भारतीय टीम का जो माइंडसेट है वो बड़ा पॉजिटिव था।
2: हांगकांग की तरफ, मतलब हांगकांग की साइड की थोड़ी सी बात कर ले वैशाली, तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मरीना जो है वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी चैलेंजिंग चीजें दिखा सकती हैं। और देखिए उन्होंने विकेट लिया ऋचा घोष का, उन्होंने हरमनप्रीत कौर का विकेट लिया, तो जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी, उन्होंने एक बहुत ही शानदार कैच भी लिया था, हमने देखा था शेफाली वर्मा का जो कैच था वो भी इन्होंने लिया था। तो इनका जो ये बॉलिंग माइंडसेट आ रहा है हांगकांग जैसी टीम से आना, उसके बाद इंडिया के इतने मजबूत बैटर्स के आगे ऐसे फिनोमिनल बॉलिंग स्पेल डालना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं पहले तो कहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने कैच पकड़ा है, वो बैक रनिंग कैच जो पकड़ा था वो आउटस्टैंडिंग कैच है, वो इजिली इतना इजिली नहीं पकड़ा जाता है। और उसके साथ जो सबसे पहला जो कैच उन्होंने पकड़ा था वहां से मोमेंटम बना था इंडियन टीम का, जो बैटर एक हमारा फ्लॉप स्मृति मंदना सॉरी शेफाली वर्मा वहां पे आउट हुई थी, वहां पर एक उनके पास चांस था कि वहां पे स्कोर कहीं ना कहीं वो रोक के रखे, एंड वहां पे उन्होंने वो किया। एंड उसके बाद ऋचा घोष जो इतनी अच्छी आउटस्टैंडिंग बैटिंग करती है, वही अगर नीचे थोड़ा एक डाउन नीचे आती तो क्या पता वो वहां पे और अच्छा परफॉर्म करती, क्योंकि हमारे बैटर का लाइनअप थोड़ा इधर डगमगा रहा था, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं लैक हो गया उनकी बैटिंग में। बट हांगकांग जिस तरह की टीम हमने सोची थी उससे काफी अच्छी तरीके से उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया, सिर्फ बैटिंग ही सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, फील्डिंग के अंदर भी उन्होंने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करके दिखाई है। जो फोर्स उन्होंने रोके हैं वो भी आउटस्टैंडिंग है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसी फील्डिंग उनकी तरफ से देखने को भी मिली है।
6: मनोज क्या कहेंगे कंडीशंस और पिच को, चूंकि काफी चर्चाएं हुई कि बहुत बड़े टोटल्स नहीं बन रहे हैं, थोड़ा पिच स्लो है, गेंद रुक कर आ रही है, टर्न मिल रहा है, क्या गेंद को ज्यादा पिच पर टिप्पा ही नहीं खिलाया, ये एक बड़ी कमी रही, या आज कुछ कंडीशंस इस टूर्नामेंट के नजरिए से आप अलग देख रहे हैं?
5: नहीं, अलग तो मैं नहीं देख रहा, क्योंकि शुरुआती ओवरों में पावर प्ले जब चल रहा था तो कुछ गेंदों में स्मृति मंदाना को भी थोड़ी दिक्कत हुई, स्मृति का एक कैच भी छूटा जब वो 95 रन पर खेल रही थी, और उसके अलावा गेंद इतनी नीची रह रही थी कि बल्लेबाज उसका पूर्वानुमान भी नहीं लगा पा रहे थे। तो ऐसे समय में हमने रन गति को पर अंकुश लगाया, रन गति पर कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाया भारतीय टीम ने, जो बहुत अच्छा साइन था, क्योंकि आप विकेट की नजाकत को समझते हुए अपनी रणनीति बनाएं तो उसका मजा कुछ और है, वही कुछ यहां आज देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी हमारी बहुत अच्छी थी, और पिच के हिसाब से अपने आप को ढालना और कमजोर गेंद का इंतजार करना। अब देखिए उन्होंने जो विकेट लिए हैं उन विकेटों में उनकी गेंदबाजी कितनी असरदार थी वो किसी से छुपा नहीं है। अब आप देखें हरमनप्रीत जिस गेंद पर आउट हुई वो फ्लाइटेड उन्होंने अपनी तरफ से डाली थी, फुल टॉस बनी और फुल टॉस पर उनका विकेट गिरा। शेफाली वर्मा फुल टॉस पर आउट हुई, वो तो जैसे गली मोहल्ले में हम खेलते हैं ना, जैसे उस तरह की वो बॉल थी
6: जी,
5: उस तरह से वो उनका विकेट गिरा। स्मृति मंदाना जो आउट हुई है रन आउट, वो भी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आउट होने वाला वो पल नहीं था, क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन गैप था। तो ये सारी चीजें उन्होंने विकेट नहीं चटकाए, हमने विकेट दिए हैं।
2: वैशाली हरमनप्रीत कौर हम स्टार्टिंग से बात कर रहे थे, मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी कि कहीं ना कहीं जो कैप्टन है उस पर थोड़ा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली वो जो शार्पनेस है वो नहीं आ रही है हरमनप्रीत कौर के लिए, तो ऐसा क्या एक वो पॉइंट है जो वो इस एशिया कप में मिस कर रही है?
3: ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम बैटिंग में भी थोड़ा फ्लॉपनेस दिख रही है बस। एंड अभी हमारी एक इनिंग बाकी है जिसमें हमारे दीप्ति शर्मा बहुत अच्छी बॉलर हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर भी रही हैं और हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं अभी तक की T20 फॉर्मेट के अंदर। एंड उसके साथ अगर मैं बात करूँ हमारी चरणी जो यंग प्लेयर रही हैं, और हमारे वर्ल्ड कप में भी हमने देखा है कि काफी अच्छी उन्होंने बॉलिंग दिखाई है हमें, और उसके साथ लास्ट मैच में भी उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग करी है। तो अभी मैच बना हुआ है हमारे हाथ में, और सबको रिजल्ट पता ही है कि क्या होने वाला है, बट हम फिर भी कहेंगे कि इट्स अ क्रिकेट, वन बॉल गेम होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें हर चीज पकड़ के एंड अकॉर्डिंग टू बैटर हमें जज करके जितना जल्दी हम रन रेट पे जाएंगे और जल्दी से ये फिनिश करेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा, आने वाले आगे सेमीफाइनल्स में भी हमें बेनिफिट कहीं ना कहीं मिल सकता है।
6: जी हाँ बिल्कुल, हमने कई रिकॉर्ड्स की बात की, एक और रिकॉर्ड स्मृति मंदाना ने बनाया है, महिला एशिया कप में सर्वाधिक स्कोर उन्होंने अपने नाम कर लिया है 124। इससे पहले चमारी अटापट्टू के नाम ये रिकॉर्ड था, उन्होंने 2024 में दम्बूला में मलेशिया के साथ ये कीर्तिमान बनाया था। मनोज आपका, वैशाली आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो के लिए, बने रहिए आकाशवाणी के साथ, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है हांगकांग का रनचेज़।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: 194 रन का लक्ष्य हांगकांग के सामने। पहली गेंद जब तक हम कमेंट्री बॉक्स को संभालते तब तक बल्लेबाज को संभालनी पड़ गई थी। नताशा बल्लेबाज के तौर पे

0: ओपनर आई हैं, उनके साथ में मरीको हैं। भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी की कमाल संभाली है क्रांति ने, और जिस तरीके की क्रांति आज भारतीय बल्लेबाजी में देखने को मिली थी, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आज स्मृति मंधाना के बल्ले से देखने को मिली थी, जिस प्रकार की आग उनके बल्ले ने उगली थी, संभवतः बेहद मुश्किल रहा होगा गेंदबाजों के लिए ये सहन करना। 194 का लक्ष्य क्रांति, ओवर की दूसरी गेंद के साथ एक खिलाड़ी स्लिप में तैनात है, दो गेंदे दोनों की दोनों डॉट, और नताशा माइल्स जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानी जाती है हांगकांग की, उन्होंने आश्चर्य के साथ पिछली गेंद को लिया था, क्योंकि जब हांगकांग के गेंदबाज बल्लेबाजी के विरुद्ध गेंदबाज कर रहे थे, गेंदबाजी कर रहे थे, तो विचित्र सा उछाल नजर आ रहा था। कुछ गेंदे अच्छे उछाल के साथ आ रही थी, कुछ गेंदे बिल्कुल नहीं उछल पा रही थी, और वैसा ही हर्ष क्रांति की पिछली गेंद का भी हुआ। क्रांति ओवर की तीसरी गेंद के साथ ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही है, शॉर्ट पिच गेंद है, इस बार गेंद का उछाल अच्छा था, बल्ले के हत्ते के करीब गेंद जाके समाप्त होती है। तीन गेंदे तीनों डॉट, खाता खोलना अभी भी नताशा और साथ ही साथ हांगकांग का बचा है। 194 का एक विशाल का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य, शुरुआती क्रांति की तीन गेंदे डॉट रही है। स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत दोनों ही बहुत खुश होगी इस प्रकार की शुरुआत से जैसी क्रांति ने दिलाई है। एक युवा गेंदबाज है, गेंद की गति भी अच्छी खासी, उछाल भी ठीक ठाक सा नजर आया। ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप के पास समाप्त हुई थी, उछाल उतना अच्छा नहीं, जिस वजह से फिर आश्चर्यचकित हुई थी नताशा। चार गेंदों में अब तक अपना खाता खोला नहीं है, चार की चार डॉट और स्लिप जो लगाई है उससे संभवतः मानसिक तौर पे कोई ना कोई द्वंद चल रहा होगा नताशा के जहन में कि क्या गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हरकत करने वाली है या गेंद जहां टप्पा खाएगी वहीं सीधी रहने वाली है। क्रांति उसी बीच ओवर की पांचवी गेंद के साथ, लॉन्ग ऑफ नजर नहीं आ रहा था, मिड ऑफ की दिशा में एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी मिड ऑन पे, उसी बीच अगली गेंद को कट कर दिया थर्ड मैन तक जब तक फील्ड किया जाता एक रन, और खाता खुला हांगकांग का भी, नताशा का भी। पांच गेंदों के बाद पहला रन, रोहित साफ पता चलता है कि कितनी आगे है भारतीय गेंदबाजी हांगकांग की बल्लेबाजी से।
1: एब्सोल्युटली, इट जस्ट टेल्स यू अबाउट द काइंड ऑफ होमवर्क इज वेल दैट दे हैव डन। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग योर ऑपोजिशन, यू नो एज दे से दैट कीप योर फ्रेंड्स क्लोज योर एनिमीज क्लोजर।
0: कहा जाता है कि एक समझदार दुश्मन एक मूर्ख दोस्त से बेहतर होता है। ओवर की आखिरी गेंद डॉट के साथ समाप्त, पांच डॉट गेंदे थी, सिर्फ एक सिंगल आया है हांगकांग की टीम ने, इस ओवर में सिर्फ एक रन बनाया, जहां आप 194 के विशाल का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। इस शुरुआत को नपातुला माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि हांगकांग की टीम के ओपनर्स के जहन में ये चल रहा हो कि शायद शुरुआती कुछ गेंदे संभल के खेल ली जाए, बल्ले पे आना शुरू हो जाए, तो शायद, बहुत बड़ा शायद है, ये लक्ष्य चेज किया जा सके।
1: First and foremost thing about this innings, Ayush, is that the new ball we've seen even in the Indian innings as well, it was kind of keeping low and it was moving around. And that is where Hong Kong will not want to lose Nataša Miles. She's the second highest run scorer in Hong Kong's international tally. 2,041 runs is what she's got. So of course they'll want, like the way Shriti Mandhana played the innings until the 19th over, and we are not saying that she'll go until the 19th over, but at least she should be there until the halfway of the innings. Nandini Sharma, 8 matches, 10 wickets, a couple of 3 wicket hauls as well, best of 3 for 18, economy of 8.24. She'll be going over the wicket, she's got a slip in place, a gully as well, point and a cover. A cover point, this time shuffles slightly, in fact the ball just moves away and Nataša pushes it away to that cover point fielder to get a single. What do you think should Nandini's ideal idea be of keeping the ball, whether she'll go for that lower delivery or will she just gun in with that pace that she has?
0: विरले ही हमें ऐसा कोई दृश्य नजर आता है कि गली का खिलाड़ी T20 फॉर्मेट में आपको नजर आए, इससे साफ पता चलता है कि चौथे स्टंप के आसपास गेंद रखने की कोशिश की जाएगी, और यदि हो सके तो ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को और बाहर की तरफ ले जाएं।
1: Exactly, trying to use the new ball, that's what bowling with upright seam does to you. Inside edge, this time just angling it away from Mariko this time, and Mariko gets that inside edge. The ball clatters onto her pads. Not much response from her at all.
0: ज्यादा कुछ कर नहीं पाई थी, आश्चर्यचकित रह गई, अंदरूनी किनारा लगा, और भाग्यशाली भी है कि गेंद विकेट्स में जाके समाप्त नहीं हुई, वरना कई बार हम इस तरीके से प्लेड ऑन टू द विकेट्स देखते हैं बल्लेबाजों के द्वारा।
1: ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम नंदिनी शर्मा, शी इज कीपिंग हर आइडिया, द फैक्ट दैट शी वॉन्ट्स टू टेक द बॉल अवे फ्रॉम द राइट हैंडर्स, दैट इज इंटैक्ट, एंड शी इज गोइंग हार्ड लेंथ, दिस टाइम ऑल्टर्स द लेंथ एंड द गली फील्डर कम्स इन टू प्ले, प्रेमा रावत पिक्स द बॉल अप, इन फैक्ट दैट गली फील्डर नाउ मूव टू दैट शॉर्ट थर्ड एरिया. And she's picked it up very nicely, kept it to a dot ball, slightly quicker on this occasion, and that's why the ball almost was going away. Unfortunately, they just had, India had one slip

0: Gordon, and that's why the ball went to that short third fielder where Prema Rawat awaited with patience. A couple of dot balls for Nandini Sharma. The more number of dot balls that India can produce. She's got a great start already. 3-for-18 against Thailand in the tournament opener. What a beauty that! Through the defences of Mariko Hill, she's crashed the ball onto her furniture. Leg stump and middle stump absolutely dismantled. And Mariko Hill will have to go back for a duck. India gets their first breakthrough.
1: इससे पिछली गेंद पे एक अंदरूनी किनारा लगा था, उसके बाद बाहरी किनारा, और इस बार जैसे सुई में से धागे को पिरोया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से गेंद को बल्ले और पैड के बीच में से निकाला और भारत के लिए पहली सफलता की प्राप्ति. दूसरे ही ओवर में इससे बेहतरीन शुरुआत भारत के लिए हो नहीं सकती.
0: Well, Mariko departs for 0-for-4. Now, what a setup this is from Nandini Sharma. First three balls, she takes it away from the right-hander. Then she brings in the in-swinger. And that is where Mariko Hill, she was hoping that the ball will go away. And that is why she was preparing with that little drive as well. And then the gap between the bat and pad opened up. Nandini Sharma reading that to perfection, almost as if she crawled under the skin of Mariko Hill and went on to crash the ball onto her furniture.
1: और जिस तरीके का मानसिक खेल खेला था, क्योंकि एक खिलाड़ी को पहले गली पे लगाना, एक खिलाड़ी स्लिप पे रखना, अमूमन हर एक बल्लेबाज यही सोचेगा कि गेंद बाहरी किनारा लेके जाएगी. और तीन गेंदें आपने बिल्कुल सही कहा, ऑफ स्टंप के बाहर रखी थी, आउट स्विंगर थी, चौथी गेंद बिल्कुल अचानक से अंदर की तरफ आई और उस इन स्विंगर ने अपना कार्य किया.
0: एंड दिस इज व्हाट यू कॉल अ ब्लफ इन क्रिकेट. A fast bowler getting a bluff, and that too in her first over. It just tells you how good Nandini Sharma has been. She's a very young contender, comes in with a lot of pace, has been of very high promise, and she is right now being touted as a rising sensation in Indian women's cricket. New batter in, Yasmin Daswani, had a very good day behind the stumps. In fact, was one of the silver linings, 1501 runs in international cricket. And Nandini Sharma, what a start, 1-for-1 from the first four balls. We take a look at the field. The gully field is still, in fact, now the gully has moved to short third. Backward point is there, cover point, and also the cover fielder too. Over the wicket still, slip stays in place. This time the length gets slightly shorter. Yasmin was in a couple of minds, pushes it to the square leg fielder. Will not get any run for that. And that was a look at the wicket once again. What a beauty that. Top of middle and leg. It simply doesn't get better than that. That's what Nandini Sharma is all about. Perfection, accuracy. And Mariko Hill already playing that preemptive drive, letting the ball do its thing. And Richa Ghosh with that lovely smile, with that lovely little hug for Nandini Sharma, applauding her bowling flair and finesse. Last ball of the over, driven away by Yasmin, and she'll get a single for that. By the time the cover point fielder picks it up and guns it back in. Two overs done, Hong Kong are 3-for-1.
1: बेहतरीन शुरुआत भारतीय टीम के लिहाज से. पहले बल्ले का दमखम दिखा, 194 का एक विशाल का लक्ष्य हांगकांग के सामने रखा. उसके बाद पहले ओवर में सिर्फ एक ही रन खर्च करना, ना सिर्फ मानसिक तौर पे बल्कि स्कोर कार्ड के लिहाज से भी भारतीय गेंदबाजों का एक दबाव बनाना हांगकांग के खेमे पे, उसने बहुत बड़ी मदद की है वहां पे पहले विकेट को दिलाने में. और भारत को ये सफलता जाहिर सी बात है बहुत पसंद आई होगी. आए भी क्यों ना, आप जितने बड़े फासले से अपने मुकाबले को जीतते हैं वो अंक तालिका में आपको मदद देता है. इस मुकाबले की शुरुआत से पहले मेरे साथी रोहित गांगुली ने आपको बताया था कि भारत ने नेट रन रेट के लिहाज से 4 भी ऊपर का फासला बनाए रखा था और वो पूल ए में सबसे बढ़िया है. तीसरा ओवर पारी का शुरू होगा. क्रांति जिन्होंने पहला ओवर डाला था, भारतीय गेंदबाजी की शुरुआत की थी, वही पुनः गेंदबाजी पे हैं. पिछले ओवर में सिर्फ एक रन खर्च किया, स्लिप अभी भी मौजूद है. यास्मीन जो नई बल्लेबाज है वो अपनी तीसरी गेंद का सामना करेगी एक रन, हालांकि उनके बल्ले से आया. तीसरे ओवर की शुरुआत में पूर्वानुमान लगाया था और लैम्प शॉट खेलने के लिए वो तैयार थी. विचित्र है क्योंकि गेंद वैसे भी उछाल नहीं ले रही, संपर्क बल्ले के साथ हुआ नहीं, पैड्स पे जाके गेंद टकराती है, लेकिन ऑफ स्टंप से क्योंकि यास्मीन बहुत बार आ चुकी थी इसीलिए वो सेफ हैं, उन्हें आउट नहीं करार दिया जाएगा. पर पूर्वानुमान एक चीज होती है और गेंदबाज के हाथ से गेंद निकलने से पहले आप उस परिस्थिति में आ खड़े हों जैसा शॉट आपको खेलना, ये दूसरी बात है. तीसरे ओवर की दूसरी गेंद के साथ क्रांति ऑफ स्टंप के बाहर रखा, गुड लेंथ की गेंद थी, उसे एक टप्पे के साथ रावत के पास खेल दिया जो पॉइंट की दिशा में खड़ी है. रन कोई नहीं बनेगा. कुल मिला के अभी देखा जाए तो 14 गेंदों में से सिर्फ 3 रन बने हैं, यानी कि 11 डॉट गेंदों का सामना कराया भारतीय गेंदबाजों ने. और जो लक्ष्य हांगकांग के सामने है वो बाहर सा है, कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं, या कह लीजिए जो कप्तान नताशा उम्मीद कर रही थी कि 150 के आसपास का हो वैसा भी नहीं. ऑफ स्टंप के बाहर की फिर गेंद है, कवर, एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट, ये तीन खिलाड़ी ऑफ स्टंप के सर्कल को पूरी तरीके से घेर के खड़े हैं, 25 यार्ड के घेरे के भीतर खड़े हैं और उसे गेंद पार नहीं कर पाई. एक और डॉट, ये डॉट का सिलसिला

0: मानिए कि एक ऐसी परीक्षा है जिसके किसी भी प्रश्न का कोई जवाब हमें नजर नहीं आ रहा हांगकांग के बल्लेबाजों के द्वारा। बहरहाल तीन और गेंदें क्रांति के इस ओवर में बची हैं, सिर्फ एक रन खर्च किया है, कुल मिला के 9 गेंदें जो अपने दूसरे ओवर में अब तक इन्होंने की है। भारत वेमेंस एशिया कप में 26वां मुकाबला खेल रही है जिसमें से 22 मुकाबले कुल मिला के इतिहास में जीते हैं, 4 मुकाबले गंवाए हैं और 84.6 ये वो प्रतिशत है जो संभवतः अपने पूरे विद्यालय के काल में रोहित मैंने नहीं देखा।
1: I'll have to figure out when I last saw it. I think I have, but then it was possibly in the primary classes, Ayush.
0: वो यादें धुंधली सी हो चुकी हैं। बचपन वो रवा हो चुका है। उम्र अपना तकाजा कभी नहीं छोड़ती। बातों ही बातों में ओवर की 5वीं गेंद क्रांति ने बिल्कुल सीधे बल्ले पे खिलाया था, ऑफ स्टंप के आसपास रखा था। लाइन के साथ साथ जो लेंथ बनाए रखी है क्रांति ने, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, उसकी सराहना करनी होगी। यास्मीन ने 7 गेंदें खेल ली है, उनके बल्ले से सिर्फ एक ही रन आया है। कहीं ऐसा नहीं कि ये डॉट का दबाव एक और विकेट दिलाने पे मजबूर कर दे, हांगकांग की टीम कोई बुनियादी गलती कर दे जो अमूमन युवा टीमें करती नजर आती है किसी परिपक्व टीम के सामने। स्लिप को अब हटा दिया गया है। ओवर की आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बाहरी किनारा लेते लेते बची, डॉट के साथ ओवर समाप्त हुआ होगा और जान हलक में हांगकांग के बल्लेबाजों की। 3 ओवर्स के बाद हांगकांग का स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे।
1: ग्रेट स्टार्ट बाय क्रांति गौर एंड नंदिनी शर्मा, बोथ ऑफ देम। One have to figure out that they are starting ahead of a bowler who's got 70 wickets in WT20Is already, and that is Renuka Singh. So the onus on them is a lot higher, and so far they have already proven themselves, both Kranti Gaur and Nandini. What they are doing is, like the way you pointed out, Ayush, I think it's about the discipline, especially when you're bowling with the new ball, with that upright seam. It moves around like a snake. It moves inside, it goes outside. You as a fast bowler need to show that mastery. And once again, Nandini coming back into the attack, bowls it fuller. And Natasha Miles plays it all the way to Prema Rawat at short third. Nandini once again possibly will be hoping to set up exactly the same trap. This time just getting a little wobble seam in play. And driven away by Natasha to Prema Rawat. Richa Ghosh always having a smile on her face, one of the senior contenders now, has been one of the mainstays of the Indian side for a while. Once again, Nandini over the wicket. She has got a slip in place for Natasha. But that is very good bowling. She's keeping it close to the off pole, not giving any width whatsoever for Natasha to free her arms. And if Natasha doesn't get to free her arms, the early shots in power play kind of dries up.
0: जितने भी श्रोता हमारे इस मुकाबले को सुन रहे हैं, उन्हें हम बता दें कि पावर प्ले गतिमान है, 3 ओवर से ज्यादा का खेल हो चुका है और सिर्फ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये वो आंकड़े नहीं है जो अमूमन हम T20I में देखते हुए नजर आते हैं या सुनते हुए हमेशा हमारे कान खुले रह जाते हैं, लेकिन आज हांगकांग के सामने यही चुनौती।
1: Another dot ball there from Nandini this time. This can be trouble. Was it a bit too feckless there from Natasha? She just came down the ground. Of course, she was trying to gain her balance. Nandini picked it up. Now, Natasha was beaten. The ball went on to clip her pads. It went back straight to Nandini. She picked it up, gunned it back in. And Natasha was kind of struggling to get back to the crease. The question, of course, we are going upstairs. What do you think, Ayush? How feckless was this of Natasha? As a professional player, you need to go back early enough.
0: और जो दृश्य हमारी आंखों के सामने नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़ी आसानी से नताशा पहुंच चुकी है, लेकिन बिल्कुल सही आपने जिक्र किया है कि बतौर बल्लेबाज सबसे प्राथमिक चीज जो आपको सिखाई जाती है वो ये कि जैसे ही आप गेंद खेलें, संपर्क हो या ना, कम से कम आपका बल्ला रगड़ता हुआ क्रीज में आना चाहिए। हवा में बल्ला रहना मतलब खतरे की घंटी
2: का अनमोल खजाना।
3: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
2: संगीतकार ओपी नैयर।
3: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
2: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

छाया गीत सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। मोहब्बत घर आंखों से छलक जाए तो लफ्जों की जरूरत है क्या? आंखें बंद कर लेने से ये जज्बात थम जाएंगे क्या? ये तो मोहब्बत है, अपनी जिद पर अड़ी रहेगी जनाब। लाख कोशिशें कीजिएगा मगर छिपाने से ये छिप जाएंगी क्या?

मोहब्बत का इजहार तो कर दूं, मगर डर लगता है कहीं तुम खफा तो ना हो जाओगे। चलो इकरार कर भी दिया अगर, तो डर लगता है कहीं नखरे तो ना दिखाओगे। नखरों को तुम्हारे मैं सह भी जाऊं, पर डर लगता है दिल चुरा के मेरा कहीं तुम बदल तो ना जाओगे।

ना जाने उन्हें हमारी सूरत पसंद आई या सीरत, ना जाने हमारे बोलने का अंदाज पसंद आया या लफ्ज, बेवजह तारीफ करना आदत सी लगती है उनकी। कहते हैं हर धड़कन पर नाम है तुम्हारा, चाहो तो पढ़ लो।

अंतराल के बाद छाया गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यार जब परवान चढ़ जाए तो फिर क्या सुबह क्या शाम, दिल गुनगुनाता है सिर्फ अपने दिलबर का ही नाम। निकाले चाहे कोई लाख बुराई, करे कितना ही बदनाम, हंसते हंसते सह जाते हैं आशिक हर खुशी हर गम का जाम।

अचानक जब तुम यूं मेरी नजर के सामने आ जाते हो, दिल की धड़कन कुछ इस कदर बढ़ जाती है मानो सारी जिंदगी एक पल में सिमट गई हो। तुम्हारे साथ बिताए चंद पलों को याद करती हूं तो लगता है मानो ये जिंदगी उन चंद पलों में ही थम गई हो।

से मिलने की कसक ने इस कदर बेताब किया कि भीगी भीगी रातों में भी जलने लगा मेरा जिया। अब अगर तुम आ जाओ तो चैन आ जाए, मेरा दिलदार आ जाए तो करार आ जाए।

सुना रही हूं प्यार की कहानी। प्यार से सुन लो। मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम भी मुझे चुन लो। ना सुनने की हालत में अब नहीं रहा ये दिल मेरा। मैंने राह चुन ली है तुम्हारी, तुम भी मेरी राह चुन लो।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

सुनिए एक खुशखबरी। कहिए ना, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात।

0: और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
2: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
3: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक वार्ता पूरी होने का स्वागत किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
1: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं हो सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वागत किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। नेपाल तिब्बत में आए विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए 2 और विमानों के जरिए आज 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense.

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत है डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका, उषा मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार।

सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश,

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला और गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता,
1: मार उड़ाई,
0: एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कार्यक्रम का अगला एल्बम सॉन्ग है फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीत संगीत है ललित का। एल्बम का नाम है मैंने पायल है छनकाई।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप अभी सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी दिल्ली

का प्रसारण, जिसमें महिला T20 क्रिकेट कप टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण किया जा रहा था। श्रोताओं, अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।